0: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के ठीक 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर दो नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की है।
2: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: गृह मंत्री ने ड्रोन, रडार, निगरानी टावर, अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग लाइंग की यह पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति यू मिन आंग आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। म्यांमा के राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि कल तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला AI सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली शिक्षा प्रणाली में बेहतर समन्वय और प्रभाव सुनिश्चित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को

मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। और खेलों में IPL क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार भी आपने सुने। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के ठीक 6:10 हुए हैं और अब प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम खेती की बातें। आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए भिंडी की खेती, इस विषय पर ये जानकारी।

कार्यक्रम खेती की बातें सुनने वाले सभी किसान भाइयों को अपने रेडियो दोस्त सुरेंद्र टूडू का प्यार भरा जोहार। श्रोता मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं भिंडी की खेती के बारे में। किसान भाइयों, भिंडी की खेती कम समय और लागत में अधिक मुनाफा देने वाली फसल है। इसकी बुआई साल में दो बार फरवरी मार्च गर्मियों के लिए और जून जुलाई बरसात के लिए की जाती है। खेत की तैयारी और जल वायु मिट्टी, अच्छे जल निकास वाली हल्की से मध्यम दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त है। खेत का पीएच मान 6.0 से 7.0 के बीच होना चाहिए। जुताई की बात करें तो खेत की मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करके रोटावेटर चलाएं और मिट्टी को भुरभुरा बना लें। इसके बाद आती है खाद की बात। तो इसमें प्रति एकड़ 8 से 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, 50 किलो डीएपी और 25 किलो पोटास बुआई के समय में डालें। इसके बाद किसान भाइयों, बात आती है उन्नत किस्में, हाइब्रिड किस्में। इसके अंतर्गत अंगेती उपज के लिए सिंजेटा नॉन हैम्स की सम्राट, वीएआर की रिया या कत्यायनी के हाइब्रिड बीज बो सकते हैं। इसमें बीज की मात्रा गर्मियों के लिए प्रति एकड़ 2.5 से 3 किलो बीज और बरसात के लिए 4 से 5 किलो बीज पर्याप्त होता है। बीज उपचार में बात करें तो बुआई से पहले बीजों को कार्बेडाजिम या थायरम 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज से उपचारित आवश्यक करें। किसान भाइयों, अगली बात करें तो बुआई का तरीका, जिसके तहत कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधों की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखें। इसके बाद गहराई, बीज को लगभग 1 इंच की गहराई में बोना बहुत जरूरी होता है। आप चाहे तो मेड़ बनाकर भी बुआई कर सकते हैं। इसके बाद आता है सिंचाई और उर्वरक प्रबंध सिंचाई। इसके अंतर्गत गर्मियों में 3 से 4 दिन के अंतराल पर और सर्दियों में 7 से 8 दिन के अंतराल पर सिंचाई जरूर करें। बुआई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई भी करें। श्रोताओं, खरपतवार में बात करें तो बुआई के 2 से 3 दिन के अंदर पेंडा मेथिलीन दवा का छिड़काव जरूर करें। इसके बाद आता है पोषण, जिसमें बुआई के 25 से 30 दिन बाद

0: 25 किलो प्रति एकड़ यूरिया और सूक्ष्म पोषक तत्व जरूर डालें। कीट एवं रोग नियंत्रण भिंडी से रस चूसने वाले कीड़े जिसे माइट थ्रिप्स या फल छेदक का प्रकोप हो सकता है, इनसे बचाव के लिए आवश्यकता अनुसार उचित कीटनाशक का स्प्रे करें। इसके बाद श्रोताओं, समय आता है तोड़ाई का। इसमें बुआई के लगभग 50 से 60 दिन बाद भिंडी तोड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद आप मुलायम भिंडी की हर दूसरे दिन तोड़ाई करें ताकि बाजार में अच्छा भाव मिल सके। तो किसान भाइयों, ये तो जाना आपने भिंडी की खेती के बारे में, तो आप भी इस तरह से खेती कर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं और अपनी आय की भी वृद्धि कर सकते हैं। तो श्रोताओं, मुझे यानी कि सुरेंद्र टूडू को आज्ञा दीजिए, सभी को मेरा प्यार भरा जोहार।
1: भिंडी की खेती इस विषय पर आप सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम खेती की बातें के तहत ये वार्ता, और इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ।

FM 104 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और इस समय आप हैं हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। और अब लीजिए सुनिए आज का चिंतन। जब व्यक्ति विद्वानों, श्रेष्ठ जनों और गुरु की बातें सुनता है तो शब्द रूपी ब्रह्म कानों से प्रवेश कर मस्तिष्क में रासायनिक परिवर्तन करते हैं तथा मस्तिष्क को उत्तम बनाते हैं। खराब और बुरी बातें सुनने के बाद प्रायः कलह की स्थिति निर्मित होती है। घर से दूर गए व्यक्ति को सीधे बुरी खबर नहीं दी जाती। ये है शब्दों का प्रभाव। प्रेम का आरंभ भी शब्द से और युद्ध की शुरुआत भी शब्द से ही होती है। हमारे मनुष्यों ने इसलिए आध्यात्मिक ग्रंथों में जीवन की तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सद्विचारों को अच्छे शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया। इसलिए जीवन में सबसे पहले हमें अपने मन की आवाज़ जरूर सुननी चाहिए। प्रथम स्तर पर मन ही हमें बहुत कुछ बता देती है। गलत काम को तो वो जरूर बताती है। जिसने विवेक और अंतरात्मा की आवाज़ को ही अपना गुरु बना लिया, समझिए कि उसने सार्थक जीवन का सूत्र तलाश लिया। ये था आज का चिंतन। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के ठीक 6:18 होने वाले हैं और अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। इसके तहत आइए सबसे पहले सुने देश वंदना।

संवेद स्वर में आप सुन रहे थे देश वंदना। श्रोताओ, अगर हम ईश्वर का निरंतर चिंतन करते हैं तो हमारा मन पवित्र हो जाता है, हमारे विचार अच्छे बन जाते हैं और आने वाला समय, आने वाला हर पल हमारे लिए खूबसूरत हो जाता है, आसान हो जाता है। आज की सुंदर सुबह, सुंदर दिन की शुरुआत के लिए आइए अब करें ईश्वर की वंदना। और आज के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ों में भजन।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना में आप सुन रहे थे भजन। आज के कलाकार थे अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण और साथी। और श्रोताओं, इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यही संपन्न हुआ।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। इस समय सुबह के ठीक 6:50 हो रहे हैं और अब लीजिए सुनिए रामचरितमानस।

कपटी मुनि एक तनु ने राजा प्रताप भानु को ब्राह्मणों को प्रसन्न करने का ये उपाय बताया कि वो एक वर्ष तक नित्य प्रति 100,000 ब्राह्मणों को उनके कुटुंब सहित भोजन कराए। उसी समय वहां कालकेतु नामक राक्षस आया। वो तपस्वी राजा अर्थात कपटी मुनि का गहरा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र तथा 10 भाई थे जो अजेय तथा देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों तथा देवताओं को निर्भय करने के लिए राजा प्रताप भानु ने उन सब की हत्या कर दी थी और इसी कारण बदला लेने के लिए कालकेतु ने कपटी मुनि से मित्रता करके प्रताप भानु का सर्वनाश करने का कुचक्र रचा।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 7 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर दो नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: गृहमंत्री ने ड्रोन रडार निगरानी टावर, अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कल कहा कि तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एज एआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के 2 सप्ताह में होगी। आईपीएल क्रिकेट में न्यूज

0: चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार अभी आपने सुने। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 7:05 और 20 सेकंड हुए हैं और आप इस समय हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

FM 102.4 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। आइए अब आपको बता दें हमारे इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। हमारी इस सभा में आपसे थोड़ी देर बाद यानी ठीक 7:10 पर रक्तदान का महत्व इस विषय पर सुनिएगा भेंटवार्ता। जमशेदपुर ब्लड सेंटर के कैंप कोऑर्डिनेटर और अरिजीत सरकार से विशेष बातचीत हम आपको सुनवाएंगे। उनसे बातचीत करेंगे प्रभाष झा।

सुबह 7:20 पर लोकगीतों के कार्यक्रम में सुनेगा आज मगही लोकगीत, कलाकार होंगी निशी प्रसाद। सुबह 7:35 पर बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरांजलि के अंतर्गत आज सुनिएगा बाबुल सुप्रियो, जोजो और श्री राधा की आवाजों में आधुनिक गान। समय होगा सुबह 7:35। दांतों का सड़ना, कारण और निदान, इस विषय पर बतलाएंगे हमें डॉक्टर शांति मिश्रा। कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा के तहत सुबह ठीक 7:50 पर। आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार प्रभात का समय होगा सुबह 8:00। 8:15 पर रोजाना की तरह सुनिएगा मॉर्निंग न्यूज और ठीक 8:30 पर सुनिएगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। सुबह 8:45 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे और सुबह 9:05 पर फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुरंजना के तहत आज सुनिएगा कुछ युगल गीत। सुबह 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के आज के कलाकार होंगे उस्ताद बिस्मिल्ला खान, सुनिएगा शहनाई वादन राखों का अलहैया बिलावल। दस 10:20 पर एक बार फिर से आप आनंद ले सकते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का। अभी आप सुन रहे थे हमारे

0: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। इस समय सुबह के ठीक 7:10 हो रहे हैं और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम जरा सुनिए।
1: जरा सुनिए,
2: जरा सुनिए,
1: जरा सुनिए।
2: समस्या है तो समाधान भी, जहाँ चाह वहाँ राह, बात बन जाएगी
1: जरा सुनिए।
3: नमस्कार श्रोताओं, जरा सुनिए कार्यक्रम में आपका अभिनंदन। हम सब जानते हैं कि मानव जीवन में रक्त का कितना महत्व है। शरीर में रक्त की कमी होने पर हम नाना प्रकार की परेशानियों का सामना करते हैं। डॉक्टर के पास जाकर हमें कई तरह की दवाइयां लेनी पड़ती हैं और कई बार तो हमें तरह तरह के फूड सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, पोषक तत्व लेने पड़ते हैं। रक्त की बहुत अधिक कमी होने पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन का सहारा लेना पड़ता है। खून की इसी कमी को दूर करने के लिए बहुत से लोग स्वेच्छा से रक्तदान भी करते हैं। जरा सुनिए कार्यक्रम में जमशेदपुर ब्लड सेंटर के कैंप कोऑर्डिनेटर, जो 20 वर्षों से इस संस्था से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए स्वयंसेवी अरिजीत सरकार जी हमारे साथ हैं। अरिजीत जी, जरा सुनिए कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत और नमस्कार।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अरिजीत जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि रक्तदान है क्या और इसकी जरूरत आम लोगों को क्यों पड़ती है?
4: देखिए, रक्तदान एक ऐसी चीज है जो मानव शरीर में ही ये बन पाता है। अभी तक कहीं इसका दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं बना
3: जी।
4: तो जब तक हम अपने स्वेच्छा से रक्तदान कर किसी भी ब्लड सेंटर के कुएं को अगर भरा ना रखे तो कभी भी जरूरत के समय वो हमेशा वो सूखा ही रहेगा। तो इस गर्मी के समय में भी कोई भी ब्लड सेंटर का जो स्टॉक है वो हरा भरा रहे, ताकि हमें रस्सी का सहारा ना लेना पड़े, जस्ट बाल्टी डाले और पानी आ गया। तो ये सुखद समय लाने का प्रयास इस भारतवर्ष में जो रक्तदाताओं का शहर के रूप में जाना जाता है, वो जमशेदपुर हमेशा इसमें प्रयासरत है।
3: जी हाँ, लेकिन आप देखेंगे कि अक्सर रक्तदान करने से लोग कतराते हैं। आप सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि कौन सा व्यक्ति स्वेच्छा से रक्तदान कर सकता है?
4: देखिए, किसी भी व्यक्ति में सबसे पहले एक पॉजिटिव सोच का होना जरूरी है कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं मेरा दिशा पॉजिटिव होना चाहिए। और एक कहावत भी है कि लोग पूछते हैं कि डर के आगे की क्या है, तो लोग अनायास ही कह देते हैं कि डर के आगे जीत है। लेकिन ये ऐसा कार्य है कि डर के आगे भी डर है
3: जी।
4: हमको उसको भी पार करके अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो वो है रक्तदान। तो इसके लिए आत्मबल का होना जरूरी है, पॉजिटिव सोच का होना जरूरी है, और खास करके इसका कुछ क्राइटेरिया है
3: जी। उसी क्राइटेरिया के बारे में बहुत लोगों को तो मालूम ही नहीं रहता है, तो उस क्राइटेरिया को आप श्रोताओं तक पहुंचा दें, बता दें।
4: क्योंकि आज के दिन सिर्फ रक्तदान ही प्राथमिकता नहीं है
3: जी।
4: शुद्धता के साथ, असरदाई के साथ, फलदाई के साथ अगर कोई रक्तदान होता है तो निश्चित तौर पर वो किसी मरीज का जीवन बचेगा
3: जी।
4: तो इसके लिए न्यूनतम जो उम्र सीमा है वो 18 वर्ष, और अभी अधिकतम 65 वर्ष तक अगर कोई नियमित रक्तदान करता है तो 65 वर्ष तक वो रक्तदान कर सकता है। जिसके चलते रक्तदाताओं को पहले पूर्णतया स्वस्थ होना जरूरी है
3: जी।
4: जिसके लिए उसका हीमोग्लोबिन की मात्रा 12.5 ग्राम पर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये उस दिन जिस दिन रक्तदान करते हैं उस दिन जांचा भी जाता है। ब्लड प्रेशर जो है वो भी नॉर्मल 120/80 होना चाहिए, और साथ में 6 महीना के अंदर किसी भी तरह का छोटा मोटा ऑपरेशन ना हुआ हो, 1 साल के अंदर किसी भी तरह का बड़ा ऑपरेशन ना हुआ हो। आजकल तो युवाओं में एक अलग सोच है कि तुरंत कुछ भी ऐसा देखता है तो टैटू कर लेते हैं। अगर कोई टैटू बना लेता है तो 1 साल तक वो रक्तदान से वंचित रहेंगे
3: जी जी।
4: और अगर बहुत होता है कि कोई कान छिदवा लिया, तो अगर ऐसे कोई कान छिदवा लेता है तो वो भी 1 साल तक वंचित रहेंगे। तो आप सोचिए कि कौन रक्तदान नहीं कर सकता है, यही हम खाली बता रहे हैं। तो आखिर जो रक्तदान करते हैं तो सोचिए कितना क्राइटेरिया से वो पार हो के वो कितना मतलब स्वस्थ है कि वो रक्तदान कर पा रहा है।

0: तो ये वैल्यू बहुत डिपेंड करता है कि अगर कोई रक्तदान कर रहा है मतलब वो कितना तरह से अपने आप को स्वस्थ रखा है, मतलब किसी तरह का ना वो डायबिटिक हो सकता है, ना उसके अंदर कोई ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है। और सबसे बड़ा है मेडिसिन, लोग ब्लड प्रेशर का मेडिसिन लेके ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, डायबिटिक का बहुत सारा ऐसा रीजन है। तो 72 घंटे के पहले हम किसी भी तरह का मेडिसिन नहीं लेंगे, 72 घंटे के अंदर हम किसी भी तरह का नशे आदि का सेवन नहीं करेंगे,
1: जी,
0: और ब्लड डोनेशन के बाद भी हम इस तरह का तुरंत कोई नशे आदि का सेवन नहीं करेंगे। तो एक स्वस्थ होने का जो सारा गाइडलाइन दिया हुआ है ना, आप सोचिए कि ये सारा गाइडलाइन को फॉलो करके भी जमशेदपुर और आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, ये आज कितना जागरूक है कि इस सारे क्राइटेरिया को पार करके रक्तदान कर रहे हैं, मतलब हमारा स्वस्थता का ऊपर भी ध्यान है।
2: जी हाँ, यानी जो व्यक्ति नियमित रूप से किसी तरह का दवा नहीं खाता है या बहुत ज्यादा किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं है, वही व्यक्ति जो है रक्तदान कर सकता है। चलिए, ये तो बहुत बड़ी बात है, और लोगों का स्वस्थ रहना ही आज के भागदौड़ भरे जीवन में या लाइफस्टाइल में बहुत मुश्किल है। तो ऐसे लोगों को चुनकर फिर आप उनको मोटिवेट भी करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग तो हैं कि रक्तदान करने से घबराते हैं और कहते हैं कि इससे तरह तरह की कई तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे लोगों को मोटिवेट करने के लिए आप लोग क्या करते हैं?
0: नहीं, हम लोगों का मोटिवेशन का जो टेक्निक है थोड़ा सा अलग है। जिस तरह से नेताजी कहे थे कि तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, तो हम लोग थोड़ा उसी पथ पर चलते हैं कि जब तक दिल्ली का लड्डू नहीं खाएंगे और नहीं पछताएंगे तब तक पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए कदम तो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमको ये मालूम नहीं कि जो अस्पताल में भर्ती है वो मतलब किस बीमारी से ग्रसित है या कौन है। हो सकता कहीं ना कहीं किसी ना किसी के माँ, भाई, बहन, पिताजी होंगे। तो हम अगर जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि वो हमारे परिवार के ही कोई ना कोई है, जब तक हम अपना कदम नहीं, लोग यही सोचते हैं कि हमारे माँ भर्ती हैं तो कोई इसका दूसरा कोई रक्तदान करेंगे और हम इसका ब्लड लेंगे। तो ये सोच को पहले हटाना है। और हम लोग यही कहते हैं कि लोग कहते हैं कि एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर अगर हम लगाएंगे उसमें कितना यूनिट होना चाहिए। हम सोचे आज 20 साल 25 साल पहले से जब इसका शुरुआत किए थे तभी किसी संस्थाओं के ऊपर इस प्रतिबंध को हटा दिए थे कि आप ये सोच के मत चलिए कि हमको 100 यूनिट करना है
1: जी।
0: हमको एक सेफ ब्लड डोनर चाहिए। आज सोच लीजिए ये जो गर्मी का समय रक्तदान शिविर में कमी आता है,
2: जहाँ बिल्कुल बहुत से लोग तो गर्मी के कारण मतलब अगर वो ब्लड डोनेट करना भी चाहते हैं तो पता चला कि उनका प्रेशर बढ़ गया या गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, घबराहट हो रहा है, तो उस वजह से वो अंत में नहीं दे पाएंगे, नहीं कर पाएंगे रक्तदान।
0: सबसे बड़ा इसका कारण है कि एटमोस्फियर का
1: जी,
0: कि हर जगह तो वातानुकूलित एटमोस्फियर नहीं मिलता, लेकिन हम लोगों ने यही बीड़ा उठाया है कि ठंड के समय से जो रक्तदान शिविर आयोजित करते हैं उन सभी को, और इसमें गांव वाला जो स्वैच्छिक रक्तदान शिविर है आज सबसे बड़ा मजबूत स्तंभ होके आया है कि अप्रैल से लेकर जुलाई तक मेरे सारे कम से कम 80 कैंप हमारे गांव में हो रहे हैं। यानी गांव के जो युवा है, जो रक्तदाता है, जागरूक हुए हैं।
2: गांव में मतलब शहर के, जमशेदपुर शहर के आसपास के कौन कौन से गांवों को आप लोग कवर करते हैं?
0: बिहड़ जंगल में जाते हैं जहां दूर दूर तक घर नजर नहीं आता। एक समय तो लोग कह जाते हैं कि हमें नहीं लगता दिन भर में कोई यहाँ रक्त देने आएगा।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: वैसे लोग सोच सकते हैं वहाँ 200 यूनिट रक्त इकट्ठा होता है।
2: अरे वाह,
0: तो ये कहीं ना
2: ये तो शहरों में भी कई जगहों पर नहीं हो पाता है,
0: दिन भर में हो सकता नहीं होता हो
1: जी, जी।
0: लेकिन आज वैसे सुदूरवर्ती गांव, आप इधर पटमदा, बोड़ाम, इधर राखा माइंस, इधर झारखंड बंगाल का सीमा, इधर हो गया पोटका, जानमडी, हाँ ये सब इतने सुदूरवर्ती है ना कि जहाँ जाने में 2-2 घंटा 3-3 घंटा समय लगता है,
2: और वहाँ के लोग यहाँ शहर में आकर रक्तदान कर भी नहीं सकते हैं
0: क्योंकि दूरी बहुत है
1: जी जी।
0: ऐसा जगह है कि जहाँ तक सही में पहुँच पाना भी मुश्किल है।
2: तो इस तरह के मतलब आयोजन साल भर में हमारा जमशेदपुर ब्लड सेंटर करता है, कितने सारे आयोजन करता है?
0: ऐसे करीब करीब 600 से 700 स्वयंसेवी संस्था है।
2: अच्छा, ये तो बड़े सुखद आश्चर्य की बात है और बहुत खुशी की बात है कि ऐसे संस्थाएं जो हैं मिलकर काम कर रही हैं और तब जाकर हमारा जमशेदपुर शहर जो है वो रक्तदाताओं का शहर कहलाता है।
0: निश्चित तौर पर एकाध संस्था के चलते आज जमशेदपुर गर्व का शहर नहीं बना। आज लोग इतना जागरूक है, शहर से लेकर सुदूरवर्ती गांव तक छोटा छोटा टोली बन के तैयार है
1: जी, जी, जी।
0: कि लोग चाहते हैं अब तो जन्मदिन पे, वैवाहिक वर्षगांठ पर, हम लोगों ने इंडिया में पहला बार दुर्गा पूजा पंडाल में सप्तमी का दिन ब्लड डोनेशन कैंप लगाया।
1: अच्छा,
0: जिस समय पूरा डेंगू का कहर चल रहा था, हमने इंडिया में दूसरा बार एसी रेल कोच में, रेल मतलब हमारे टाटानगर रेलवे के द्वारा हम लोग कोच के अंदर ही स्वैच्छिक रक्तदान शिविर

0: तो निश्चित तौर पे लोग जागरूक हो रहे हैं, लोगों को जो डर है कि रक्त देने से हम कमजोर हो जाएंगे, तो ये जस्ट एक मच्छर काटने के जैसा है। आदमी को एक बार तो फील उसको लेना पड़ेगा कि, और उसके बाद तो ये ललक हो जाता है। सिर्फ एक बार के लिए हमको जागरूक करना पड़ेगा, एक बार मेरा मेहनत खाली एक बार, कि एक बार आप रक्तदान करने आइए, अपना 5 से 10 मिनट का समय निकालकर, उसके बाद वो अपने पूरे जीवन भर हमको फोन करके पूछता है कि मेरा 90 दिन पूरा होने पे आप हमको बुला लीजिए।
1: जी हाँ, बहुत मतलब कि अच्छी बात है ये। और रक्तदाता जो भी हैं, जो एक बार जुड़ जाते हैं, उनको निश्चित रूप से जो आनंद मिलता है इसमें, क्योंकि बिना किसी खर्च के कोई बहुत दूर उनको जाना नहीं पड़ता है। आपसा जमशेदपुर ब्लड सेंटर और बहुत सी संस्थाएं वो वहां तक पहुंचती हैं जहां लोग मतलब हम और आप पहुंच भी नहीं सकते हैं, और वो वहां पर बैठे बैठे सिर्फ उनको स्वस्थ होने की आवश्यकता है और वो अपना रक्त बहुत आसानी से ऐसे व्यक्ति को दे सकते हैं जिनको उसकी बहुत जरूरत है और जिसके कारण बहुतों की का जीवन बच जाता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे लोगों को आप मोटिवेट करने के लिए सुदूर गांवों में भी जा रहे हैं, जमशेदपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों के लोगों को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और सुखद आश्चर्य हुआ ये जानकर कि वहां के लोग ज्यादा जागरूक हैं और इस महादान शिविर कहिए या डोनेशन कैंप कहिए, इसमें ज्यादा से ज्यादा भाग लेकर लोगों की भलाई करना चाह रहे हैं। और इसी उद्देश्य से शायद आप 20 वर्ष पहले जमशेदपुर ब्लड सेंटर से भी जुड़े थे।
0: हाँ, एकदम निश्चित तौर पर। उस समय तो सोच अलग था, क्योंकि एक जब बेंगलोर में ऐसा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक लड़के का पैर कट गया था, तो उसके लिए रक्तदान करना पड़ा था। मेरा पहला शुरुआत वहीं से था कि अगर किसी का एक्सीडेंट के वजह से इतना खून अगर निकल गया जो रेलवे ट्रैक के किनारे गिट्टी लाल हो चुका था, तो हम लोग अगर थोड़ा सा रक्त देंगे तो इससे तो अच्छा ही रहेंगे। तो ये एक शुरुआत था, लेकिन आज का जो स्वरूप है, निश्चित तौर पर जागरूकता में बहुत बढ़ोतरी हुआ है। अब उतना सोच, उतना प्रेशर के साथ आप जाने का जरूरत नहीं होता है,
1: लोगों को बहुत अधिक समझाना नहीं पड़ता है।
0: बहुत समझाना नहीं पड़ता है। आप तो खास करके जमशेदपुर और के आसपास के क्षेत्र, जमशेदपुर शहर में भी ऐसे बहुत सारे संस्थाओं को हम लोगों ने साथ निभाते हुए शुरुआत करवाया, जो 1,000 यूनिट से ज्यादा, ऐसे 10 से ज्यादा संस्थाओं को हम लोगों ने नया एक स्वरूप दिया। लेकिन वो तो है ही, चलिए वो तो बहुत मतलब अपना सराहनीय कार्य कर रहा है, लेकिन जो सुदूरवर्ती ग्रामीण में जो संस्थाएं जो अभी आज तैयार है ना, इसका सुखद आनंद अलग ही है। क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं है, सही में आपको आश्चर्य होगा, जिसका पैर में चप्पल नहीं है, खाली पैर गर्मी में आ रहा है, रक्तदान कर रहे हैं, मुंह में गमछा बांध के आ रहा है, वो आपके लिए रक्त दे रहा है, तो इससे सही में धरती का भगवान
1: बिल्कुल निस्वार्थ भावना से, उसे ये भी नहीं पता कि उसका रक्त जो है वो किसके पास जाएगा, किसकी किसके जीवन को बचाएगा, इस संबंध में कोई लेना देना नहीं है, कोई सोच नहीं है उसके पास।
0: यही तो है कि हम जो रक्त दे रहे हैं, अगर ये ऊपर वाला बोल के कोई चीज है, कोई चक्र अगर कोई चला रहा है, तो हमको ये मालूम नहीं है कि मेरा दिया हुआ रक्त हिंदू के लिए है कि मुस्लिम के लिए है कि सिख के लिए है कि ईसाई के लिए है। राम रहीम के लिए दे रहा, रहीम राम के लिए दे रहा, यही है मानवता का मिसाल।
2: तो श्रोताओं, अभी आप रक्तदान के महत्व और जरूरत विषय पर बातचीत सुन रहे थे। इस संबंध में जानकारी दे रहे थे जमशेदपुर ब्लड सेंटर के कैंप कोऑर्डिनेटर अरिजीत सरकार। हमें उम्मीद है श्रोताओं कि रक्तदान के महत्व को समझकर आप भी इसके लिए आगे आएंगे और इच्छुक लोगों को भी रक्तदान यानी जीवन दान हेतु प्रेरित करेंगे। जरा सुनिए कार्यक्रम का आज का सफर बस यहीं तक। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए मुझे यानी प्रभाष को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
3: जरा सुनिए,
4: जरा सुनिए,
3: जरा सुनिए।
4: समस्या है तो समाधान भी, जहाँ चाह वहाँ राह, बात बन जाएगी।
3: जरा सुनिए,
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जरा सुनिए। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। और अब प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आज सुनिए मगही लोकगीत, कलाकार हैं निशी प्रसाद।

लोकगीतों के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे निशे प्रसाद की आवाज़ में मघी लोकगीत, और इसी के साथ लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 MHz पर। प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों को अभी आप सुन रहे हैं।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फ़ोन नंबर है 06572960445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।

FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। इस समय सुबह के ठीक 7:35 होने वाले हैं और अब प्रस्तुत है बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरांजलि। इसके तहत आज सुनिए बाबुल सुप्रियो, जूजू और श्री राधा की आवाजों में आधुनिक गान।

बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरांजलि में अभी आप सुन रहे थे बाबुल सुप्रियो, जोजो और श्री राधा की आवाज़ों में आधुनिक गान, और इसी के साथ बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरांजलि अब यहीं संपन्न हुआ।

0: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। इस समय सुबह के ठीक 7:50 हुए हैं और अब प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज इस कार्यक्रम में डॉक्टर शांति मिश्रा हमें बता रही हैं दांतों का सड़ना कारण और निदान इस विषय पर, और उनसे बातचीत कर रहे हैं राजेश कुमार।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा के आज के अंक में हमारा विषय है दांतों का सड़ना कारण और समाधान। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डेंटिस्ट डॉक्टर शांति मिश्रा। डॉक्टर साहिबा, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: डॉक्टर साहिबा, दांत सड़ने का मुख्य कारण क्या होता है?
2: दांत सड़ने के तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ये जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे दांतों की सामान्य बनावट कैसी होती है।
1: जी।
2: हमारे दांत 3 लेयर से बने होते हैं, एनामेल, डेंटिन एंड पल्प। एनामेल जो होती है ये सबसे बाहरी सख्त परत होती है, उसके बाद होती है डेंटिन, ये मिडिल लेयर है। फिर जो अंदरूनी लेयर है उसे पल्प कहते हैं, जो सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है, वहाँ दांतों की नसें पाई जाती हैं, तथा ये काफी ही संवेदनशील भी होती है। जब दांतों की सबसे ऊपरी सतह एनामेल हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है और छोटे छिद्र या छेद में विकसित हो जाती है, उसे ही दांतों की कैविटी कहा जाता है,
1: आम भाषा में जिसे हम सड़ना कहते हैं,
2: या तो डेंटल कैरीज भी बोला जाता है, दांतों में कीड़े लगना बोला जाता है। जब कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार जैसे कि ब्रेड, दूध, अनाज, सॉफ्ट ड्रिंक, फल, केक इत्यादि हमारे दांतों में रह जाते हैं, तो हमारे मुंह में मौजूद बैक्टीरिया उसे एसिड में तब्दील कर देते हैं। बैक्टीरिया, एसिड तथा दांतों में अटका हुआ खाना और लार मिलकर प्लाक बनता है, जो दांतों के साथ चिपक के रह जाता है। प्लाक में मिला हुआ एसिड एनामेल को खत्म कर देता है और दांतों में छेद कर देता है, जिसे कैविटी कहते हैं। शुरू में ये छेद बहुत ही छोटा होता है, पर समय के साथ ये बड़ा होता जाता है।
1: लोगों को ये पता कैसे चले कि उनके दांत सड़ रहे हैं?
2: डेंटल कैविटी के लक्षण भिन्न भिन्न होते हैं, जो कि उसकी सीमा और जगह पर निर्भर करता है। कैविटी के शुरुआती स्तर पर लक्षण मिलना अनिवार्य नहीं है, जैसे ही सड़न बढ़ती जाएगी संकेत और लक्षण दिखने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि दांतों में दर्द होना, स्वाभाविक दर्द या ऐसा दर्द जो बिना कारण के हो, दांतों में झनझनाहट जिसे टूथ सेंसिटिविटी भी कहते हैं, मीठा, गर्म या ठंडा खाते वक्त हमें तेज दर्द का महसूस होना, दांतों में छेद या गड्ढों का दिखाई देना, दांतों की सतह पर काले, भूरे और सफेद रंग के दाग दिखाई देना, चबाते वक्त दर्द होना, ये सब अगर आपके दांतों में फाइंडिंग्स मिलते हैं, मतलब
1: तो
2: आपके दांत
1: सड़ रहे हैं।
2: हाँ।
1: दांतों के सड़ जाने के बाद किस तरह का इलाज आप लोग करते हैं?
2: इसका इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी कैविटी किस स्टेज में है। जैसे कि अगर आपकी कैविटी इनिशियल स्टेज में है, जिसमें कि पेशेंट को दर्द का अनुभव नहीं होता है, सिर्फ दांतों में ब्लैक कलर या ब्राउन कलर का डिस्कलरेशन पाया जाता है, इस सिचुएशन में फ्लोराइड ट्रीटमेंट किया जाता है। ये एनामेल को वापस लाने में मदद करता है और कैविटी को शुरुआती स्तर पर ही ठीक कर सकता है। अगर कैविटी एनामेल को क्रॉस करके डेंटिन तक पहुंच जाती है, जो कि सेकेंड लेयर है, तो हमें हल्का दर्द महसूस होगा और हमारे उस कैविटी में खाना भी फंसने लगेगा। इस स्टेज पर फ्लोराइड ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है। इस केस में हम सबसे पहले ड्रिल मशीन द्वारा कैविटी को साफ करते हैं और उस खाली जगह को फिलिंग मटेरियल से भर देते हैं, जैसे कि कॉम्पोजिट रेजिन। ये दांतों की ही कलर का होता है। अगर हम इस स्टेज में भी इसे ध्यान नहीं देंगे तो ये बढ़कर हमारी दांतों की नसों तक चली जाएगी, जो कि एडवांस स्टेज है। इस केस में तेज दर्द महसूस होगा और इसका डायग्नोसिस एक्सरे द्वारा किया जाता है। इस तरह के केस का इलाज RCT है, जिसे रूट केनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं, जिसमें कि हम मशीन द्वारा दांतों की नसों को हटा देते हैं और उसके बाद फीलिंग करते हैं, और उसके ऊपर एक कैप भी लगता है जिसे क्राउन बोला जाता है। और अगर हमने इस स्टेज में भी इसका इलाज नहीं कराया तो हमारे दांत सड़ जाएंगे और टूटने लगेंगे। फिर एक ही इलाज बचता है, दांतों को जड़ से उखाड़ देना, और उस खाली जगह को ब्रिज या तो इम्प्लांट द्वारा भरा जाता है।
1: तो श्रोता, आपने सुना कि दांतों का सड़ना पूरी तरह से हमारे ऊपर निर्भर है। अगर हम अपनी दांतों का सही देखभाल करें तो बेशक

0: हम दांतों में जो कैविटी होता है, जो दांत सड़ जाते हैं, उससे हम बच सकते हैं। डॉक्टर साहिबा ने जो भी जानकारियां दी उसे यदि आप अमल करेंगे तो आपका दांत भी स्वस्थ रहेगा और आप भी स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: दांतों का सड़ना, कारण और निदान, इस विषय पर बतला रही थी हमें डॉक्टर शांति मिश्रा और उनसे बातचीत कर रहे थे राजेश कुमार। और इसी के साथ दैनिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा अब यहीं संपन्न हुआ।

ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों को अभी आप सुन रहे हैं।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरे यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मनभावन कार्यक्रम से।

श्रोता, हम आपको बता दें हमारे इसी सभा में सुबह 9:05 पर फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुरंजना के अंतर्गत आज सुनिएगा कुछ युगल गीत।

सुबह 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के आज के कलाकार होंगे उस्ताद बिस्मिल्ला खान, सुनिएगा शहनाई वादन, राघों का अलहिया बिलावल।

कार्यक्रम विवरण अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के ठीक 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण

0: हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइन 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
4: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, भारत सरकार ने excise duty कम की, so these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies को workout करने के लिए कहा है कि LPG का जो reserve है, that should be minimum 30 days with them, and they are working on it. And similarly for crude also, we are working.
3: संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।
5: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
3: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री महाजन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जा रही हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6ठे चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने तीव्र प्रगति की है। सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 88.6% से बढ़कर 90.6% हो गए हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों के टीकाकरण का आंकड़ा लगातार 96% से अधिक बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं के डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग 2 गुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान

0: और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। म्यांमार के राष्ट्रपति यु मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यु मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमार के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति की कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान म्यांमार और भारत के बीच आपसी संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
1: He'll be meeting our Prime Minister and both leaders.
2: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
1: This is official visit and we look forward to welcoming the President of Myanmar.
0: इस यात्रा के अंतर्गत म्यांमार के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं और शहर के विभिन्न स्थलों पर भ्रमण के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
3: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के 2 सप्ताह में होगी। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार युवाओं के लिए चिंतित है और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आगे ऐसी कोई चूक न हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पंजाब नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1977 वार्ड में से 958 वार्ड जीत लिए हैं। कांग्रेस को 397, शिरोमणि अकाली दल एसएडी को 192 और भाजपा को 172 वार्ड में जीत हासिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी को केवल 7 वार्ड मिले। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 251 वार्ड जीतकर 3rd स्थान हासिल किया। गोवा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1987 में इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और वो भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। उपराष्ट्रपति सीपी

0: राधा कृष्णन आज पणजी स्थित कला अकादमी में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे।
1: गोवा में आज आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह राज्य की पिछले 4 दशकों की उल्लेखनीय प्रगति और विकास यात्रा को रेखांकित करेगा। 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद गोवा दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद 1967 में हुए ऐतिहासिक जनपद संग्रह ने गोवा की अलग पहचान को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1987 में कोंकणी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद राज्य गठन का रास्ता साफ हुआ और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। आज के समारोह में द कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही एक कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण, पुरस्कार वितरण और नागरिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलों की शुरुआत भी की जाएगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति गोवा स्थित CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेक्काल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बहुत तेज बारिश की आशंका जताई है। विभाग ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की भी आशंका व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हांगकांग में चल रही एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अब तक कुल 8 पदक अपने नाम किए। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल है। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कल प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय एथलीटों ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाले निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद कनक। नीट UG पेपर लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आज के अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने सर्वोच्च न्यायालय का बयान दिया है, जवाबदेही तय होने तक नहीं रुकेंगे पेपर लीक मामले। देशबंधु और नवभारत टाइम्स ने CBSE की 12वीं की आंसर शीट भी डिजी लॉकर में भेजे जाने की जानकारी दी है। पत्र लिखता है, यहीं से करा सकेंगे रिवैल्यूएशन। शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करने की अनिवार्यता से छूट देने का सर्वोच्च न्यायालय का इंकार भी अनेक अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, समय सीमा 1 साल बढ़ी। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। पत्र ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए TET पास करना ही होगा। जनसत्ता ने कर्नाटक में कांग्रेस की बैठक आज होने का समाचार देते हुए लिखा है, DK शिव कुमार को चुना जाएगा नेता। पंजाब केसरी ने सिद्धारमैया की सिद्धि शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है, कर्नाटक में जितनी शालीनता और शांति के साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है उसे भारतीय लोकतंत्र की जीवंत ताकत कहा जा सकता है। दैनिक जागरण ने घरेलू उड़ानों में कटौती से हवाई किराया 30% तक बढ़ने का समाचार दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी भी कई अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, अटका मॉनसून 7 दिन के बाद देगा दस्तक, 10% कम होगी बारिश। राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, बेवफा मॉनसून। दैनिक भास्कर लिखता है, इस साल सूखे का खतरा। हालांकि पत्र ने बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर पूर्व में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का LPG भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ अभियान के तहत राज्यों को दिया स्पष्ट रोड मैप। 1 जून से देशव्यापी खेत बचाओ अभियान होगा शुरू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जल स्रोतों से अवैध कब्जा हटाने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का दिया निर्देश। स्मार्ट सिटी, पेयजल आपूर्ति और सीवरेज ट्रीटमेंट योजनाओं को समय पर पूरा करने के आदेश। राज्य में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। रांची में 5 शातिर साइबर ठग और लातेहार में 1 करोड़ की अवैध शराब के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। राज्य के कई जिलों में गरज के साथ झमाझम बारिश। राजधानी रांची में दिन में ही छाया अंधेरा। पिछले 24 घंटे में वज्रपात से 4 लोगों की मौत। और रांची जिला शतरंज चैंपियनशिप का हुआ भव्य उद्घाटन। सांसद महुआ मांझी ने युवाओं से खेल से जुड़ने का किया आह्वान। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ खरीफ अभियान 2026 की बैठक में एक स्पष्ट कृषि रोडमैप जारी किया है। उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अब किसान हित में तेज फैसलों का समय है। खेती में लापरवाही, नकली बीज और घटिया कीटनाशकों की बिक्री बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने टीम इंडिया की भावना से बीज से बाजार तक की व्यवस्था दुरुस्त करने और 1 जून से शुरू होने वाले खेत बचाओ अभियान को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया।
1: खेत बचाओ अभियान ये आपके बिना नहीं चल सकता। 1 जून से 30 जून तक आप सबको भी निकलना पड़ेगा। मैं भी निकलूंगा, आप भी निकलें, बाकी मंत्रियों से भी कहें, केंद्रीय मंत्रियों से कहें, विधायकों से कहें, सांसदों से कहें, जनप्रतिनिधि लीड करें। कितना खाद, कौन सा पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड की जो आवश्यकता उसको कम कर देंगे, खत्म कर देंगे। खेत बचाओ अभियान में आप सब चीजें जोड़ सकते हैं। बीजों के मिनी किट देना अभी दो ना जनता के सामने, तो बड़े कार्यक्रम नहीं करना, गाँव के कार्यक्रम करना है। योजनाओं का लाभ बांट दे, केसीसी बन रहे केसीसी बांट दे। हम किसान सम्मान निधि में कोई रह गया है औपचारिकता पूरी करके उसका लाभ हम दे दे।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक में कड़ा रुख अपनाते हुए जल स्रोतों पर हुए अवैध अतिक्रमण को तुरंत हटाने और दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने रांची स्मार्ट सिटी, पेयजल आपूर्ति और ट्रैफिक प्रबंधन जैसी जनहित की योजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने पर विशेष जोर दिया। कोडरमा जिले के अंगीभूत कॉलेजों का गिरिडीह के सर जेसी बोस विश्वविद्यालय में स्थानांतरण का मामला गर्मा गया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस फैसले को छात्र विरोधी और अव्यवहारिक बताते हुए राज्य सरकार से इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है।
2: विरोध इस बात का है कि कोडरमा जब हजारीबाग यूनिवर्सिटी के अंतर्गत था, फिर इसे गिरिडीह में जेसी बोस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत लेने का औचित्य क्या है। हम सभी का ये कहना है कि राज्य सरकार को छात्र हित को ध्यान में रखते हुए इस निर्णय को वापस करे और पूर्ववत विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत रखे।
0: जामताड़ा में उपायुक्त सह प्रधान जनगणना पदाधिकारी आलोक कुमार ने जनगणना के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण और गणना कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जामताड़ा जिले के निवासियों से इस राष्ट्रीय कार्य में आगे आकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। उपायुक्त ने जोर देकर कहा कि सटीक जनगणना ही देश के विकास की असली आधारशिला है।
3: कि जनगणना 2027 का कार्य चल रहा है, इसमें हमारे जो इन्यूमरेटर्स हैं वो घर घर जाके सेल्फ इन्यूमरेशन जिसने किया है उसके क्वेश्चंस का वेरिफिकेशन कर रहे हैं, और जिन्होंने सेल्फ इन्यूमरेशन नहीं किया है उनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कोई भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस सब पे डॉक्यूमेंट दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि जनगणना 2027 बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और देश के विकास में भागीदार बने।
0: राज्य सरकार की मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में सिमडेगा के जलडेगा प्रखंड से एक बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। तिनगिना पंचायत के रहने वाले पंकज नाग नामक व्यक्ति पर महिला बनकर फर्जी तरीके से योजना का लाभ लेने का आरोप लगा है। जलडेगा बीडीओ डॉक्टर प्रवीण कुमार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी पंकज नाग और ऑनलाइन आवेदन भरने वाले प्रज्ञा केंद्र संचालक कुमार चाणक्य के खिलाफ थाने में FIR दर्ज कराई है। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक सैंडल

0: टीआईआर न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक हैंडल @TIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की बैठक में रांची में PNG पाइपलाइन बिछाने के काम में तेजी लाने पर जोर दिया गया। गेल इंडिया के अधिकारियों ने बताया कि स्टेशन रोड, बरियातू रोड, पीपी कंपाउंड और सिरमटोली चौक में पाइपलाइन का काम पूरा हो चुका है। अगले 5-6 महीनों में रांची के लगभग 1,00,000 घरों तक PNG गैस पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रांची पुलिस ने एक अपार्टमेंट में छापेमारी कर 5 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की विशेष टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की, जहां यह गिरोह डिजिटल धोखाधड़ी का नेटवर्क चला रहा था। SSP राकेश रंजन ने बताया कि किन पुलिस इन अधिकारियों अपराधियों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है, ताकि इनके बैंक खातों, वित्तीय लेन देन और राज्यव्यापी नेटवर्क से जुड़े अन्य सहयोगियों का पता लगाया जा सके।
1: छापामारी में हम लोगों ने कुल 5 लोगों को अरेस्ट किया है। ये 5 लोग बेसिकली एक तरीके के साइबर क्रिमिनल्स थे, जो कि विभिन्न प्रकार के वर्चुअल नंबर्स जनरेट करके क्रिमिनल्स के नाम पे यानी गैंग्स के नाम पे के विभिन्न व्यापारियों को धमकी दे रहे थे और धमकी देकर वहाँ से एक्सट्रॉशन मनी कलेक्ट करने का काम कर रहे थे। और इनके पास से अलग अलग 50 से अधिक पासबुक, 25 से अधिक डेबिट कार्ड और 13 के आसपास मोबाइल फोन जो हमने बरामद किए हैं।
0: लातेहार में पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ से अधिक की अवैध शराब जब्त की है। DSP संदीप कुमार गुप्ता ने बताया कि SP कुमार गौरव को मिली गुप्त सूचना पर चंदवा के ससंग मोड़ के पास नाकेबंदी की गई। तस्करों ने ट्रक में भूसे की आड़ में शराब छिपाई थी, जहां से 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया।
2: सिखों के दौरान हम लोग उसको पकड़े, एक बुलेटो गाड़ी, एक क्रेटा गाड़ी और साथ में एक स्कॉर्पियो क्रेटा, 5 चक्कर ट्रक है, करीब 1100 पेटी विभिन्न प्रकार का अवैध नहीं शराब जमा हुआ है। इसके साथ में कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है।
0: राज्य में अचानक आए मौसमी बदलाव के कारण गर्मी से राहत मिली है, लेकिन पिछले 24 घंटे में वज्रपात से 4 लोगों की मौत हो गई। आज सुबह राजधानी में घने बादलों के कारण दिन में ही रात जैसा अंधेरा छा गया और तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने रांची, धनबाद और बोकारो समेत कई जिलों में अगले 4 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, उपमहापौर नीरज कुमार और FJCCI अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने संयुक्त रूप से रांची जिला शतरंज चैंपियनशिप 2026 का भव्य उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि महुआ मांझी ने शतरंज की बिसात पर पहली चाल चलकर प्रतियोगिता का औपचारिक शुभारंभ किया। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि शतरंज केवल एक खेल नहीं, बल्कि मानसिक विकास, धैर्य और रणनीतिक सोच को मजबूत करने का सबसे बेहतरीन माध्यम है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने राज्यसभा चुनाव के सिलसिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी KRaju की मुलाकात की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, राज चुनाव, इंडिया गठबंधन दोनों सीटों पर उतारेगा प्रत्याशी। हिंदुस्तान के शब्द हैं, रांची में 233 हेडमास्टर का वेतन स्थगित। प्रभात खबर लिखता है, कार्यरत शिक्षकों को टेट पास करने के लिए 1 साल का समय मिला। दैनिक जागरण की सुर्खी है, देश में जल्द दिख सकते हैं प्लास्टिक के नोट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ अभियान के तहत राज्यों को दिया स्पष्ट रोड मैप, 1 जून से देशव्यापी खेत बचाओ अभियान होगा शुरू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जल स्रोतों से अवैध कब्जा हटाने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का दिया निर्देश। स्मार्ट सिटी, पेयजल आपूर्ति और सीवरेज ट्रीटमेंट योजनाओं को समय पर पूरा करने के आदेश। राज्य में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, रांची में 5 शातिर साइबर ठग और लातेहार में 1 करोड़ की अवैध शराब के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। राज्य के कई जिलों में गरज के साथ झमाझम बारिश, राजधानी रांची में दिन में छाया अंधेरा, पिछले 24 घंटे में वज्रपात से 4 लोगों की मौत। और रांची जिला शतरंज चैंपियनशिप का हुआ भव्य उद्घाटन, सांसद महुआ मांझी ने युवाओं से खेल से जुड़ने का किया आह्वान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन

0: समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: एक बार एक राहगीर रास्ते के किनारे पर बैठा था और आते जाते सबको पूछ रहा था, मुझे वहां पहुंचना है, एक रास्ता कहाँ है। पहले को पूछा, दूसरे को पूछा, चौथे को पूछा, सबको पूछता ही रहता था। और उसके बगल में एक सज्जन बैठे थे, वो सारा देख रहे थे। बाद में खड़ा हुआ, खड़ा होकर के किसी को पूछने लगा तो वो सज्जन खड़े होकर के उसके पास आए। उसने कहा, देखो भाई, तुमको जहाँ जाना है ना, उसका रास्ता इस तरफ से जाता है। तो उस राहगीर ने उसको पूछा, भाई साहब, आप इतनी देर से मेरे बगल में बैठे हो, मैं इतने लोगों को रास्ता पूछ रहा हूँ, कोई मुझे बता नहीं रहा है, आपको पता था तो आप क्यों नहीं बताते थे। बोले, मुझे भरोसा नहीं था कि तुम सचमुच में चल करके जाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, या ऐसे ही जानकारी के लिए पूछते रहते हो। लेकिन जब तुम खड़े हो गए तो मेरा मन कर गया, हाँ, अब तो इस आदमी को जाना है, पक्का लगता है। तब जाकर के मुझे लगा कि मुझे आपको रास्ता दिखाना चाहिए। मेरे देशवासियों, जब तक हम चलने का संकल्प नहीं करते, हम खुद खड़े नहीं होते, तब रास्ते दिखाने वाले भी नहीं मिलेंगे, हमें उंगली पकड़ कर चलाने वाले नहीं मिलेंगे। चलने की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी और मुझे विश्वास है कि 125 करोड़ देशवासी जरूर चलने के लिए सामर्थ्यवान है, चलते रहेंगे।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है, वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

आकाशवाणी रांची से प्रसारित प्रादेशिक समाचार अभी आपने सुनी। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के ठीक 8:45 हुए हैं और आप इस समय हैं हमारी प्रातःकालीन सभा।

के कार्यक्रमों के साथ। कार्यक्रम फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे बस थोड़ी ही देर में।

आकाशवाणी जमशेदपुर से अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोता, हमारा जीवन एक सड़क के मोड़ के समान है और एक ही मोड़ से अलग अलग तरह के रास्ते भी निकलते हैं, कुछ आहिस्ता चलने वाले तो कुछ तेज, और ये विविधता ही जीवन की सच्चाई को दर्शाती है। और सच तो है दोस्तों, जीवन में हर मोड़ पर फैसले करने पड़ते हैं। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं हमारे लिए, कुछ आरामदेह तो कुछ चुनौतीपूर्ण, कुछ हमें भव्यता की ओर ले चलते हैं तो कुछ साधारण खुशियों तक। लेकिन हमें मोड़ पर रुकना नहीं, बस आगे बढ़ते जाना है।

जी हाँ श्रोता, ये कौन सा मूड, ये कौन सा पल है, ये क्षण है जहाँ से हम गुजर कर आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन सच तो है कि हम जिस पल में जी रहे हैं उस पल का हमें भरपूर आनंद लेना चाहिए, ना कि बीते कल पर सोचना है और ना आने वाले कल की हमें चिंता करनी है। हम जो भी काम कर रहे हैं दोस्तों, वो बेहतर ही होगा, हमें ये सोचना ज़रूरी है। इसलिए तो कहा गया है कि हमें मिनटों की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि घंटे तो अपनी चिंता खुद ही कर लेंगे।

आज के कार्यक्रम फिल्म संगीत में बस इतना ही। आपको बता दें, जिन फिल्मों के गीतों को आपने सुना वे थे आंधी और कल हो ना हो। आवाजें थी लता मंगेशकर, किशोर कुमार और सोनू निगम की। गीत लिखा गुलजार और जावेद अख्तर ने और संगीत तैयार किया आर डी बर्मन और शंकर एहसान लॉय ने। और इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम बस यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के ठीक 9 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: प्राइस स्टेबल, इस भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की. सो दीज ऑल एफर्ट्स हैव बीन डन टू कीप द प्राइस स्टेबल. वी आर वर्किंग ऑन द स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स आल्सो. ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को वर्कआउट करने के लिए कहा है कि एलपीजी का जो रिजर्व है दैट शुड बी मिनिमम 30 डेज विद देम एंड दे आर वर्किंग ऑन इट. एंड सिमिलरली फॉर क्रूड आल्सो वी आर वर्किंग.
1: सुश्री सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है. उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है. विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं. पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है. इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है. इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा. आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है. कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज शाम कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है. इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा. राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है. उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का निर्देश दिया गया है. सभी 136 कांग्रेस विधायकों को बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है. कांग्रेस महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे. ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर शुरू हो रहा है. 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा. इसका उद्देश्य मतदाता सूची में नवीनतम परिवर्तन करना है और अपात्र नामों को हटाकर सभी पात्र मतदाताओं को शामिल करना है. केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कल आंध्र प्रदेश के वस्त्र, हथकरघा, हस्तशिल्प और रेशम उत्पादन क्षेत्रों की विभिन्न पहलों और विकास पहलुओं की समीक्षा बैठक की. बैठक में वस्त्र मंत्रालय, आंध्र प्रदेश सरकार, केंद्रीय रेशम बोर्ड और संबद्ध विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया. मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भी इस अवसर पर उपस्थित थे. बैठक के दौरान श्री सिंह ने वस्त्र और रेशम उत्पादन क्षेत्रों की अपार संभावनाओं पर प्रकाश डाला. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6 चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए. इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने तीव्र प्रगति की है. म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउंग लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज बिहार में गया पहुंचेंगे. उनके साथ कई उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा. म्यांमार के राष्ट्रपति गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे. इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे. उनका आज शाम विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं. श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गोवा संस्कृति और विरासत का भव्य संगम है जो दुनिया को भारतीय आतिथ्य सत्कार का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है. हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक 8 पदक जीत लिए हैं. इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं. गुजरात टाइटन्स आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.

आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार अभी आपने सुनी। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:05 हुए हैं। फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुरंजना हम आपको सुनवाएंगे बस थोड़ी ही देर में।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: हर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: नमस्कार जमशेदपुर, नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
2: ज्ञान विज्ञान
3: इतिहास के पन्नों से,
2: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
3: मौसम का मिजाज,
2: अपने शहर की खबरें,
3: बातों मुलाकातों के साथ सुरीला मनोरंजन
2: और भी बहुत कुछ।
1: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में
3: दिन के 11:05 से 12 बजे तक
2: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
1: नमस्कार जमशेदपुर।

आकाशवाणी जमशेदपुर से अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुरंजना। कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत, स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, संगीत की दुनिया में कुछ जोड़ियां ऐसी होती हैं जो समय की सीमाओं को पार कर जाती हैं। ऐसी ही एक अमर जोड़ी किशोर कुमार और लता मंगेशकर के बात आज कार्यक्रम में हम कर रहे हैं। जी हाँ, उनकी जादुई आवाजें जब एक साथ गूंजती हैं तो दिल की धड़कनें थम सी जाती हैं। आज कार्यक्रम में युगल गीत उन्हीं की आवाज़ों में।

श्रोताओ, जब किशोर कुमार की चंचल मस्ती भरी और जीवंत आवाज, लता मंगेशकर की मधुर भावपूर्ण और नजाकत भरे आवाज के साथ मिलती है तो मानो संगीत का जादू रच जाता है। उनके युगल गीत सिर्फ गाने नहीं बल्कि दिलों की धड़कनों को छूने वाली अनुभूतियां हैं।

आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सरंजना, और आज कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं युगल गीत। छोटा सा अंतराल इस कार्यक्रम के लिए अब हम ले रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं।

0: डॉक्टर,
1: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
0: हेलो डॉक्टर।
1: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
0: हेलो डॉक्टर,
2: कार्यक्रम सुरंजना में एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। श्रोता, पार्श्व गायक किशोर कुमार की आवाज में एक अनोखी मस्ती, बेफिक्री और भावुकता का मेल था और वहीं पार्श्व गायिका लता मंगेशकर की आवाज में कोमलता, गहराई और भावों की समृद्धि को हम पाते हैं। इन दोनों की जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को कई यादगार युगल गाने दिए जो आज भी उतने ही ताज़ा और प्रासंगिक हैं।

श्रद्धा किशोर कुमार और लता मंगेशकर की युगल जोड़ी ने फिल्म संगीत को एक नई पहचान दी। उनके गीत केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम भी बने। आज भी जब हम इन गानों को सुनते हैं तो दिल में एक अनोखी मिठास भर जाती है।

आज कार्यक्रम सुरंजना में बस इतना ही। आपको बता दें, जिन फिल्मों के गीतों को आज के कार्यक्रम में हमने शामिल किया वे थे शक्ति, डॉन, हीरा पन्ना और बरसात की एक रात। आवाज़ें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। गीत लिखा आनंद बख्शी अनजान ने और संगीत तैयार किया आर डी बर्मन और कल्याण जी आनंद जी ने। और इसी के साथ आज की संरचना अब यहीं संपन्न हुई।

सरंजना कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का यह जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: कहानी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जलवायु उपशमन और अनुकूलन, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। हम स्वच्छ ऊर्जा अपनाकर पेड़ों की कटाई रोककर और जंगल और मैंग्रोव जैसे प्राकृतिक इलाकों को सुधार कर जलवायु परिवर्तन का सामना कर सकते हैं। उपशमन का अर्थ है जलवायु परिवर्तन के कारणों को कम करना। अनुकूलन का मतलब है इसके प्रभाव से बचने की तैयारी करना, जैसे कि भोजन, पानी और आपदा प्रबंधन को बेहतर करना, खासकर उन समुदायों के लिए जो इसके जोखिमों से ज्यादा प्रभावित होते हैं। लेकिन इन सभी कोशिशों के बावजूद भी कुछ नुकसान होना निश्चित है। यह एक डरावनी स्थिति है। अगर वर्तमान गतिविधि जारी रही तो इस सदी में वैश्विक तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ सकती है।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
4: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों को अभी आप सुन रहे हैं और अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खान का शहनाई वादन, राग है अलहया बिलावल।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद बिस्मिल्ला खान का शहनाई वादन राग था अलहिया बिलावल। और इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार और ठीक 10:10 पर सुनिएगा विश्व दर्पण समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिन आउन लायान 5 दिन की भारत यात्रा पर आज बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी शामिल होगा। राष्ट्रपति के रूप में ओमिन आउन लायान की यह पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सरकार ने

0: the government to keep the price stable, Bharat Sarkar ne excise duty kam ki. So these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies ko work out karne ke liye kaha hai ki LPG ka jo reserve hai, that should be minimum 30 days with them, and they are working on it. And similarly for crude also we are working.
1: सुश्री सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरक केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव वसीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। पोत पत्तन परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोस कोरोस हुरमुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि गोवा न केवल अपने समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार अतिथि सत्कार के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि शिक्षा, प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप और सतत विकास में उल्लेखनीय प्रगति के लिए भी जाना जाता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह अवसर उन सभी को याद करने का है जिन्होंने राज्य की प्रगति और पहचान के लिए अथक परिश्रम किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पत्रकारों, लेखकों और हिंदी भाषा के लिए समर्पित प्रबुद्ध व्यक्तियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता ने सामाजिक चेतना जगाने, लोकतंत्र को सुदृढ़ करने और लोगों की भावनाओं को अभिव्यक्त करने के सशक्त माध्यम के रूप में कार्य किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी पत्रकारिता ने जन जागरूकता को बढ़ावा देने, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रीय एकता मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम विधायक दल की बैठक बुलाई है। उसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। नए नेता के चुने जाने तक उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का निर्देश दिया गया है। सभी 136 कांग्रेस विधायकों को बैठक में उपस्थित रहने को कहा गया है। ओडिशा में आज मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। एक महीने तक चलने वाले निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी। और खेलों में हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक 8 पदक जीत लिए हैं। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल है। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। वहीं IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस फाइनल में पहुंच गया है। न्यू चंडीगढ़ में कल उसने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, began his 5-day visit to India today. He is accompanied by a high-level delegation comprising several cabinet ministers, senior officials and business leaders. This is the first visit of President U Min Aung Hlaing to India in his current capacity. He arrived at Bodh Gaya in Bihar this morning, where he will offer prayers at the Mahabodhi Temple and also at Sujata Temple. President U Min Aung Hlaing will arrive in New Delhi later in the day. He will meet External Affairs Minister Dr. S. J. Shankar this evening. On Monday, President U Min Aung Hlaing will hold discussions with Prime Minister Narendra Modi on further strengthening the historical and civilizational ties between the two countries. The government has asked public sector oil marketing companies to set up liquefied petroleum gas LPG reserves for at least 30 days as West Asia conflict persists, disrupting global

म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउंग लाइन 5 दिन की यात्रा पर आज भारत पहुंचे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन में युद्ध समाप्ति के करीब। अमेरिका में चल रही वार्ता के बीच इसराइल लेबनान संघर्ष और तेज। संयुक्त राष्ट्र ने देशों और टेक कंपनियों से बच्चों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सुरक्षित बनाने हेतु अधिक ठोस उपाय करने को कहा। और हांगकांग में आयोजित एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउंग लाइन 5 दिन की भारत यात्रा के पहले चरण में आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। राष्ट्रपति के रूप में ओ मिन आउंग लाइन की पहली भारत यात्रा है। गया में म्यांमार के राष्ट्रपति महाबोधि

0: गांधी और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान म्यांमा और भारत के बीच आपसी संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
1: म्यांमा के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
2: दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार।
0: इस यात्रा के अंतर्गत म्यांमा के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं और शहर के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन से चल रहा संघर्ष अब खत्म होने के करीब है। रूस की समाचार एजेंसी के अनुसार राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि किसी निश्चित समय सीमा का उल्लेख करना लापरवाही होगी, क्योंकि युद्ध के दौरान समय सीमा तय करना संभव नहीं होता। श्री पुतिन ने कहा कि रूस यूक्रेन मुद्दे पर वार्ता जारी रखने के लिए तैयार है, लेकिन औपचारिक बातचीत जैसी स्थिति नहीं है। श्री पुतिन ने कहा कि रूस के लिए सीधे सैन्य खतरा पैदा करने वाले सभी स्थान वैध सैन्य लक्ष्य हैं। रूस के राष्ट्रपति ने आरोप लगाया कि नेटो ने रूस को ये कहकर धोखा दिया कि वो पूर्व की ओर एक भी कदम नहीं बढ़ाएगा। इस बीच रूस की आधिकारिक मीडिया ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि लंदन में यूरोपीय देशों के प्रतिनिधि यूक्रेन संघर्ष के समाधान को लेकर अनौपचारिक परामर्श कर रहे हैं। इजरायल की सेना दक्षिणी लेबनान के मरजयून इलाके में मौजूद दिब्बिन गांव में दाखिल हो गई। ये कदम इजरायल के ताजा हवाई हमलों के बीच उठाया गया, जिसमें 6 लोग मारे गए। एक रिपोर्ट।
3: लेबनान की सरकारी मीडिया ने बताया कि दीर कानून अल नहर और एबा सिही पर हुए हमले में 5 लोग मारे गए। एबा गांव पर हुए हमले में नगर पुलिसकर्मी की मौत हो गई। वहीं लेबनान के 6 सदस्यों के सैन्य प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका के पेंटागन में इजराइल के सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की। दशकों में दोनों देशों के बीच ये पहली प्रत्यक्ष वार्ता थी। पेंटागन ने चर्चाओं को सार्थक बताया और कहा कि इनका ध्यान क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए व्यवहारिक रूपरेखा तैयार करने पर केंद्रित था। उसने ये भी कहा कि वार्ताओं के परिणाम अगले सप्ताह होने वाली राजनीतिक नेताओं के बीच आगे की बातचीत को दिशा देने में सहायक होंगे। इसराइल और लेबनान के अधिकारियों के बीच पिछले महीने से वार्ता जारी है, लेकिन व्यापक सहमति तक पहुंचने के प्रयास जटिल बने हुए हैं। इस वार्ता में हिजबुल्ला भाग नहीं ले रहा है और उसने वार्ता के निष्कर्षों को अस्वीकार कर दिया है। पक्षों के बीच 17 अप्रैल से युद्ध विराम लागू है, लेकिन सीमा पर तनाव जारी है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
0: ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में रह रहे लगभग लेबनान के 11,000 नागरिकों के लिए निर्वासन से सुरक्षा की अवधि बढ़ा दी है। इससे उन्हें अगले 6 महीनों तक देश में रहने और काम करने की अनुमति मिल गई है। इस निर्णय की घोषणा गृह सुरक्षा विभाग ने की। ये विस्तार दक्षिणी लेबनान में इसराइल की सेना और ईरान समर्थित लेबनान स्थित सशस्त्र समूह हिजबुल्ला के बीच जारी संघर्षों के बीच हुआ है। ये विस्तार संघर्ष या असाधारण परिस्थितियों का सामना कर रहे देशों के लोगों को अमेरिका में अस्थायी रूप से रहने की अनुमति देता है। ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला, हैती, निकारागुआ और सीरिया सहित कई देशों के लोगों के लिए इसी तरह की सुरक्षा को समाप्त करने की दिशा में बड़े पैमाने पर कदम उठाए हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने बच्चों के लिए ऑनलाइन मंचों को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से देशों और टेक कंपनियों से अधिक सख्त कदम उठाने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रभावी नियमन, निगरानी और जवाबदेही पर बल दिया। श्री तुर्क ने कहा कि डिजिटल दुनिया बच्चों को शिक्षा, समुदाय और रचनात्मकता से जोड़ती है, लेकिन साथ ही उनकी सुरक्षा, निजता और मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरे भी पैदा करती है। श्री तुर्क ने कहा कि सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध इस समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने

0: कि सरकारों और कंपनियों को मिलकर प्लेटफॉर्म को डिजाइन के स्तर पर ही सुरक्षित बनाना होगा, डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी और नुकसान पहुंचाने वालों की जवाबदेही तय करनी होगी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय के दिशा निर्देशों में आयु सत्यापन प्रक्रिया के लिए सुरक्षा उपाय, बाल अधिकार प्रभाव आकलन और नियामक नीतियों के निर्माण में बच्चों की भागीदारी जैसे सुझाव दिए गए हैं। साथ ही कंपनियों के लिए पारदर्शिता, कड़ी निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से लवलीन निगम।
1: दक्षिणी कैलिफोर्निया की पूर्व मेयर ने चीन के एक अवैध एजेंट के रूप में काम करने का अपराध स्वीकार कर लिया है। एलिन वांग ने इस महीने की शुरुआत में मेयर पद से इस्तीफा दिया था। उन्होंने चीनी अधिकारियों की तरफ से चीन के पक्ष में लेख लिखे थे और ऐसा करते समय उन्होंने अमरीकी सरकार को कानून के अनुसार आवश्यक जानकारी नहीं दी थी। उन्होंने लॉस एंजलिस की एक संघीय अदालत में अपना अपराध स्वीकार किया। वांग को 10 साल की कैद और 3 साल तक निगरानी में रहने की सजा हो सकती है। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
2: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, is Bharat Sarkar ne excise duty kam ki. So these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies ko work out karne ke liye kaha hai ki LPG ka jo reserve hai, that should be minimum 30 days with them. And they are working on it. And similarly for crude also we are working.
1: हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक 8 पदक जीत लिए हैं। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन कल भारतीय खिलाड़ियों ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। पूजा सिंह ने महिलाओं की ऊंची कूद में 1.93 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता। भारत के नितिन गुप्ता ने पुरुषों की 5000 मीटर रेस वॉक का स्वर्ण पदक जीता। अमानत कंबोज ने महिलाओं की डिस्कस थ्रो में शीर्ष स्थान हासिल किया। राहुल जाखड़ ने पुरुषों की डेकाथलॉन में स्वर्ण पदक जीता। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। बृहस्पतिवार को चेम्सफोर्ड में पहले मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 38 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से बढ़त बना ली थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउन लाइन 5 दिन की यात्रा पर आज भारत पहुंचे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन में युद्ध समाप्ति के करीब। अमेरिका में चल रही वार्ता के बीच इजराइल लेबनान संघर्ष और तेज। संयुक्त राष्ट्र ने देशों और टेक कंपनियों से बच्चों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सुरक्षित बनाने हेतु अधिक ठोस उपाय करने का आह्वान किया। और हांगकांग में आयोजित एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:20 हुए हैं और आप इस समय हैं हमारी पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ। अगला कार्यक्रम फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे बस थोड़ी ही देर में।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है बॉस। रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों

0: नॉनस्टॉप ट्रेंडिंग ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज फिल्म संगीत कार्यक्रम में ऐसे चुनिंदा गीत जो न सिर्फ हमें सुकून देते हैं बल्कि दिलों में एक नई ऊर्जा भी भर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज कार्यक्रम में दिल की धड़कनों को छूने वाले कुछ ऐसे गीत जो प्यार के हर फीलिंग को बयां करते हैं।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

ये था कार्यक्रम का पहला गाना जिसे हमने लिया था कयामत से कयामत तक फिल्म का। उदित नारायण और साथियों की आवाज़ें थी, समीर ने गीत लिखा और धुन बनाई आनंद मिलन ने। और अब अगला गाना उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में हम आपको सुनवा रहे हैं। मन फिल्म का ये गाना है, समीर है गीतकार, संगीतकार है संजीव दर्शन।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: मिस सीमा
2: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 बन जाओगे।
2: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड

0: हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
1: हेलो मम्मा,
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हेलो डॉक्टर,
5: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
4: हेलो डॉक्टर।
5: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
4: हेलो डॉक्टर।

सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।

अंतराल हुआ पूरा और अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम फिल्म संगीत में। जीत फिल्म का ये गाना है अलका याग्निक और विनोद राठौर की आवाजों में। समीर है गीतकार, संगीतकार है नदीम।

परदेस फिल्म का ये गाना था कुमार सानू और आदित्य नारायण की आवाज़ों में। आनंद बख्शी ने गीत लिखा और धुन बनाई नदीम श्रवण ने।

0: सचिन ये क्या कर रहा है तू?
1: क्या हो रहा है भाई?
2: पापा रोमांटिक सीन लिख रहा हूँ।
1: यहाँ इस तरह बीच सड़क पर नाच कर
2: फील कर रहा हूँ।
1: अरे फील क्या?

एक दीवाना था इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, लियोन डिसूजा और सुजैन डिमेलो की आवाज़ में जावेद अख्तर ने गीत लिखा और धुन बनाई A.R. रहमान ने। और अब कार्यक्रम का अगला गाना अरिजीत सिंह की आवाज़ में हम आपको सुनवा रहे हैं। संदीप नाथ ने गीत लिखा है और धुन बनाई है शिवम पाठक ने, और फिल्म का नाम मैरी कॉम।

0: और श्रोता अरिजीत सिंह के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ।
1: हमारा अगला कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर आप सुनेंगे इसी चैनल पर।
0: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय दिन के ठीक 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउं लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
1: He'll be meeting our Prime Minister and where both leaders.
2: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारी

0: So these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies ko workout karne ke liye kaha hai ki LPG ka jo reserve hai, that should be minimum 30 days with them, and they are working on it. And similarly for crude also we are working.
1: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा है कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोम कैरोस हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है। फैसले में कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम विधायक दल की बैठक बुलाई है, उसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का निर्देश दिया है। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो रहा है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि उनके लिए ये अत्यंत सम्मान की बात है। हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक 8 पदक जीत लिए हैं। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। गुजरात टाइटंस IPL क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, तेलंगाना में लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर। 11:05 हुए हैं श्रोताओं, समय है कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर का।

0: नमस्कार जमशेदपुर।
1: नमस्कार जमशेदपुर के आज के इस अंक में आप सभी श्रोताओं का बेहद स्वागत, और आज आपका साथ है आपकी रेडियो दोस्त रिंकी का। नमस्कार श्रोताओं,

चिलचिलाती धूप और जलती हुई गर्मी के बाद सबको इंतज़ार रहता है दोस्तों बारिश की उन फुहारों का जो हमें सुकून दे जाए। और आज की होने वाली ये बारिश वही सुकून का एहसास करा रही है। कहीं बारिश खत्म होने को है और कहीं अभी भी बूंदाबांदी हो रही है। कहीं ना कहीं ये

जो बारिश है वो दिल के हर तार को छेड़ रही है। ये बारिश हर जीव को सुकून दे रही है। ये धरती इन फुहारों को ऐसे समेट रही है मानो ये कब से प्यासी हो।

ऐसी मीठी कछु नहीं जैसी मीठी चुप। दोस्तों, कबीर के इस दोहे में मौन की मधुरता और शक्ति का अद्भुत ही वर्णन है। बालू की तरह कठोर और चुभने वाला बनने के बजाय धूप की तरह उज्जवल और संतुलित होना ही सच्चा जीवन कौशल है, और यह संतुलन अक्सर मौन से ही जन्म लेता है। कई बार हम चुप्पी को कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन ये एक सार्थक मौन कई बार सैकड़ों शब्दों से अधिक प्रभावी होता है। दोस्तों, जीवन के आपाधापी में मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, ये आत्मा से जुड़ने का गहन अवस्था भी है। यह व्यक्ति को अपने भीतर झांकने, विचारों को स्पष्ट करने में भावनात्मक संतुलन स्थापित करने का अच्छा अवसर देता है। किसी भी तनावपूर्ण या विवादपूर्ण स्थिति में एक मिनट का सचेत मौन कई टकरावों और दुर्घटनाओं को टाल सकता है। वो कहते हैं ना, गुस्से में कई बार कुछ देर चुप रहना ज्यादा अच्छा है कटु शब्द बोलने से। शोध भी ये बताते हैं कि कुछ समय का सचेत मौन तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करता है, जिससे व्यक्ति अधिक शांत, केंद्रित और स्थिर महसूस करता है। 2 मिनट का मौन भी मस्तिष्क को उतनी राहत दे सकता है जितना कोई एक मधुर गीत। मौन केवल विश्राम नहीं है दोस्तों, ये मस्तिष्क का पुनर्संरचना की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है। जब व्यक्ति शोर से दूर अपने विचारों, भावनाओं और आंतरिक द्वंद्वों को साक्षी भाव से समझ पाता है, तो वो कई बार अपनी मुश्किलों को खुद ही पार कर पाता है।

सोनू निगम, श्रेया घोषाल की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म आजा नच ले का ये गीत। श्रोताओं, अब बात हिंदी पत्रकारिता दिवस की। जी हाँ, हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। इसी ऐतिहासिक दिन 30 मई 1826 को पंडित जुगल किशोर शुक्ला ने कोलकाता में भारत का पहला हिंदी साप्ताहिक पत्र उद्दंड मार्तंड प्रकाशित किया था। आज भारतीय मीडिया उद्योग दुनिया में सबसे बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है। एक प्रमाणिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल पंजीकृत समाचार पत्रों में हिंदी भाषा का हिस्सा अधिक है। डिजिटलीकरण के इस दौर में भी हिंदी प्रिंट और डिजिटल मीडिया के पाठकों की संख्या करोड़ों में है, जो कि इसकी अटूट विश्वसनीयता को दर्शाती है। यह दिवस केवल एक शुरुआत का उत्सव नहीं, बल्कि निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने का भी दिन है। भारत में हिंदी सबसे ज्यादा बोली समझी जाने वाली भाषा है। हिंदी पत्रकारिता दिवस की एक बड़ी आबादी, विशेषकर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों को देश दुनिया की खबरों से जोड़ती है। साथ ही साथ ये जागरूकता और शिक्षा में भी हाथ बटाती है। यह समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं, अधिकारों और सामाजिक मुद्दों की जानकारी सरल भाषा में पहुंचाकर उन्हें जागरूक बनाती है। हिंदी पत्रकारिता भारतीय संस्कृति, लोक कलाओं, परंपराओं और भाषा के गौरव को जीवित रखने और उसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता से उठाकर यह प्रशासन और जनता के बीच एक पुल का भी काम करती है, जिससे शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही तय होती है। साथ ही साथ प्रिंट, टीवी और तेजी से बढ़ते डिजिटल मीडिया के कारण आज हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में युवाओं के लिए करियर और रोजगार के लाखों नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं।

लकी अली की आवाज में अभी आप सुना अनजाना अनजानी फिल्म का ये गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम में गीतों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, बस इस छोटे से अंतराल के बाद।

आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

श्रोताओं, एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में। आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM के 102.4 MHz पर अपनी रेडियो दोस्त लिंगी के साथ।

दोस्तों, मोबाइल की दुनिया में हमें तत्कालिक सुविधाएं तो बहुत दी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बदले में ये हमारे ध्यान, धैर्य और मानसिक स्थिरता और योग्यता की गहराई को भी प्रभावित करने लग गया है। आज हम कहीं भी नज़र घुमा के देख लें, हर दूसरा व्यक्ति मोबाइल में व्यस्त नज़र आता है। बस के सफ़र में, खाली वक्त में, टीवी देखते हुए बस उंगलियां लगातार सोशल मीडिया स्क्रॉल करती रहती हैं। आज के इस डिजिटल युग में मोबाइल हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है, जो कि हमें दुनिया में से जोड़े रखता है और दूसरी ओर हमारे ध्यान, धैर्य और मन की स्थिरता को धीरे धीरे क्षीण कर रहा है। सोशल मीडिया पर हर पल कुछ नया कंटेंट आता रहता है। इस लगातार होती सूचना की बौछार से हमारा दिमाग सतही जानकारी पर ही रुक जाता है और इससे गहरी सोच या एक जगह ध्यान केंद्रित करना बहुत ही कठिन हो जाता है। सोशल मीडिया पे हम कुछ सेकंड के ही पोस्ट से दूसरे पोस्ट पर चले जाते हैं। ये आदत धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क को लंबे समय तक किसी भी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने से रोकती है और इसका नतीजा ये होता है कि हमारे अंदर धैर्य की कमी आने लगती है। इसके चलते लंबे समय तक किसी पर भी ध्यान केंद्रित कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, ये कहीं ना कहीं हमारे निर्णय लेने की क्षमता पर भी प्रभावित करता है। सोशल मीडिया पर इतने सारे विकल्पों के बीच दिमाग उलझ जाता है कि थकावट महसूस करने लगता है। इसके कारण निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है जब जीवन में कोई अहम फैसला लेना होता है, जो कि आज के समय में हम अपने युवाओं में ये चीज़ कहीं ना कहीं देख सकते हैं। मोबाइल की दुनिया में उलझकर लोग धीरे धीरे अपनी रचनात्मक गतिविधियों जैसी चित्रकला, लेखन, संगीत आदि से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। पढ़ने की रुचि भी कम होने लगी है। जब सामने एक और किताब रखी हो और दूसरी ओर मोबाइल, तो ज़्यादातर लोग मोबाइल ही उठाना पसंद करते हैं। मल्टीटास्किंग की जो आदत लोग समझते हैं कि वो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कई बार कई ऐप्स पर यूं ही भटकते हुए लोग इस खुशफहमी में रह जाते हैं कि वो एक साथ कई काम कर रहे हैं, जबकि वास्तव में वे इस चक्कर में कोई भी काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं।

शान और श्रेया घोषाल की आवाज में दोस्तों अभी आप सुन रहे थे धूम फिल्म का ये गीत। श्रोताओं, गाने से पहले हम बात कर रहे थे सोशल मीडिया और उससे जुड़े प्रभावों के बारे में, जो कि इंसानी मस्तिष्क पर धीरे धीरे दिखाई दे रहा है। अब उलझन तो बहुत सारी हो गई, अब बात उसे सुलझाने की। जी हाँ, जब हम कुछ देर के लिए अपने मोबाइल

या सोशल मीडिया से दूरी बनाते हैं तो हमारे मन कई बार कोई रचनात्मक कार्य की ओर ज़रूर जाता है। ऐसे में ये बात ध्यान रखें कि ये रचनात्मकता ही आपको सोशल मीडिया के आदत से दूर करने में मदद कर सकती है। इस दिशा में कला एक प्रभावशाली माध्यम बन सकती है। चित्रकला, नृत्य, लेखन जैसे कला के विभिन्न रूप न सिर्फ एकाग्रता बढ़ाने में बल्कि मन को भी शांति और आनंद प्रदान करने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा अपनी हॉबीज़ को वापस से अपनी ज़िंदगी में एक जगह देने का असली समय शायद अभी ही है। रंगों से खेलने से मन स्थिर होता है, ध्यान केंद्रित होता है। शास्त्रीय या संगीत अनुशासन और गहन ध्यान की आदत भी लगाता है। क्राफ्ट वर्क या कढ़ाई या बुनाई हाथों के काम करने से दिमाग के विभिन्न हिस्से जागृत होते हैं और मोबाइल की ज़रूरत की महसूस को कम करते हैं। इसके अलावे रोज़ 10 मिनट निकालें जर्नलिंग के लिए। ऐसे में 10 मिनट का समय निकाल कागज़ कलम से लिखना शुरू करें। जो भी आपके साथ अच्छा बुरा हुआ उसे लिखें। अपने आप को इस सोच की गहराई में डालें। शायद यहीं से आपको इस डिजिटल दुनिया के भंवर से छुटकारा मिल जाए। किसी विशेष कार्यों में सचेत होना, भोजन करने पर पूरा ध्यान देना या ध्यान से चलना, ये सभी माइंडफुलनेस के आसान तरीके होते हैं दोस्तों। ये मानसिक दृढ़ता और वर्तमान में जीने की क्षमता को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा शतरंज, लूडो जैसे बोर्ड गेम्स, पहेलियाँ, क्रॉसवर्ड आदि मनोरंजन करने के साथ साथ दिमाग की गति और एकाग्रता को बढ़ाने में मदद करती है। आज भले ही मैदान में खेले जाने वाले खेलों को हम भूल से गए हैं, लेकिन ये मैदानी खेल ही थे जो हमें शारीरिक और मानसिक तौर पर सुदृढ़ करने का काम करते थे। तो हो सके उन लम्हों को वापस से अपनी ज़िंदगी में एक छोटी सी जगह दीजिए, क्योंकि कई बार गुजरे हुए वो लम्हे ही होते हैं जो आपको नई राह की ओर आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, किसी आदत को छोड़ नई आदत को अपनाने में मदद कर सकते हैं।

आतिफ असलम की आवाज में दोस्तों अभी आपने सुना जहर फिल्म का ये गीत। श्रोताओं कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा बस इस छोटे से अंतराल के बाद।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

दोस्तों अब बात बच्चों की गर्मी की छुट्टियों की। जी हाँ, गर्मी की छुट्टियाँ बच्चों के लिए सिर्फ समय नहीं एहसास होना चाहिए, जहाँ भाग दौड़ नहीं सुकून हो, स्क्रीन नहीं खेल हो और हर दिन में बचपन के रंग घुलते हो। अभी भी गर्मी की छुट्टियाँ चल रही हैं, कई बच्चे अपने हॉलीडे होमवर्क्स में लगे हुए होंगे, कुछ के पूरे हो चुके होंगे, कुछ के बाकी होंगे और कुछ ने सोचा होगा कि कहीं घूम के आने के बाद उसे पूरा करेंगे। छुट्टियां होती ही कुछ ऐसी हैं। जब पहले गर्मी की छुट्टियां होती थी तो ये सोचकर ही खुशी चेहरे पर आ जाती थी कि अब छुट्टियां हैं, पढ़ना नहीं पड़ेगा। अपनी धुन और मौज मस्ती में पढ़ना लिखना छुपन छुपाई जैसे कंचे न जाने कितने ही ऐसे खेल हुआ करते थे जो हम बच्चे अपने समय में खेला करते थे। लेकिन आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में बच्चों की छुट्टियां भी कहीं खो सी गई हैं। आजकल छुट्टियों को बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलम के बोझ तले दबा दिया जाता है। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि अभिभावक आज के छुट्टियों को भी अपने समय की छुट्टियों जैसे ही बच्चों को खेलने दें। वे समझें कि ये छुट्टियां बच्चों के लिए कुछ खुशनुमा सुकून भरे पल हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि उन्हें बिल्कुल ही छोड़ दिया जाए या गेम्स में उलझने दिया जाए। सही समय है टाइम टेबल बनाने का। स्कूल से मिलने वाले होमवर्क को ज़रूरी है कि बच्चों के साथ बैठकर उनके साथ बातचीत और तालमेल के साथ बनाया जाए। साथ ही साथ कौशल को क्लास ना बनाकर उन्हें उनमें एक इंटरेस्ट जगाया जाए। चाहे बच्चे स्विमिंग करें, कराटे जैसे क्लासेस में बांधने के बजाय उन्हें कौशल सीखने के लिए भेजें। ये ना कहें कि तुम्हें ये सीखना ही पड़ेगा, कहें कि तुम कुछ नया सीखोगे तो ये तुम्हारी ज़िंदगी के लिए एक नया स्किल हो सकता है। पूरा टाइम टीवी मोबाइल बंद होने से कई बार बच्चे चिड़चिड़ा सकते हैं क्योंकि वे इन्हीं सब को देखते हुए बड़े हुए हैं, तो उन्हें उनसे पूरी तरीके से अलग कर पाना थोड़ा मुश्किल है। ज़रूरी है छोटे छोटे कदमों को बढ़ाना। साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि आप भी उनके साथ बैठ कर कुछ बातें करें, कुछ पलों को एंजॉय करें, उनके साथ उनके होमवर्क में या अपने कामों में उन्हें सम्मिलित करें। अगर कोई काम रचनात्मकता के साथ किया जाए तो वह कभी भी बोझ नहीं लगता। ऐसे में जरूरी है कि परफेक्ट बनाओ के बजाय बच्चों से कहें कि जैसे आता है वैसे बनाओ, ताकि वे उसमें परफेक्शन के दौड़ में ना भागें। वे उसे अपने दिल से अपनाने की कोशिश करें, क्योंकि जब बच्चे किसी इंसान को या किसी कला को अपने दिल से अपनाते हैं तो वे अपना 100% उसमें दे सकते हैं। कई बार लोग काम की तलाश में घर से बहुत दूर चले आते हैं। ऐसे में ये छुट्टियां एक मौका है उन्हें अपने परिवार वालों से मिलवाने का। तो हो सके तो इन छुट्टियों में ही थोड़ा समय बच्चों के लिए भी निकालें और उनके साथ अपने रिश्तेदारों या उनके दिल के मनपसंद जगह पर उन्हें ले जाएं। मनोरंजन के साधन भले ही सीमित हो सकते थे पहले, लेकिन आज मनोरंजन के साधनों की भरमार है। ऐसे में बच्चों के साथ उन मनोरंजन पलों को एक अभिभावक ही इस जिंदगी में वापस ला सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है।

सिद्धार्थ शंकर महादेवन दिव्या कुमार की आवाज में दोस्तों अभी आप सुन रहे थे सितारे जमी पर फिल्म का ये गीत। गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य, संगीत दिया था शंकर एहसान लॉय ने। श्रोताओं इसी गीत के साथ आज का हमारा नमस्कार जमशेदपुर का ये अंक यहीं संपन्न हुआ। दीजिए अपनी रेडियो दोस्त रिंकी को विदा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर। लिसनर्स, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही देर बाद 12:05 पर आप सुनेंगे भावगीत का कार्यक्रम। 12:30 का समय होगा महिलाओं के लिए कार्यक्रम अंगना का। 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 1:10 पर प्रादेशिक में समाचार का प्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 1:20 पर समय होगा कार्यक्रम फिल्म संगीत का। 3 बजे आप सुनेंगे न्यू इंडिया समाचार। 3:05 पर समय होगा सुगम संगीत का। 3:15 पर आप सुनेंगे झारखंड के लोकगीत का कार्यक्रम। 3:30 पर आप सुनेंगे उपशास्त्रीय संगीत। 3:45 पर समय होगा कार्यक्रम लोकगीत का। 4:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। 4:30 पर समय होगा कार्यक्रम फिल्म संगीत का। 5:02 पर आप सुनेंगे युवाओं के लिए कार्यक्रम युवाने। 5:30 पर आप सुनेंगे कल कारखाने का कार्यक्रम।

श्रोताओं 12 बजने को हैं, अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। बने रहिए हमारे साथ, समाचार प्रसारित किए जाएंगे बस कुछ ही देर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति ने गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
0: सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में कहा कि देश में एलपीजी की कमी की कोई सूचना नहीं है। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित

0: इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यभार मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने के निर्देश दिए हैं। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो रहा है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा यह सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
1: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल NS राजासुब्रमणी उनका स्थान लेंगे। गुजरात टाइटंस IPL क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि गोवा न केवल अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार आतिथ्य सत्कार के लिए प्रसिद्ध है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह अवसर उन सभी को याद करने का है जिन्होंने राज्य की प्रगति और पहचान के लिए अथक परिश्रम किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पत्रकारों, लेखकों और हिंदी भाषा के समर्पित प्रबुद्ध व्यक्तियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचे और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 MHz पर। 12:05 हुए हैं श्रोताओं, समय है कार्यक्रम भावगीत का। लेकर हाजिर होंगे हम बस कुछ ही देर में।

भावगीत के आज के इस सफर में आप सभी श्रोताओं का बेहद स्वागत और आपकी रेडियो दोस्त रिंकी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जिंदगी में जब दिल से दिल का रिश्ता जुड़ता है तो एक अलग ही एहसास होता है। यह एहसास अपने अंदर कई राज समेटे हुए खुशी से बस यूं ही मचलता है। दिल की बात दिल तक पहुंचाने में भले ही थोड़ा समय लग जाए, लेकिन ये पहुंचता जरूर है। हमारा और आपका रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है, जो कि हर दिन थोड़ा और गहरा होता है।

दोस्तों, ज़िंदगी में जब प्यार की दस्तक होती है तो नज़रों से नज़रें मिली और इकरार हो गया। धीरे धीरे उनसे प्यार का इजहार हो गया। पता ही नहीं चला कब वो हमारी धड़कन बन गए, जब उनके साथ जीने का ख्वाब साकार सा हो गया। मुलाकातों का सिलसिला यूं ही परवान चढ़ता है, धीरे धीरे ही सही, मगर प्यार गहरा बढ़ता है। एक दूजे को समझने का मजा ही कुछ और है। जैसे जैसे वक्त बीतता है, दिल और भी मचल उठता है।

अजीब सी दिल में हुई हलचल जब जिक्र हुआ तेरे आने का, ना कर पाए बयां हम ये एहसास। सोचूं कि कैसे कहूं तुझसे कि हो गया है प्यार, डर ही है कि न हो न जाए तू खफा कहीं हमसे ये जानने के बाद।

प्यार का पता नहीं जिंदगी हो तुम, जान का पता नहीं दिल की धड़कन हो तुम। जिंदगी की हर शाम हसीन हो जाए अगर मेरी मोहब्बत मेरी नसीब हो जाए।

सनम तेरी कसम अब यही अरमान है, तू ही मेरी जिंदगी तू ही मेरी जान है। धड़कनों में बस जाने का वादा किया था तुमने, हर सांस में बस अब तेरा ही नाम है। कुछ इस तरह है मेरी जिंदगी को तूने सवार दिया, ना चाहते हुए भी खुद से ज्यादा तुझे प्यार दिया।

श्रोताओं, आज भावगीत के इस सफर में हमने जिन फिल्मों को शामिल किया उनके नाम है पद्मावत, देवारा, गुजारिश, बर्फी और सनम तेरी कसम। इनमें आवाजें थी शिवम पाठक, शिल्पा राव, शैल हाडा, राकेश पंडित, पापोन, सुनिधि चौहान, अंकित तिवारी और पलक मुच्छल की। श्रोताओं, इसी गीत के साथ दीजिए अपनी रेडियो दोस्त रिंकी को इजाजत। लिसनर्स, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12:30 हुए हैं श्रोताओं, अब आप सुनेंगे महिलाओं के लिए कार्यक्रम अंगना।

नमस्कार जोहार। इस साल भी हमने रिकॉर्ड तोड़ भीषण गर्मी का ताप सहा है। ऐसा महसूस किया है मानो आसमान से बरस रही हो आग, और 45 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक के बीच झुलसते हुए पारे में फंसा हुआ सा लग रहा था हम सबों का जीवन। जलवायु का ये जो क्रूर चेहरा है, यह हमें संदेश भी देता है बहनों, और साथ में चेतावनी भी कि अब तो हमें जगना होगा और जलवायु अनुकूलन की राह में चलना होगा। हर हाल में हमें अपने जीवन में प्रकृति को भी प्राथमिकता देनी ही होगी। हालांकि थोड़ी बहुत बूंदाबांदी और कभी कभार की तेज बरसात के साथ मानसून का आवागमन हो चुका है और मिल चुकी है हम सभी को गर्मी से राहत। मुरझाए पत्ते फिर से हरे हो रहे हैं, फूलों का मुस्कुराना, खिलना और खिलखिलाना दिख रहा है। बहनों, कार्यक्रम अंगना में आप सबों का स्वागत है। नमस्कार। आप भी जीवन में खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आप सबों का अपना कार्यक्रम अंगना। बहनों, हम महिलाओं के जीवन में सबसे जरूरी यह है कि हम मुस्कुराते रहें और साथ में संबल और सामर्थ्य भी हमारा बना रहे। ये दोनों ही ऐसी चीजें हैं जो महिला सशक्तिकरण की राह दिखलाते हैं। बहनों, महिलाओं के जीवन में

संबल और सामर्थ्य बना रहे तो महिला सशक्तिकरण की राह भी मजबूत हो जाती है। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मिशन शक्ति योजना चलाई जा रही है। जीवन चक्र के हर सोपान पर महिलाओं को जो भी परेशानियां आती हैं और जो भी बाधाएं आती हैं उसको दूर करना मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य है। यूं तो भारत का संविधान स्वतंत्रता और अवसरों के मामले में महिलाओं और पुरुषों को एक समान अधिकार देता है, पर कई बार सामाजिक ताने बाने में उलझी हुई महिलाओं की जिंदगी अपने अधिकारों और गरिमा की रक्षा नहीं कर पाती है। महिला कल्याण और लैंगिक समानता के दृष्टिकोण को एक मजबूत रूप देने के लिए और अब तक जो भी गति हमें प्राप्त हुई है उसको आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की एक व्यापक नीति की आवश्यकता थी। यह मिशन शक्ति योजना महिलाओं की देखभाल, उसकी सुरक्षा, उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं उन सबों की दिशा में कार्य करेगी और इसमें दिव्यांग, सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर रहने वाली और कमजोर समूह की महिलाएं भी शामिल हैं। इतना ही नहीं बल्कि हिंसा से प्रभावित महिलाओं और संकटग्रस्त महिलाओं को तत्काल और व्यापक स्तर पर निरंतर देखभाल, सहायता और समर्थन प्रदान करना भी इसका कार्य होगा। और यह जरूरत मंद महिलाओं और अपराध एवं हिंसा की शिकार महिलाओं का भी बचाव करने के लिए गुणवत्तापूर्ण तंत्र स्थापित करेगा। विभिन्न स्तरों पर महिलाओं के लिए जो भी उपलब्ध हो सकती हैं सरकारी सेवाएं वो उन तक पहुंचेंगी ताकि महिलाएं सशक्त बने और अपनी सहायता करने के लिए भी अपने भीतर आत्मविश्वास जागृत करें। कठिन परिस्थितियों में फंसी हुई महिलाओं के लिए पहले भी कई सारी योजनाएं बनाई गई हैं, पर मिशन शक्ति के अंतर्गत यह संकट ग्रस्त महिलाओं जिनमें तस्करी की शिकार महिलाएं भी शामिल हैं उनके लिए भी एकीकृत राहत और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की जाएगी। आपातकालीन तत्काल सेवाएं और अल्पकालिक देखभाल हिंसा से प्रभावित महिलाओं और संकटग्रस्त महिलाओं के लिए निरंतर सहायता और देखभाल प्रदान करना भी मिशन शक्ति योजना का उद्देश्य है, जिसमें राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर के माध्यम से समर्पित 24 घंटे की हेल्पलाइन और कानूनी सहायता, सामाजिक परामर्श ऐसी सेवाएं शामिल रहेंगी। बहनों, हमारा सशक्त बनना हमारे राष्ट्र की समृद्धि के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि हम अपने देश की आधी ताकत है। मिशन शक्ति योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करें, इसका लाभ उठाएं ताकि हम स्वयं भी सुरक्षित रहें, सशक्त बने और साथ ही अपनी बहनों को, अपने आसपास की महिलाओं को भी एक बेहतर जीवन के लिए प्रेरित कर सकें।

0: बहनों, आज विज्ञान और तकनीक ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम बैंक बंद होने पर भी एटीएम की सहायता से पैसे को जमा कर सकते हैं और उसे निकाल भी सकते हैं। पर तकनीक की सुविधा तभी हम उठा सकते हैं बहनों, जब हमें इसकी पूरी जानकारी हो और हम सजग रहें, क्योंकि कहते हैं ना कि जरा सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। क्योंकि आजकल कई बार धोखाधड़ी और गलत तरीके से पैसे निकालने की घटनाएं भी घट रही हैं। ऐसे में एटीएम का प्रयोग करने के पहले हमें इसके प्रयोग की पूरी जानकारी रखनी चाहिए। बहनों, आइए इसी विषय पर हम जानकारी लेते हैं कि भेंट वार्ता के माध्यम से। आज हम बात करेंगे शालिनी सिन्हा से। भेंट वार्ता का विषय है, ऐसे करें एटीएम कार्ड की सुरक्षा, और भेंट करता है हमारी सहयोगी पुष्पा तिवारी।
1: बहनों, एटीएम ने हमारे जीवन को सरल बना दिया है। अब 24 घंटे आप कहीं भी आसानी से रुपया निकाल सकती हैं। एक क्लिक से आसानी से आप कहीं भी जाकर रुपया निकाल सकती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एटीएम का लाभ रुपये निकालने में तो है ही, लेकिन आज सबसे अहम सवाल हम लोगों के सामने है कि कैसे करें हम अपने एटीएम और बैंक खाते की सुरक्षा। आज हमने इस विषय पर विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है सुश्री शालिनी सिन्हा को, जो स्थानीय बैंक में शाखा प्रबंधक है। शालिनी जी, आपका हमारे कार्यक्रम अंगना में तहे दिल से स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: साइबर अपराध की खबर आए दिन सुनने को मिलता है। आप हमारी बहनों को सबसे पहले तो ये बताइए कि एटीएम कार्ड क्या है, उसकी जानकारी दीजिए कि कार्ड का कार्य क्या है और कई प्रकार के कार्ड होते हैं और इससे क्या क्या फायदे हैं।
2: एटीएम कार्ड क्या होता है? एटीएम कार्ड आपको हर बैंक खाते के साथ एटीएम कार्ड मिल जाता है। एटीएम कार्ड एक तरह से हम पैसे की जगह पे एटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के ज़माने में जहाँ दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, एटीएम कार्ड हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया है। हर वर्ग के लोगों के लिए ये एटीएम कार्ड बहुत ज़रूरी है। हमारी सरकार भी बहुत ज़्यादा जोर इस पर डाल रही है कि लोग एटीएम कार्ड यूज़ करें, ताकि उसके मतलब जो लिक्विड पैसा है उसका उपयोग कम हो सके।
1: अच्छा।
2: और डिजिटल ज़्यादा हो सके, जिससे कि एक पारदर्शिता बनी रहे ग्राहक और जो भी कंपनी है, चाहे आपके दुकानदार हैं, उनके बीच में एक पारदर्शिता बनी रहे।
1: तो हम कैसे इस्तेमाल करें उसका, अपने बैंकों को ही जैसे एटीएम प्रयोग करने की जो सलाह आप देती होंगी, इसके बारे में बताइए एटीएम का इस्तेमाल हम कैसे करें।
2: आज के जमाने में एटीएम का इस्तेमाल हर जगह हो सकता है। इसलिए हो सकता है क्योंकि हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत सारी चीजें, हम छोटे छोटे दुकानदारों के पास भी अब ऐसी चीज आ गई है जहां पर आप अपने एटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं।

0: रही बात पिन की, तो एटीएम का पिन जब हम बनाते हैं तो वो बहुत ही पर्सनल चीज होता है, बहुत ही गोपनीय चीज होता है। उस पिन को हम किसी के साथ शेयर ना करें, किसी को बताए नहीं, उसकी गोपनीयता बनाए रखें। दूसरी एक एडवाइस है जो हर बैंक अपने ग्राहकों को देता है, वो है कि आप अपना पिन कुछ
1: बदलते रहें,
0: कुछ कुछ समय पर बदलते रहें, और ऐसा ऐसा कोई नंबर रखें जिसकी जानकारी केवल आपको हो, आपके आसपास के लोगों को भी ना हो। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और जरूरी है, एटीएम पिन बनाते वक्त कोई ऐसा नंबर ना रखें जो आपकी जिंदगी से जुड़ा हो, जैसे आपका जन्मदिन। अगर आप अपना जन्मदिन रखते हैं एटीएम का पिन का नंबर, तो वो कोई भी उसको गेस कर सकता है, कोई भी उसको समझ सकता है। अगर आपके नजदीक में ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपके साथ गलत करना चाहता हो आपके एटीएम के साथ, तो वो आसानी से आपके जन्म तारीख या जन्म तिथि का समीकरण बना करके उस नंबर को चुरा सकता है।
1: तो इस बीच जो ग्राहक उधेड़बुन में है कि उनके डेबिट और क्रेडिट कार्ड कितने सुरक्षित है।
0: डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आज पूरी दुनिया यूज कर रही है, पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है, बड़े से बड़ा आदमी भी और छोटे से छोटा व्यक्ति भी, इसकी सुरक्षा पर कोई संदेह नहीं है। लेकिन जहां तक बात आती है कि हमारी जागरूकता कितनी है, हम कितने जागरूक हैं कि हम अपने एटीएम कार्ड को बचा सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, और ऐसे ही नहीं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ अनपढ़ लोग या जिनका मतलब जिनकी पढ़ाई उतनी नहीं है वही लोग झांसे में आते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे पढ़े लिखे, अच्छे घर के, अच्छे व्यापार करने वाले, अच्छी नौकरियां करने वाले लोग भी इस तरह की झांसे में आ जाते हैं।
1: इधर सुनने में भी आया है कई लोगों के पास ऐसे फोन कॉल्स आते हैं कि वो किसी बैंक से बोल रहे हैं और कोड नंबर वगैरह की मांग की जाती है, उस सिलसिले में आपका क्या कहना है।
0: देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बैंक के तरफ से इस तरह की कोई जानकारी कभी भी फोन पर नहीं मांगी जाती है, क्योंकि बैंक वालों के पास भी इस तरह की जानकारी, ये आपकी निजी जानकारी है, ये किसी बैंक के पास भी नहीं होती, और ये बैंक आपसे कभी नहीं मांग सकता है। अगर इस तरह की कोई बात कभी कोई फोन कॉल पे आकर के ये कहता है कि आपका एटीएम ब्लॉक होने वाला है, या तरह तरह की बातें, या आपका ये अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर होने वाले हैं, या खाता बंद होने वाला है, आप अपना नंबर बता दीजिए, तो आप इस तरह के बात के लिए आप सीधा ये कहिए कि मैं बैंक में आकर के बात करूंगा या करूंगी।
1: कभी भी
0: इस बात को, और ये भी ना बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं या क्या करते हैं, ये
1: किसी तरह की जानकारी।
0: अगर आपको इस संबंध में कुछ भी सवाल पूछता है, तो आप सीधा ये कह सकते हैं कि मेरा खाता इस बैंक में है, मैं अभी 2 घंटे में मिलती हूँ आकर। इस तरह से वो सामने वाला भी आपको फोर्स नहीं कर पाएगा, आपको जबरदस्ती नहीं कर पाएगा, और आप अपनी एटीएम की सुरक्षा कर पाइएगा।
1: तो सुरक्षा के लिए और कैसे करें, जैसे इस पर कुछ और प्रकाश डालिए। मान लीजिए बहने गई एटीएम वहां, तो मशीन चेक कर ले या कीपैड को ढके, किसी की मदद ना ले।
0: ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, होता क्या है कि कभी कभी हमें जानकारी नहीं होती कि हम एटीएम इस्तेमाल कैसे करें, या मशीन को देख करके लोग डर जाते हैं कि अरे इतनी बड़ी मशीन है, इसको कैसे यूज करना है। लेकिन क्या होता है, अगर आपने एक बार भी उस मशीन को इस्तेमाल किया, वो मशीन बनाई ही इस तरह से गई है कि आप बहुत ही मतलब आसानी से उसका इस्तेमाल कर सकें। अगर आपको नहीं आ रहा है या कोई समस्या है, आप बैंक में जाकर के पूछिए, उनसे सीख लीजिए एक बार, उनके सामने एक दो बार कर लीजिए, लेकिन किसी बाहरी इंसान की मदद नहीं।
1: अच्छा, इधर ये ऑनलाइन में भी काफी गड़बड़ी, ऑनलाइन सावधानी में जो सेफ साइट यूज करते हैं, तो ये ऑनलाइन में जो बहनें शॉपिंग करती हैं या जो करती हैं, उनको क्या पासवर्ड बदलने होते हैं या लॉग आउट करना जरूरी होता है, कि किस तरह की सुरक्षा आप बताती हैं।
0: देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस एटीएम कार्ड में आपके ज्यादा पैसे रहते हैं, उस एटीएम कार्ड को हर ऑनलाइन शॉपिंग साइट पे न डालें, सबसे पहली बात। और अगर आप डाल भी रहे हैं, तो बहुत जगह पे होता है जहां पर ऑनलाइन शॉपिंग जो एप्स होते हैं वो आपका नंबर सेव कर लेते हैं। ये बिल्कुल ध्यान रखें कि आप वहां पर नो टिक करें जहां पर वो सेव करने की का ऑप्शन मांगता है। कभी भी अपने एटीएम नंबर को सेव न करने दें। दूसरी बात यह है कि जब भी आपका आप कभी एटीएम पिन डाल रही हैं, या कभी आपका ओटीपी आता है और उसी वक्त किसी का कॉल आ जाता है कि आपके यहाँ पर एक ओटीपी आया है, ये ओटीपी हमारा है या गलती से आपके पास चला गया है, उस वक्त भी किसी की मदद करने के लिए भी ऐसी गलती न करें कि वो ओटीपी आप किसी के साथ शेयर करें।
1: डिटेल्स किसी को ही ना बताएं, और स्टेटमेंट भी

0: चेक करने पड़ते हैं ना, जैसे जो बैंक की स्टेटमेंट भी चेक करते रहनी चाहिए।
1: बहुत बार ऐसा होता है कि आपके खाते से पैसे निकल जाते हैं और आपको महीनों भर बाद पता चलता है। तो जब आपको महीने भर बाद पता चलेगा तो आपका रिस्पांस भी बहुत लेट आएगा, बैंक भी उस स्थिति में कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए आप अपने स्टेटमेंट को, आप बैंक का ऐप यूज कर सकते हैं, हर बैंक का अपना एक प्लेटफॉर्म होता है, अपना ऐप होता है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कि अभी कितने पैसे निकले या कितने पैसे आए, इस चीज को आप टैप कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि मेरे पैसे निकल रहे हैं, ये पैसे जो निकले हैं ये मैंने ही निकाले हैं। इस चीज को देखते रहना भी आवश्यक है।
0: और किसी भी हालत में ये जो ब्लैक रसीद पर साइन नहीं करने की सलाह भी आप देते हैं, है ना, कि साइन करने से पहले या बाद में जो खाली जगह है वो और रकम लिखने में, ये भी आप बैंक में बताते कि सावधानी बरते।
1: देखिए, ये तो बिल्कुल जग जाहिर बात है कि कभी भी ब्लैंक चीज पर साइन नहीं करना होता, और खास करके जब पैसे का मामला है, आप बैंक में खड़े हैं तो आपको बहुत सावधानी से देखना होता है कि मैंने कितना पैसा लिखा है और मैं किस पैसे पर साइन कर रहा हूं, क्योंकि केवल उसी साइन के बिना पर एक बैंक मैनेजर, एक आदमी आपका पैसा निकालता है और उसी सिग्नेचर के बिना पर आपके पैसे को डेबिट किया जाता है। अगर आपने ब्लैंक किसी खाली जगह पर साइन कर दिया तो फिर कोई भी आदमी उस जगह पर अपने अकॉर्डिंग अमाउंट लिख करके उसको विड्रॉ कर सकता है,
0: मिसयूज कर लेगा। ऑनलाइन बैंकिंग जो है वो कितना सेफ है?
1: देखिए, ऑनलाइन बैंकिंग के लिए भी सारी चीज़ें सेम है जैसे एटीएम की चीज़ें हैं। ऑनलाइन बैंकिंग भी हर दर्जे का आदमी, हर स्तर का आदमी यूज़ कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन गलत ही हो जाता है। मैंने बहुत बार धारणाएं देखी हैं लोगों की कि हम ऑनलाइन बैंकिंग नहीं यूज़ करेंगे या इससे बहुत चोरियाँ हो रही हैं, ऐसी बात नहीं है। होता क्या है कि आप किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, आपके फ़ोन का या कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर कैसा है, आपने एंटीवायरस वगैरह इंस्टॉल किया है कि नहीं, कभी कभी इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन इसके लिए भी वही सावधानी है, आप उसका पासवर्ड चेंज करते रहिए, पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर ना करें। हमारे साथ कुछ घटनाएं जो मेरे नज़र में, मेरे सामने जो कुछ घटनाएं आई हैं, जिससे कि आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिससे आप सावधानी बरत सकें। हमारे पास कुछ दिनों पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति आए जिन्होंने एटीएम इस्तेमाल किया था और वहां खड़े किसी लड़के से उन्होंने मदद मांगी थी। तो उनके साथ क्या हुआ कि उस लड़के ने एटीएम तो ले लिया, उनका पिन उन्होंने बता दिया। अब उस लड़के ने 3,000 रुपए की जगह 13,000 रुपए निकाले और 3,000 रुपए उनको दे करके 10,000 रुपए खुद लेकर के चला गया। अब ये समस्या लेकर के जब वो हमारे पास आए तो इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने वो नंबर उनके साथ शेयर किया था। तो वो पैसे लेकर के चला गया, वो उसे जानते नहीं थे, उसको हम ट्रेस भी नहीं कर सकते थे कि वो बंदा कहाँ चला गया। एक इसी तरह की घटना हमारे साथ और हुई। एक महिला है, उन्होंने हमसे कंप्लेन किया, उनके पास एक फोन आया जिसने फोन पे ये पूछा उनसे कि मेरे अकाउंट में गलती से मैंने आपका नंबर डाल दिया है और अब मेरा एक ओटीपी है वो आपके अकाउंट में, आपके नंबर पे जा रहा है और मेरी बहन बहुत बीमार है, मुझे उसको अभी पैसे भेजने हैं, कृपया करके मुझे जो ओटीपी आपके पास पहुंचा है बस वो ओटीपी मुझे बता दीजिए। और ऐसा उन्होंने मतलब मानवता के नाते उन्होंने वो ओटीपी उसे बता दिया और उससे ये पता चला हुआ यूं कि उनके खाते से 1,00,000 रुपए डेबिट हो गए, उनके खाते से वो 1,00,000 रुपए निकल गए। मैं ये बताना चाहूंगी कि बैंक से जुड़े रहें, क्योंकि बैंक आज के ज़माने में, बैंक पारदर्शिता लाने में बहुत सहयोगी है। दूसरा, आप एटीएम कार्ड से डरे नहीं।
0: अच्छा, एक बात और मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगी कि क्या करें अगर वो फ्रॉड हो जाए या किसी बहन के साथ ऐसी घटना हो जाए तो क्या करें, वो बैंक या कार्ड जो देने वाले कंपनी है उससे संपर्क करें या पुलिस स्टेशन में जाए?
1: देखिए, ऐसा होता है कि FIR तो करवाना ही होता अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है या आपके कुछ अवैध ट्रांजेक्शन हुए हैं, ज्यादा पैसे निकल गए हैं, तो आपको सबसे पहले FIR कराना होता है। फिर वही FIR की कॉपी लेकर के आपको अपने बैंक में अपने बैंक मैनेजर को देना होता है एक पत्र के साथ कि मेरे खाते से इतने अवैध तरीके से इतने पैसे निकाले गए हैं जिसका कि मुझसे कोई संबंध नहीं है, और FIR की कॉपी उन्हें देनी होती है जिससे कि वो आगे डिजिटल डिपार्टमेंट में, जो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट होता है, साइबर सेल के थाने पे, वो वहां पे उसको डाल देते हैं।

0: जिससे कि अगर आपका देखिए, हर दूसरी बात ये, और मैं एक बात बताना चाहूंगी, ये बहुत जरूरी बात है, बहुत लोगों को नहीं पता है, आपके हर एटीएम के साथ इंश्योरेंस होता है, आपका हर एटीएम के साथ
1: बीमा
0: बीमा हुआ
1: वो
0: होता
1: 10 लाख तक का
0: बिल्कुल,
1: होता है।
0: वो बीमा बिल्कुल होता है। और अगर आप
1: काफी लाभ भी है एटीएम
0: बहुत
1: कार्ड
0: लाभ है, रुपए कार्ड जो सरकार ने लॉन्च किए हैं उसमें एक्सीडेंटल बीमा भी होता है।
1: से।
0: तो अगर आपके साथ कुछ वैसा फ्रॉड हुआ है और अगर आप कंप्लेन करते हैं तो उसके अनुसार आपको इंश्योरेंस के पैसे भी मिलते हैं, जितना आपका नुकसान हुआ है वो भरपाई भी बैंक करता है।
1: अच्छा, ये रिजर्व बैंक द्वारा एक नियुक्त बैंकिंग ऑब्जर्वर मैन होते, उनसे भी संपर्क किया जा सकता है।
0: जी, ये जो बैंकिंग ओमेट्समैन होता है, ये दरअसल ये आपको बैंकिंग से रिलेटेड किसी भी तरह की समस्या का कंप्लेंट करने का जगह है ये।
1: अच्छा,
0: अगर आपको बैंक मैनेजर से कोई दिक्कत है, आपको बैंक से कोई दिक्कत है, या आपको बैंक की का काम करने का रवैया नहीं पसंद है, आप उसमें कंप्लेंट कर सकते हैं
1: और अंत में आप कोर्ट का रुख तो कर ही सकती हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: आप हमारे यहाँ आई, अंगना का शोभा भी बढ़ाई, बहनों को जो उपयोगी जानकारी दी है, सलाह दी है, उनसे जरूर वे लाभ उठाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
2: बहनों। अभी आप सुन रही थी भेंट वार्ता, विषय ऐसे करें एटीएम कार्ड की सुरक्षा। इस विषय पर हमें जानकारी दे रही थी शालिनी सिन्हा और उनसे बातचीत कर रही थी पुष्पा तिवारी। बहनों चलते चलते बात कर लें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की और सुंदरता की। बहनों सुंदर दिखना भला कौन नहीं चाहता, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, पर ये बात ध्यान देने की है कि सौंदर्य प्रसाधन और खूब कीमती आभूषण से ही हम अपने व्यक्तित्व को आकर्षित नहीं बना सकते। अगर हम अस्थायी रूप से सुंदर दिखना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि हमारी त्वचा भी साफ दिखे, सुंदर दिखे, और इसके लिए बहुत अधिक खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं है। कुछ ऐसे घरेलू उपाय भी हैं जिसकी जानकारी हम रखें और अगर हम इसे अपनाएं तो हमारी त्वचा खिली खिली निखरी हुई साफ और सुंदर दिखेगी और स्वस्थ भी। सबसे पहले तो जरूरी है बहनों कि हम पर्याप्त जल पिएं। जल एक ऐसा पेय पदार्थ है जो हमारे शरीर के अंदर के विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालता है और इससे हमारी त्वचा भी कोमल बनी रहती है, इसमें रूखापन नहीं आ पाता। पर्याप्त नींद भी लें, क्योंकि आज ये मोबाइल के जमाने में कई बार देर रात तक हम और हमारी उंगलियां मोबाइल के कीबोर्ड पर और डेस्कटॉप पे ही फिसलती रहती हैं और इससे हमारे नींद पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। अब भला सोचिए, अगर रात को आप गहरी नींद नहीं लेंगी तो फिर अगले दिन घर और बाहर की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो भला कहाँ से लाएंगी। तो जरूरी है बहनों कि हम नियत समय पर रात को नींद लें, इससे हमारी त्वचा को भी खुद को फिर से संवारने का अवसर मिलता है, हमारी थकान कम होती है तो त्वचा का रूखापन भी कम होता है। ताजा एलोवेरा जेल लगाने से भी त्वचा की सूजन कम होती है और नमी बढ़ती है, और सबसे अच्छी बात यह है बहनों कि हम तो इसे अपने घर में बालकनी में गमले में भी लगा सकते हैं। सोने से पहले ठंडे तेल की कुछ बूंद से मालिश करने से भी रात भर में हमारी त्वचा को आराम मिलता है और यह कोमल बनी रहती है। गुलाब जल त्वचा की देखभाल का एक लोकप्रिय घरेलू नुस्खा है जो चेहरे को टोन और तरोताजा करने में हमारी मदद करता है। चेहरा साफ करने के बाद इसे हल्के से छिड़कने से जो हमारी त्वचा के रोम छिद्र होते हैं वो कस जाते हैं और इससे हमारी त्वचा में नई जान आती है। बहनों हम बात भोजन की भी कर लें, क्योंकि हम जो खाते हैं ना उसका असर भी हमारी त्वचा पर, हमारे चेहरे पर दिखाई देता है। विटामिन सी से भरपूर ताजे फल को हमेशा अपने भोजन में शामिल करें, यह हमारी त्वचा को कोमल और चिकना बनाए रखने में मदद करते हैं। हर्बल चाय पिएं, मौसमी सब्जियों का सेवन करें, इन सबों का भी हमारी त्वचा की चमक से गहरा संबंध है। झटपट परिणाम पाने की कोशिश में विज्ञापनों की दुनिया का अनुसरण न करें, बल्कि घर में मौजूद इन सारी चीजों से ही अपनी त्वचा को मुलायम बनाएं, इसे स्वस्थ रखें और चमक दें। त्वचा का खिलखिलाना अस्थायी सुंदरता का प्रतीक है और इससे हमें आत्मविश्वास मिलता है और एक सुकून भी। और बहनों इसी के साथ कार्यक्रम अंगना से अपनी रेडियो सखी कल्याणी को दीजिए विदा। हम फिर मिलेंगे।

0: गे और करेंगे गपशप। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, मुस्कुराते रहें और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें।
1: अंगना, महिलाओं का कार्यक्रम अपना अंगना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे महिलाओं के लिए कार्यक्रम अंगना। लिसनर्स, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 MHz पर।

श्रोताओं, अब से कुछ ही देर बाद 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। 2:55 का समय होगा प्रादेशिक समाचार का। 3 बजे का समय होगा न्यू इंडिया समाचार, जो कि रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 3:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। श्रोताओं, 1 बजने को हैं, अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार का प्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 1:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। बने रहिए हमारे साथ, समाचार प्रसारित किए जाएंगे बस कुछ ही पलों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति ने गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
1: He'll be meeting a prime minister and both leaders.
2: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
1: This is official visit.
0: कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज शाम विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का निर्देश दिया है। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय

0: सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
1: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी उनका स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांग्रीला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड की रक्षा मंत्री डिलेन येसिलगो जेगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने, सैन्य संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये भारत और नीदरलैंड के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों में निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। गुजरात टाइटंस आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गए हैं। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कल अहमदाबाद में फाइनल मैच 7:30 PM से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi today said that Indian Armed Forces remain on high operational alert and are prepared for Operation Sindoor 2.0 if the situation warrants further military action. Addressing the passing out parade of the 150th course at the National Defence Academy in Kharagwasla, Pune, General Dwivedi said that Operation Sindoor demonstrated India's ability to respond to provocation with precision and resolve, setting a benchmark for the country's response to emerging security challenges.
3: As far as Operation Sindoor is concerned, firstly, it is still continuing. There is temporary cessation of hostilities. So the Indian Army or all the three services are preparing well for Operation Sindoor 2.0 if it takes place. Presently, we are looking at enhancing our synergy within the three services. We are looking at equipping ourselves for the next warfare. As I have told you, the next warfare will not be limited to the land, maritime and air alone. The new entries, that is the space, cyber and cognitive warfare, will play a very important role.
2: Myanmar President U Min Aung Hlaing arrived in Bodh Gaya today as part of his 5-day visit to India. During the visit, he offered prayers at the world-renowned Mahabodhi Temple and the historic Sujata Temple. The President is also scheduled to visit various Myanmar Buddhist monasteries in Bodh Gaya. Earlier, Bihar Agriculture Minister Vijay Kumar Sinha accorded a warm welcome to President U Min Aung Hlaing at Gaya Airport. The Karnataka Congress Legislature Party is scheduled to meet in Bangalore at 4 p.m. today to elect its new leader to succeed the outgoing Chief Minister, Mr. Siddaramaiah. Governor Thawarchand Gehlot has already accepted the resignation of Mr. Siddaramaiah, asking him to act as a caretaker until a new incumbent is chosen. The 136 Congress MLAs have been asked to attend the CLP meeting. AICC General Secretary and Karnataka in charge, Randeep Singh Surjewala, will be the observer. 7 people have died in separate incidents of thunderstorms, rain and lightning strikes across Bihar. 3 fatalities were reported in Gaya, while Aurangabad recorded 2 deaths. 2 deaths have been reported from Saran and Khagaria districts. Expressing grief over the tragic incidents, Chief Minister Samrat Chaudhary has announced an ex gratia grant of 4 lakh rupees each for the next of kin of the deceased. Chief of Defence Staff General Anil Chauhan today bid farewell to military service after receiving a ceremonial Tri-Services Guard of Honour at the National War Memorial in New Delhi. The ceremony marked the culmination of his distinguished tenure as the country's top military officer.

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। कोल्हान के जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज, सीआरपीएफ डीजी ने कहा निर्णायक दौर में लड़ाई। राज्य में एसआईआर से पहले मतदाताओं की मैपिंग प्रक्रिया तेज, अब तक 75% से अधिक कार्य पूरा। रामगढ़ के पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में पासिंग आउट परेड सम्पन्न, 11 से 21 अग्निवीरों ने राष्ट्र रक्षा के लिए शपथ। संताल परगना में डेमोग्राफी बदलाव की जांच करेगी भाजपा की हाई लेवल कमेटी, बाबूलाल मरांडी ने बताया राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा। और झारखंड T20 क्रिकेट लीग के लिए थोड़ी देर बाद शुरू होगी नीलामी, 271 क्रिकेटरों पर लगेगी बोली। और अब समाचार विस्तार से। कोल्हान और सारंडा क्षेत्र को पूरी तरह नक्सल मुक्त बनाने के लिए सुरक्षा बलों ने अपनी अंतिम रणनीति तैयार कर ली है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने चाईबासा पहुंचकर नक्सल विरोधी अभियानों की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस अभियान और रणनीति पर अधिक जानकारी दे रहे हैं चाईबासा से हमारे संवाददाता।
1: पश्चिमी सिंहभूम जिले के जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ चल रहा अभियान अब अपने सबसे निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। चाईबासा पहुंचे सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने सुरक्षा बलों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि कोल्हान और सारंडा के बचे हुए नक्सली दस्तों के सफाये के लिए अब और अधिक प्रभावी और तेज प्रहार की आवश्यकता है। इस उच्च स्तरीय बैठक में केंद्रीय और राज्य सुरक्षा एजेंसियों ने आपसी समन्वय को मजबूत करते हुए पूरे जिले को जल्द से जल्द पूरी तरह नक्सल मुक्त बनाने का अंतिम खाका खींचा है। सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव से इस इलाके में नक्सलियों की कमर पूरी तरह टूट चुकी है। आकाशवाणी समाचार के लिए चाईबासा से मैं दिलीप बैनर्जी।
0: राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से पहले मतदाताओं की मैपिंग प्रक्रिया में तेजी आ गई है। अब तक 75.19% मतदाताओं की मैपिंग पूरी की जा चुकी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि 23 मई से अनमैप्ड मतदाताओं की सूची प्रकाशित होने के बाद महज एक सप्ताह के भीतर 5,14,000 से अधिक मतदाताओं की मैपिंग का कार्य पूरा किया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जानकारी दी कि जो मतदाता अभी तक अनमैप्ड हैं, वे 15 जून तक अपने संबंधित बीओलो से संपर्क कर मैपिंग करा सकते हैं। रामगढ़ स्थित पंजाब रेजिमेंटल सेंटर के किलाहारी ड्रिल स्क्वायर में आज 1,121 अग्निवीरों ने शानदार पासिंग आउट परेड और भव्य शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया।

0: समारोह में जवानों की 24 सप्ताह की कठिन सैन्य ट्रेनिंग का प्रदर्शन दिखा। मौके पर ड्रिल और फायरिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले वीर जवानों को इस अवसर पर सम्मानित भी किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि और सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर साजेश बाबू पीजी ने नव दीक्षित सैनिकों के समक्ष सेना के गौरव और उनके दायित्वों को रेखांकित किया।
1: आपके कंधों पर देश की रक्षा की बात आ गया है। हमारे देशवासियों ने जिम्मेवारी हमारे ऊपर रखा है, हमें उस पर खड़ा उतरना है। युद्ध क्षेत्र में आए वैज्ञानिक विकास और लेटेस्ट तकनीक को समय पर अपनाकर और उसमें महारत हासिल करके ही हम विजय के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।
0: राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण हो रहे डेमोग्राफी बदलाव की जांच के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पाकुड़ में आयोजित प्रशिक्षण शिविर के दौरान यह जानकारी साझा की। श्री मरांडी ने स्पष्ट किया कि झारखंड और बंगाल समेत कई राज्यों में घुसपैठ की वजह से डेमोग्राफी बदली है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बेहद गंभीर और चिंता का विषय है।
2: जो अभी जो एसआईआर होगा तो 2003 के बाद जो लोग आए होंगे तो एसआईआर में निकल जाएंगे। जो विदेशी लोग आकर के इलीगल तरीके से यहाँ डेरा जमाए, यहाँ के संसाधनों को कब्जा किए, तो फिर उसको तो मुक्त करना ही पड़ेगा।
0: रांची के ICAR भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान और रातू के किंग फिशरीज के बीच सतत मत्स्य पालन और आजीविका विकास के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। इसके तहत जनजातीय युवाओं, महिलाओं और ग्रामीण उद्यमियों के लिए विशेष प्रशिक्षण और कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। संस्थान के निदेशक डॉक्टर सुजय रक्षित ने बताया कि यह साझेदारी वैज्ञानिक प्रजनन, हैचरी प्रबंधन और नैनो तकनीक को बढ़ावा देकर झारखंड को सतत मत्स्य विकास का मॉडल राज्य बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने शिक्षा विभाग की बैठक में बड़ी कार्रवाई की है। ई विद्या वाहिनी पर हाजिरी न बनाने वाले 215 शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया है। साथ ही 10% से अधिक छात्र फेल होने वाले स्कूलों के सभी शिक्षकों और प्राचार्यों को शो कॉज जारी किया गया है। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक सैंडल ATIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में संभावित बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का LPG भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में यह महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है।
3: सरकार सभी घरों तक LPG सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज गोवा राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर सभी गोवा वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कामना की है कि प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविध परंपराओं से संपन्न गोवा राज्य निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे। उन्होंने इस विशेष दिन पर गोवा की अद्वितीय सांस्कृतिक पहचान और देश के विकास में इसके महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित किया। सांसद विद्युत वरण महतो की अध्यक्षता में जमशेदपुर समाहरणालय सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस उच्च स्तरीय बैठक में विधायकों और अन्य जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जिले के विभिन्न सरकारी विभागों और केंद्र व राज्य प्रायोजित।

0: विकास योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। भीषण गर्मी को देखते हुए सांसद ने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा खराब ट्रांसफार्मरों को अविलंब बदलने के सख्त निर्देश दिए।
1: बिजली जब कट जाती है काफी दिक्कत होता है, तार का बहाना में 7 दिन कट देता है, तो कट देने के चलते यहाँ पर बिजली का स्थिति खराब होने के पठन पठन से लेकर गर्मी में भी दिक्कत का होना। ब्लॉक वाइज जो एक रिपेयरिंग समिति जो हम वहाँ लोग रहते हैं उसका एक ब्लॉक वाइज टीम बना दिया जाए ताकि वो लोग तुरंत एक्शन में आकर उसको निष्पादन।
0: भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा घोषित नेशनल स्कॉलरशिप के लिए सरायकेला के 2 युवा कलाकारों का चयन हुआ है। नीलदीप कुमार साहू को छऊ संगीत और अभिजीत दित्त को छऊ नृत्य के लिए यह प्रतिष्ठित राष्ट्रीय छात्रवृत्ति मिलेगी। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि से स्थानीय छऊ कलाकारों में खुशी का माहौल है। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,46,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,70,000 रुपए प्रति किलो है। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ JSCA द्वारा पहली बार आयोजित की जा रही पेशेवर झारखंड T20 क्रिकेट लीग के लिए अब से थोड़ी ही देर बाद जमशेदपुर में खिलाड़ियों की नीलामी शुरू होगी। इस ऐतिहासिक नीलामी में राज्य भर के कुल 271 चुनिंदा क्रिकेटरों पर बोली लगाई जाएगी। इस T20 लीग का मुख्य उद्देश्य झारखंड के सुदूरवर्ती जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों की छिपी हुई युवा क्रिकेटर प्रतिभाओं को एक बड़ा और पेशेवर मंच प्रदान करना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोल्हान के जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज, CRPF DG ने कहा निर्णायक दौर में लड़ाई। राज्य में SIR से पहले मतदाताओं की मैपिंग प्रक्रिया तेज, अब तक 75% से अधिक कार्य पूरा। रामगढ़ के पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में पासिंग आउट परेड संपन्न, 1121 अग्निवीरों ने राष्ट्र रक्षा के लिए शपथ। संताल परगना में डेमोग्राफी बदलाव की जांच करेगी भाजपा की हाई लेवल कमेटी, बाबूलाल मरांडी ने बताया राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा। और झारखंड T20 क्रिकेट लीग के लिए थोड़ी देर बाद शुरू होगी नीलामी, 271 क्रिकेटरों पर लगेगी बोली। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। लिसनर्स, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 MHz पर। 1:20 हुए हैं श्रोताओं, समय है कार्यक्रम फिल्म संगीत का, लेकर हाजिर होंगे हम बस कुछ ही देर में।

0: हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
5: नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
6: ज्ञान विज्ञान
7: इतिहास के पन्नों से,
6: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
5: मौसम का मिजाज,
6: अपने शहर की खबरें।

0: बातों मुलाकातों के साथ
1: सुरीला मनोरंजन
2: और भी बहुत कुछ।
1: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 बजे तक
0: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
3: नमस्कार जमशेदपुर।

दिन भर की भागदौड़ के बाद ये पल है थोड़ा रुकने का, थोड़ा ठहरने का, कुछ पल अपनों के साथ अपनों की याद में बिताने का। तो मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल अप डाउन करने के बजाय दीजिए अपने प्रियजनों को एक कॉल, पूछिए उनसे उनके दिल का हाल, बताइए उन्हें अपने मन की स्थिति। हो सकता है उन्हें भी हो आपके इस कॉल का इंतज़ार या मैसेज का इंतज़ार। और इन पलों में अगर साथ हो संगीत का, तो दोस्तों ये पल बेहद खूबसूरत बीतेंगे। करते हैं इस कार्यक्रम का आगाज़ इस दिलकश गीत के साथ।

अरमान मलिक की आवाज़ में दोस्तों अभी आप सुन रहे थे दो लफ्जों की कहानी फिल्म का ये गीत। मनोज मुंतशिर के लिखे गीत को संगीत दिया था अमाल मलिक ने। कार्यक्रम का अगला गीत श्रोताओं आप सुनेंगे सिद्धार्थ महादेवन शिल्पा राव की आवाज़ में। फिल्म का नाम धूम 3। समीर रंजन के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत अपनी रेडियो दोस्त रिंकी के साथ। कार्यक्रम में गानों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, बस इस छोटे से अंतराल के बाद।

सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।

अलीशा चिनाय जुबिन गर्ग की आवाज में। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे क्रिश 3 फिल्म का ये गीत। समीर अंजान के शब्दों को संगीतबद्ध किया था राजेश रोशन ने। श्रोताओं कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे परंपरा टंडन और सचेत टंडन की आवाज में। फिल्म का नाम है रेड 2। कौसर मुनीर के लिखे गीत को संगीत दिया है सचेत परंपरा ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत अपनी रेडियो दोस्त रिंकी के साथ। कार्यक्रम का अगला गीत इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: यार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री, बस 30 रूपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: जलवायु और समानता, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन दुनिया भर में असमानता को और बढ़ाता है। कोई व्यक्ति कितना प्रभावित होगा यह उसकी आय, लिंग, उम्र, शिक्षा और सेहत पर निर्भर करता है। अमीर देश और अमीर लोग खुद को ज्यादा सुरक्षित रख पाते हैं, जबकि गरीब लोग जो सबसे कम प्रदूषण करते हैं उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। देशों के अंदर भी सामाजिक आवास, स्वास्थ्य सेवा और आपदा योजना जैसे कदम जरूरतमंदों की रक्षा करते हैं। दुनिया में असमानता को बढ़ाने से रोकने के लिए उचित धन सहायता और संसाधनों का सही बंटवारा बहुत मायने रखता है। यहाँ एक रोचक जानकारी है, दुनिया की सबसे अमीर 1% आबादी के पास दुनिया की 43%

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत अपनी रेडियो दोस्त रिंकी के साथ आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM के 102.4 MHz पर।

दोस्तों, जिंदगी में रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है, चाहे वो पति पत्नी का हो, दोस्ती का हो, रिश्तेदारी का हो या प्रेमी और प्रेमिका का। ऐसे में कई बार एक छोटी सी गलतफहमी भी इस विश्वास से के पुल को हिला सकती है। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि अपने रिश्ते को विश्वास और समझदारी पर टिकाएं, और अगर कभी भी असुरक्षा की भावना आए तो बैठकर इसी बातचीत के द्वारा सुलझाने की कोशिश करें। और ये जो असुरक्षा की भावना है वो किसी भी उम्र में हो सकती है, तो उस व्यक्ति को डांटने, छेड़ने, धुतकारने या छोड़ने के बजाय उसे समझाने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार रिश्ते बातचीत से ही और मजबूत होते हैं।

सोनू निगम जावेद अली की आवाज़ में। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे गजनी फिल्म का ये गीत। प्रसून जोशी के लिखे गीत को संगीत दिया था एआर रहमान ने। श्रोताओं इसी गीत के साथ आज का हमारा फिल्म संगीत का ये सफर बस यहीं तक। दीजिए इजाजत। लिसनर्स आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। 2 बजने को हैं श्रोताओं, अब आप सुनेंगे मिड डे न्यूज। उसके ठीक बाद 2:15 पर दोपहर समाचार का प्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। बने रहिए हमारे साथ, समाचार प्रसारित किए जाएंगे बस कुछ ही पलों।

0: Duo of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will also be in semi-final action. In women's cricket, India to take on hosts England in the second T20 international in Bristol today, with the visitors aiming to seal the three-match series. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian Standard Time. India currently lead the series 1-0 after a commanding 38-run victory in the opening match in Chelmsford on Thursday. And in cricket, Gujarat Titans stormed into the final of the IPL 2026 with a commanding 7-wicket victory over Rajasthan Royals in Qualifier 2 at New Chandigarh last night. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Indian Army prepared for Operation Sindhu 2.0 if the situation warrants, says Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi. Myanmar President U Min Aung Hlaing begins his 5-day India visit with prayers at Mahabodhi Temple in Bodh Gaya, Bihar. Karnataka Congress Legislature Party to meet in Bangalore this afternoon to elect its new leader. At least 7 people killed in separate incidents of thunderstorms, rain and lightning across Bihar. US Defense Secretary Pete Hegseth says Washington is prepared to resume military action against Iran if efforts to reach a deal fail. And in women's cricket, India to take on hosts England in second T20 international of 3-match series in Bristol today. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंधु 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति U Min Aung Hlaing 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। अमरीका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा, अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमरीका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्यवाही फिर से शुरू करेगा। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंधु 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंधु ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
2: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवक के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
3: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
1: लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय

0: सामरिक अध्ययन संस्थान के शांगिला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड्स की रक्षा मंत्री डिलेन एसेलगो जिगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यह भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन ऑनलाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी भारत आया है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गया जी एयरपोर्ट पहुंचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना किया। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्ट मंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
0: राष्ट्रपति ऊ मिन ऑनलाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से भी वो मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति ऊ सोमवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है।
2: आज डीके शिवकुमार राज्यपाल तावर चंद गहलोत से मिले। स्वेयरिंग इन सेरेमनी के दिनांक और जगह के बारे में चर्चा करने वह लोक भवन गए थे। इस बार युवा विधायकों को अवसर मिलने की संभावना है। अगले महीने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होने के कारण जल्दी से जल्दी सरकार बनाने का प्रक्रिया समाप्त करने पर गौर किया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: कांग्रेस के 136 विधायकों को विधानसभा बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह गुर्जेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष ज्ञान पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि उसके साझेदार TCS की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की शुरुआत देरी से हुई। NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो, परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 बजे से प्रवेश दिया जाएगा जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3 बजे के बजाय

0: केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,46,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि गोवा इस बात का प्रेरणादायी उदाहरण है कि पहचान और प्रगति साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकती हैं। पणजी के कला अकादमी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा ने आधुनिक विकास को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सफलतापूर्वक संरक्षित रखा है। गोवा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक सद्भाव और बुद्धि खुलेपन से निर्मित एक जीवंत सभ्यता है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, स्मारक डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किए, पुरस्कार और नियुक्ति पत्र वितरित किए तथा दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई सहायता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित गोवा आवश्यक है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका के सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमेरिका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे की बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। सिचुएशन रूम में हुई बैठक को स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और तटीय कर्नाटक में भी वर्षा की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओले पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
2: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ ये सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 1827 को उदंत मार्तंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ जिसमें श्री शुक्ल ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिनकर दिन अब अंत।

0: समाचार पत्रों से शुरू हुआ ये सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी। साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमा के राष्ट्रपति ओमिनाउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

लिसनर्स, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 2:30 हुए हैं श्रोताओं, समय है कार्यक्रम फिल्म संगीत का, लेकर हाजिर होंगे हम बस कुछ ही पलों में।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

फिल्म संगीत के आज के इस सफर में आप सभी श्रोताओं का बेहद स्वागत और आपकी रेडियो दोस्त रिंकी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, करते हैं कार्यक्रम का आगाज इस गीत के साथ।

हेमलता और मुकेश की आवाज़ में अभी आपने सुना विश्वास फिल्म का ये गीत। गुलशन बावरा के गीत को संगीतबद्ध किया था कल्याण जी आनंद जी ने।

किशोर कुमार की आवाज में अभी आप सुन रहे थे जहरीला इंसान फिल्म का ये गीत। मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया था

किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे मंजिल फिल्म का ये गीत। योगेश के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया था आर डी बर्मन ने।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज का हमारा फिल्म संगीत का ये सफर बस यहीं तक। दीजिए इजाजत। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही देर बाद 3:05 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। 3:15 पर समय होगा झारखंड के लोकगीत कार्यक्रम का। 3:30 पर आप सुनेंगे उपशास्त्रीय संगीत।

लिसनर्स, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। 2:55 होने को है श्रोताओं, अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। उसकी ठीक बात आप सुनेंगे न्यू इंडिया समाचार।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्य में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े मामलों की जांच कर रही फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जेएसएससी से महत्वपूर्ण जानकारी मांगी है। समिति ने जिला, विषय और वर्गवार विज्ञापित पदों की संख्या तथा वर्तमान रिक्तियों का ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा है। संबंधित विभागों को आवश्यक आंकड़े शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। माना जा रहा है कि इससे नियुक्ति प्रक्रिया और रिक्त पदों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। देश भर के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित CUET UG 2026 परीक्षा आज कुछ केंद्रों पर तकनीकी खराबी के कारण देरी से शुरू हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने यह जानकारी दी। NTA के अनुसार समस्या अब दूर कर ली गई है और सभी अभ्यर्थियों को पूरा प्रतिपूरक समय दिया जा रहा है ताकि किसी भी अभ्यर्थी को नुकसान न हो। सहायता के लिए NTA ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। राज्य के गेतलसूद, तेनुघाट और मैथन सहित प्रमुख जलाशयों में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्रीय संस्थान मुंबई के वैज्ञानिक डॉ. श्रवण कुमार शर्मा ने क्षेत्रीय सर्वेक्षण किया है। उन्होंने जलाशयों में वैज्ञानिक तकनीक, उन्नत जाल और सौर ऊर्जा चालित नावों की जानकारी ली है। मत्स्य निदेशक अमरेंद्र कुमार के अनुसार अब आधुनिक तकनीकों और मछुआरों के प्रशिक्षण से राज्य में पर्यावरण अनुकूल मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे मछुआरों की आजीविका में सुधार होने की प्रबल संभावना है। देश भर में जून महीने के लिए बैंकों की छुट्टियों की सूची जारी कर दी गई है। झारखंड समेत विभिन्न राज्यों में त्योहारों, साप्ताहिक अवकाश और अन्य अवसरों को मिलाकर बैंक कुल 11 दिनों तक बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल सेवाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रहेंगी। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे बैंक शाखाओं से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य समय रहते निपटा लें। भ्रष्टाचार के एक मामले की जांच के तहत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है। CBI ने CCL के रामगढ़ के गिद्दीसी परियोजना से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों समेत 5 लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की। जांच एजेंसी ने मामले से जुड़े दस्तावेज और अन्य साक्ष्य जुटाए हैं। CBI ने कहा है कि मामले की जांच जारी है और आगे भी कार्रवाई की जा सकती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। चतरा जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अनुमंडल पुलिस अधिकारी नागर गोजे शुभम भाव साहेब ने बताया कि तस्करों के पास से 1 किलो से अधिक मादक पदार्थ बरामद की गई है, जिसकी कीमत बाजार में करीब 6 लाख रुपए है।
1: सशस्त्र बल के एफर्ट से 2 लोगों को पकड़ लिया गया, लेकिन 1 भागने में सफल रहा। दोनों भी लावालौंग के रहने वाले हैं। जो भाग गया उसका नाम है सरफराज खान। सरफराज खान एक तरह से इसमें खरीदी करने के लिए आया था अफीम का। ये जो 2 लोग थे, ये लोग बिक्री के लिए आए थे। अब उनके पास से जो अफीम बरामद हुआ है, उसका कुल वजन था 1 किलो 113 ग्राम।
0: जामताड़ा जिले में एक ज्वेलरी व्यवसायी से लाखों रुपए मूल्य के सोना चांदी के आभूषणों की लूट की गई है। पुलिस के अनुसार फतेहपुर बाजार में हथियारबंद 5 अपराधियों ने व्यवसायी को रोककर गहनों से भरा बैग छीन लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने IPL में शानदार प्रदर्शन करने वाले युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को सम्मानित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वैभव को झारखंड स्वास्थ्य विभाग का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि इससे युवाओं में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। जामताड़ा जिले में कल देर शाम से शुरू हुए राज्य स्तरीय बालिका वर्ग खो खो प्रतियोगिता में 16 जिलों की टीम भाग ले रही है। जिला खो खो संघ के उपाध्यक्ष चंचल भंडारी ने कहा कि 3 दिनों तक चलने वाली प्रतियोगिता का आयोजन करना जामताड़ा के लिए गौरव का क्षण है।
2: जामताड़ा जिला में राज्य स्तरीय बालिका वर्ग के लिए खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जो 3 दिवसीय चलना 31 मई को इसका समापन है। इसमें लगभग 16 जिला से टीम आई हुई है और हो सकता है कि और 2 टीमें में शिरकत करे। गर्व की बात है कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जामताड़ा जिला को मिला।
0: और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सरकार की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा यह अभियान अब भी जारी है।
1: As far as Operation Sindoor is concerned,
2: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और रक्षा सेवा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण हैं। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम जनरल चौहान का स्थान लेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। श्री डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्

इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर विचार किया गया। सिचुएशन रूम में हुई ये बैठक कोई स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 MHz पर। 3:05 हो रहे हैं श्रोताओं, समय है कार्यक्रम सुगम संगीत का। सुगम संगीत के आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे अनूप जलोटा की आवाज में गजल। कार्यक्रम का आगाज इस गजल के साथ।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे अनूप जलोटा की आवाज़ में गज़ल। इसी गज़ल के साथ आज का सुगम संगीत का हमारा ये सफ़र यहीं तक। दीजिए इजाज़त।

लिसनर्स, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। 3:15 हुए हैं श्रोताओं। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे झारखंड के लोकगीत।

श्रोताओं, आज के झारखंड के लोकगीत के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे मुंडारी लोकगीत। कलाकार होंगे काने मुंडा और साथी।

श्रोताओं, इसी के साथ आज के आदिवासी लोकगीत का हमारा आज का ये सफर बस यहीं तक। दीजिए इजाजत। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 MHz पर। 3:30 हुए हैं श्रोताओं। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे उपशास्त्रीय संगीत।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, 3:45 होने को हैं, अब आप सुनेंगे लोकगीत का कार्यक्रम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्रीमती कुमुद अखोरी देवी की आवाज में भोजपुरी लोकगीत, और इसी लोकगीत के साथ आज का हमारा लोकगीत का ये सफर यहीं तक। दीजिए अपने रेडियो दोस्त रिंकी को इजाजत। लिसनर्स, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर बाद 4:02 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। 4:30 पर समय होगा फिल्म संगीत का, और 5:02 पर आप सुनेंगे युवाणी कार्यक्रम। श्रोताओं, 4 को हैं, अब आप सुनेंगे समाचार मुख्यांश, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची के।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्य में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े मामलों की जांच कर रही फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जेएसएससी से महत्वपूर्ण जानकारी मांगी है। समिति ने जिला, विषय और वर्गवार विज्ञापित पदों की संख्या तथा वर्तमान रिक्तियों का ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा है। माना जा रहा है कि इससे नियुक्ति प्रक्रिया और रिक्त पदों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। देश भर के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित CUET UG 2026 परीक्षा आज कुछ केंद्रों पर तकनीकी खराबी के कारण देरी से शुरू हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने यह जानकारी दी। NTA के अनुसार समस्या अब दूर कर ली गई है और सभी अभ्यर्थियों को पूरा प्रतिपूरक समय दिया जा रहा है ताकि किसी भी अभ्यर्थी को नुकसान न हो। सहायता के लिए NTA ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। देश भर में जून महीने के लिए बैंकों की छुट्टियों की सूची जारी कर दी गई है। झारखंड समेत विभिन्न राज्यों में त्योहारों, साप्ताहिक अवकाश और अन्य अवसरों को मिलाकर बैंक कुल 11 दिनों तक बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल सेवाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रहेंगी। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे बैंक शाखाओं से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य समय रहते निपटा लें। भ्रष्टाचार के एक मामले की जांच के तहत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है। CBI ने CCL के रामगढ़ के गिद्दीसी परियोजना से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों समेत 5 लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की। जांच एजेंसी ने मामले से जुड़े दस्तावेज और अन्य साक्ष्य जुटाए हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने IPL में शानदार प्रदर्शन करने वाले युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को सम्मानित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वैभव को झारखंड स्वास्थ्य विभाग का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि इससे युवाओं में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: लिसनर्स, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 MHz पर। 4:02 हो रहे हैं श्रोताओं, समय है कार्यक्रम सुगम संगीत का। सुगम संगीत के आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे गुलाम अली की आवाज में गजलें। कार्यक्रम का आगाज इस गजल

गुलाम अली की आवाज़ में इस गज़ल के साथ ही आज का सुगम संगीत का हमारा ये सफ़र बस यहीं तक। दीजिए अपने रेडियो दोस्त रिंकी को इजाज़त।

सुगम संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 4:30 हो चुके हैं और अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में अपनापन फिल्म का ये नगमा अभी आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी का लिखा गीत और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

पारस मनी फिल्म से लिए इस गाने में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों को। शब्द रचना असद भोपाली की थी और संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म हम आपके हैं कौन से ये गाना अभी आप सुन रहे थे। गाने के बोल लिखे थे देव कोहली ने और इसकी धुन बनाई थी राम लक्ष्मण ने।
1: हेलो डॉक्टर,
2: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
1: हेलो डॉक्टर,
2: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
0: और इस संदेश के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत की प्रस्तुति से मुझे यानी विभा को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। कार्यक्रम फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से समाचार मुख्यांश। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। रांची के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने आज नगड़ी स्थित EVM वेयर हाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वेयर हाउस की सुरक्षा व्यवस्था, रख रखाव और तकनीकी प्रबंधन की स्थिति का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पश्चिमी सिंहभूम जिले के खूंटपानी प्रखंड मुख्यालय से आज महिलाओं और किशोरियों को मासिक धर्म स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो नामक एक जागरूकता रथ को रवाना किया गया। जिले के उपविकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार ने इसे हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि यह जागरूकता रथ सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर नुक्कड़ नाटक, प्रचार सामग्री और उद्घोषणाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करेगा। पलामू जिले से पुलिस ने बच्चे के गले से सोने का लॉकेट काटने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस उपाधीक्षक राजेश यादव ने आज एक प्रेस वार्ता में बताया कि इन अपराधियों ने पिछले दिनों एक मोटरसाइकिल पर बैठी बच्ची के गले से सोने का लॉकेट काट लिया था। इस दौरान ब्लेड लगने से बच्ची जख्मी भी हो गई थी। साहिबगंज जिले के बोरियो में हुए एक सड़क हादसे में आज 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने टक्कर होने से यह हादसा हुआ। एक मृतक की पहचान राधानगर थाना क्षेत्र के निवासी के रूप में हुई है, जो गुड्डा जिला पुलिस बल में पदस्थापित थे। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी रांची से अभी आप सुन रहे थे समाचार मुख्यांश। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM बैंड के 102.4 MHz पर। शाम के 5:02 हो चुके हैं और अब आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युवा वाणी।

0: नमस्कार युवा साथियों, आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र में आपका स्वागत है और आप सुन रहे हैं 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर युववाणी और मैं हूं आपकी दोस्त श्वेता। दोस्तों, कार्यक्रम आज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि अगले आधे घंटे में हम बात करेंगे उस स्वतंत्रता सेनानी की जिसने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। बात करेंगे बदलते दौर में युवाओं के बदलाव की, स्किल्स वर्सेस डिग्री पर भी चर्चा करेंगे और अंत में आज के कुछ समसामयिक गतिविधियों की बात करेंगे।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
5: 870-001-4242।
0: दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक वो नेता जिसने स्वराज को पूरे देश की आवाज बना दिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा।

0: चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेजों ने उस क्रांति को बहुत ही बेरहमी से कुचल दिया। हजारों भारतीयों को फांसी दे दी गई, गांव जला दिए गए और लोगों में डर बैठा दिया गया। 1857 की इस बगावत के बाद अंग्रेज सरकार के मन में एक डर हमेशा बना रहा, कहीं भारतीय दोबारा एकजुट होकर विद्रोह ना कर दे। इसलिए अंग्रेजों ने ऐसी राजनीति शुरू की जिससे भारतीयों का गुस्सा शांत रखा जा सके। इसी सोच के साथ सन 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। इसके पीछे मुख्य भूमिका थी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की। उस समय कांग्रेस कोई क्रांतिकारी संगठन नहीं थी। दोस्तों, उसका उद्देश्य अंग्रेजों से लड़ना नहीं बल्कि विनम्रता से अपनी मांगे रखना था। उस दौर में राजनीति प्रोटेस्ट, पिटिशन और प्रेयर पर चलती थी, अर्थात विरोध करो, प्रार्थना पत्र दो और सरकार से दया की उम्मीद रखो। कांग्रेस के मंच से यूनियन जैक फहराया जाता था, ब्रिटेन के राजा की जय जयकार की जाती थी, गॉड सेव द किंग जो कि ब्रिटेन का राष्ट्रगान है गाया जाता था। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने का साहस किसी में नहीं था। लेकिन फिर भारत की राजनीति में एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने इस नरम राजनीति को चुनौती दी। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कहा कि आज़ादी भीख मांगने से नहीं मिलती, उसे छीनना पड़ता है। उस व्यक्ति का नाम था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरि में एक चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता गंगाधर रामचंद्र तिलक संस्कृत के विद्वान और शिक्षक थे। घर में शिक्षा और ज्ञान का माहौल था। बचपन से ही तिलक बेहद तेज बुद्धि के थे। कहते हैं स्कूल के दिनों में उन्हें अन्याय बिल्कुल पसंद नहीं था। तो चलिए दोस्तों, आपको सुनवाते हैं इस पर इतिहास के शिक्षक का क्या कहना है।
1: लोकमान्य तिलक सच्चे अर्थों में भारत के स्वाधीनता संग्राम के पहले सिपाही जिन्होंने स्वराज की मांग की थी। उनसे पहले के सभी लोग डोमिनियन स्टेटस की बातें करते थे, लेकिन लोकमान्य तिलक वो पहले नेता थे जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की। उन्होंने भारत के पुराने गौरव को स्थापित किया, यहाँ तक कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर ही महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व किया। लेकिन वास्तविकता यह है कि स्वतंत्रता संघर्ष में तिलक का योगदान अतुलनीय है। हालांकि भारत के इतिहास लेखन में उन्हें वो स्थान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। तिलक एक प्रकांड विद्वान भी थे। अपने लेखों से जो प्रायः मराठा एवं केसरी में छपते थे, उन्होंने सरकार पर अनगिनत आक्रमण किए और उनकी कटु आलोचना की। ब्रिटिश सरकार पर अपने लेखों द्वारा लगातार प्रहार करते हुए तिलक कहते भी थे कि राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। उनके द्वारा राष्ट्रीय चेतना जगाने के प्रयासों में स्वदेशी बायकॉट एवं होम रूल आंदोलन उल्लेखनीय है। शिवाजी उत्सव एवं गणपति उत्सव के द्वारा जनमानस की सांस्कृतिक चेतना को उद्वेलित करना एवं अखाड़ा तथा लाठी क्लब के माध्यम से युवाओं में आत्मविश्वास एवं गौरव की वृद्धि करने में उनका योगदान उल्लेखनीय है। वास्तव में तिलक के योगदान को इतने कम शब्दों में आंकना बहुत ही मुश्किल है। यह सच है कि महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, लेकिन सच यह भी है कि गांधी जी ने वो सारे तरीके इस्तेमाल किए जो उनसे बहुत पहले तिलक कर चुके थे। उदाहरण के लिए स्वदेशी, बायकॉट, सत्याग्रह, ये सारे चीजें तिलक

दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने डेकन कॉलेज से गणित में पढ़ाई की। उस समय भारत में पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत ही कम थी, लेकिन तिलक सिर्फ नौकरी करना नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि अगर भारत को मजबूत बनाना है तो सबसे पहले लोगों को शिक्षित करना होगा। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। बाद में उन्होंने डेकन एडुकेशन सोसाइटी की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन दोस्तों, आज हमें ये बताते हुए खुशी होती है कि तिलक सिर्फ किताबों तक सीमित रहने वाले व्यक्ति नहीं थे। वे समझ चुके थे कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए जनता को जागरूक करना जरूरी है। उस समय अखबार लोगों तक विचार

समाचार पहुंचाने का सबसे बड़ा माध्यम था। इसलिए तिलक ने दो समाचार पत्र भी शुरू किए, मराठी में केसरी और अंग्रेजी में द मराठा।

इन अखबारों में तिलक अंग्रेजों की नीतियों की खुलकर आलोचना करते थे। वे लोगों को बिना किसी भय के ये बताते थे कि अगर अंग्रेज

वे लोगों को बिना किसी भय के ये बताते थे कि अंग्रेज कैसे भारत का शोषण कर रहे हैं। उनके लेखों में आग होती थी जो युवाओं के दिलों में क्रांति पैदा कर देती थी। धीरे धीरे तिलक पूरे देश में लोकप्रिय होने लगे। लोग उन्हें सिर्फ नेता नहीं बल्कि अपनी आवाज मानने लगे थे। उस समय कांग्रेस में दो विचारधाराएं थी। एक थे नरम दल के नेता जो अंग्रेजों से विनती करके अधिकार मांगना चाहते थे, और दूसरी तरफ दोस्तों थे गरम दल के नेता जो अंग्रेजों का खुलकर विरोध करना चाहते थे। और हमारे बाल गंगाधर तिलक थे नरम दल गरम दल के सबसे बड़े नेता। पर तिलक अकेले नहीं थे, उनके साथ थे लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल। इन तीनों को लाल बाल पाल कहा जाता था। तो चलिए दोस्तों, इनकी दोस्ती और आजादी के संघर्ष को याद करते हुए आपको सुनवाते हैं ये गाना।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे ये गाना कंधों से मिलते हैं कंधे। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, आवाज़ दिया है शंकर महादेवन, सोनू निगम, हरिहरन, रूप कुमार, कुणाल और विजय प्रकाश ने, और फिल्म का नाम है लक्ष्य। दोस्तों बदलाव प्रकृति का नियम है। कभी सोचा है अगर मौसम बदलना बंद हो जाए तो क्या होगा, अगर पेड़ पुराने पत्तों को छोड़ने से मना कर दे, अगर नदी कह दे कि मैं अपना रास्ता ही नहीं बदलूंगी, अगर इंसान बचपन से लेकर बुढ़ापे तक बिल्कुल एक जैसा ही रहे तो शायद जीवन रुक जाएगा, क्योंकि इस दुनिया में जो बदलता नहीं वो धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। और आज दोस्तों मैं आपसे उसी बदलाव की बात करने आई हूँ, लेकिन सिर्फ मौसम या तकनीक के बदलाव की नहीं, बल्कि उस बदलाव की जो आज के युवाओं के अंदर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक समय था जब माता पिता कहते थे अच्छे नंबर ले आओ जिंदगी सेट हो जाएगी, लेकिन आज सिर्फ नंबर ही काफ़ी नहीं है। आज कंपनियां पूछती है तुम्हारे अंदर स्किल्स क्या है, तुम समस्या का समाधान कैसे करते हो, तुम्हारी सोच कितनी क्रिएटिव है, तुम टेक्नोलॉजी के साथ कितने अपडेट हो, क्योंकि आज की दुनिया में डिग्री से ज़्यादा ज़रूरी है अडैप्टेबिलिटी, यानी कि परिस्थिति के हिसाब से खुद को बदलने की क्षमता, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं है। देखिए जो मोबाइल हम 10 साल पहले इस्तेमाल करते थे आज वो पुराने लगते हैं, जो तरीके पहले काम करते थे आज शायद उतने प्रभावी नहीं हैं, पहले लोग घंटों लाइन में लगकर टिकट बुक करते थे, आज देखो एक क्लिक में सब हो जाता है।

पहले लोग नौकरी के लिए शहर शहर घूमते थे, आज इंटरव्यू मोबाइल से हो जाता है। तो जब दुनिया बदल रही है, तकनीक बदल रही है।

0: काम करने का तरीका बदल रहा है, तो क्या सिर्फ हमारी सोच पुरानी रहनी चाहिए? आज की युवा के पास जानकारी तो बहुत है, लेकिन दिशा कम है। मोबाइल में इंटरनेट तो है, लेकिन दिमाग में क्लैरिटी ही नहीं है। सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल वीडियोस तो है, लेकिन असल जिंदगी में एक्शन कम है। हम रात भर दूसरों की सफलता देखते हैं, लेकिन खुद के सपनों पर काम करने से डरते हैं। और यही वो जगह है जहां बदलाव सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आइए दोस्तों, अपने शहर के युवाओं से जानते हैं कि क्या सच में युवाओं को बदलाव की जरूरत है, और अगर है तो क्या बदलाव होने चाहिए।
1: आज के दौर में समय तेजी से भाग रहा है, वक्त वक्त बदलाव सा आ रहा है, इसलिए हमें बदलाव को एक्सेप्ट भी करना चाहिए और समय के हिसाब से खुद को अपडेट भी करना चाहिए। नए नए स्किल्स, नए नए एक्टिविटीज, नए नए चीज सीखने का अगर मौका मिलता है आपको, तो उससे गंवाना नहीं चाहिए और सीखना चाहिए, ताकि हम आने वाला जनरेशन, आने वाला समाज के लिए कुछ अच्छा करके जा सकते हैं।
2: मेरे हिसाब से काफी बदलाव आने की जरूरत है, क्योंकि आजकल जैसे अभी एडवांस होते जा रहा है टेक्नोलॉजी, हमें उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, न्यू स्किल्स डेवलप करना चाहिए। जैसे हम लोग को, जैसे अभी AI बहुत चल रहा है, तो उस फील्ड में ज्यादा एक्सपीरियंस लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है युवाओं को, उसमें ज्यादा एक्सेल कर सकते हैं अभी हम लोग। तो मेरे हिसाब से ये सब पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और हमारे एक बेहतर अच्छा सोसाइटी बनाने में हमें और अग्रसर होना चाहिए।
3: बदलते दौर में युवाओं को बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे कि समय आगे बढ़ रहा है, नई चीजों में हम लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए, और हम लोग अब बहुत पीछे रह गए हैं, तो उस हिसाब से आगे बढ़ना बहुत जरूरी है।
4: बदलते दौर के साथ युवाओं का बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से नए जॉब्स आ रहे हैं, AI की डिमांड आ रही है, इस तरह से आप अगर खुद को नहीं डेवलप करेंगे, आप नए तरह की सॉफ्ट स्किल्स को नहीं सीखेंगे, तो आप कहीं ना कहीं आउटडेटेड हो जाएंगे और आपका इस दुनिया में सर्वाइव करना, इस दुनिया में जीना खाना मुश्किल हो जाएगा। तो युवाओं को इस नए दौर को अपनाना बहुत जरूरी है।
5: इस बदलते दौर में युवाओं को बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल के जनरेशन में डेवलपमेंट जरूरी है, पर अपने कल्चर को अगर वो साथ लेके चले तो और अच्छी बात है।
0: तो दोस्तों, ये थे शहर के युवा और उनकी राय। दोस्तों, खुद से एक सवाल जरूर करिए, क्या मैं वही इंसान हूँ जो 2 साल पहले था? क्या मेरी सोच बदली? क्या मैंने अपने स्किल्स पर काम किया? अगर जवाब नहीं है तो समझिए समय आगे बढ़ गया है और आप पीछे छूट गए हैं, लेकिन हम वही खड़े हैं। क्या आपको पता है कि आज की युवा को किस तरह के बदलाव की जरूरत है? सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल्स पर फोकस करने की भी जरूरत है। आज ग्राफिक डिजाइनिंग, AI, कोडिंग, कम्युनिकेशन, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग जैसे स्किल्स दुनिया बदल रही है, दुनिया भर में फैल रही है, और जो युवा ये सब सीख रहा है वही आगे बढ़ रहा है। कंपैरिजन छोड़कर ग्रोथ पर ध्यान देना होगा। आज हम दूसरों की जिंदगी देखकर दुखी है, उसके पास अच्छी नौकरी है, उसके पास पैसा है, उसके लाखों फॉलोवर्स है, लेकिन याद रखिए, पेड़ कभी दूसरे पेड़ से मुकाबला नहीं करता, वो खुद को आगे बढ़ाता है। दोस्तों, असफलता का एक कारण सोशल मीडिया भी है। दोस्तों, सोशल मीडिया बुरा नहीं है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल खतरनाक है। अगर मोबाइल सिर्फ मनोरंजन बन गया तो वो आपका सारा टाइम लॉस करवा सकता है। आइए दोस्तों, इसी के साथ आपको सुनवाते हैं ये गाना, इकबाल फिल्म का ये गाना, जिसको गाया है KK और सलीम मर्चेंट ने, जो लिखा है इरफान सिद्दीकी ने।

0: दोस्तों, अब एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हर स्टूडेंट, हर पेरेंट और लगभग हर यंगस्टर कभी ना कभी तो जरूर सोचता है। आखिर जिंदगी में ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, डिग्री या फिर स्किल? और सच कहूँ तो ये लड़ाई आज की नहीं है, सालों पुरानी है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं अच्छी डिग्री नहीं, स्किल्स मायने रखती है, और दूसरी तरफ दोस्तों वो लोग हैं जो कहते हैं कि अच्छी डिग्री होगी तो जिंदगी सेट होगी।
1: स्किल और डिग्री में दोनों ही इम्पोर्टेंट रहता है, लेकिन आज के दौर देखा जाए, जो 5G का जनरेशन चल रहा है, तो स्किल डिग्री के ऊपर ज़्यादा हावी है। सरकार भी देखिए, बहुत सारी जैसे स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स रन कर रही है। प्लस आप कहीं भी जाइए, अगर जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं या इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं, तो सबका सोच रहता है जो हायर कर रहे हैं कि हमको स्किल्ड पर्सन या स्किल्ड आदमी चाहिए। तो स्किल आज के डेट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है।
2: अगर मैं कहूँ तो ये दोनों कंपेरिजन ही वेग है कि ना तो दोनों को एक लाइन से नहीं ढाका जा सकता है। डिग्री अपने जगह पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, एज वेल एज स्किल तो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। लेकिन अगर आज के दौर की बात करी जाए तो स्किल मेरे परसेप्शन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा और ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाता है और बेहतर चीज़ हो सकता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं कि आप एक डिग्री के बगैर, डिग्री होने के बावजूद आप बेरोजगार हो सकते हैं, लेकिन अगर आप एक अच्छी स्किल सीख लेते हैं और खुद को उसमें मास्टर कर लेते हैं तो आप बेरोजगार कभी नहीं रहेंगे और आपके घर में पैसे की रेगुलर आमदनी तो होती रहेगी, क्योंकि एक स्किल पे बहुत ज्यादा फोकस, इंसान वो स्किल पास ऑन होते रहता है, डिग्री लोग नाम के लिए भी ले लेते हैं।
3: डिग्री तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन किसी इंसान के अंदर में स्किल, किसी चीज़ की स्किल, जैसे कि आप एक्टिंग अच्छा करते हैं या डांस बहुत अच्छा करते हैं या सिंगिंग बहुत अच्छा करते हैं, तो वो स्किल को और निखारना चाहिए और उभारना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जैसे कि मोबाइल अच्छा बनाते होंगे, तो उनके और ज़्यादा अपने स्किल को और डेवलपमेंट करना चाहिए ताकि और अच्छा हो सके। डिग्री के साथ साथ अपने स्किल को भी आगे बढ़ाना चाहिए।
0: दोस्तों, आज का कार्यक्रम युववाणी बस यहीं तक। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने रेडियो दोस्त श्वेता को दीजिए अनुमति। आप सभी रखिए अपना पूरा पूरा ख्याल। नमस्कार।

0: कार्यक्रम युववाणी अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:30 हो चुके हैं। अगली प्रस्तुति से पहले लेते हैं विराम और सुनते हैं ये संदेश।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी।

0: है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज्ड नमक।
0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए।
3: संदेश के बाद प्रस्तुत है कार्यक्रम का।

इस कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को संजय प्रसाद का नमस्कार। श्रोता मित्रों, आज हम आप लोगों को एक वार्ता सुनवाएंगे। विषय होगा वैश्विक शांति एवं प्रगति का महामंत्र, मानव एकजुटता का सरल मार्ग। साथ ही साथ आयुष्मान भारत योजना के विषय पर भी बताएंगे और श्रमिकों के लिए कारखानों में सुरक्षा उपकरण के विषय पर भी जानकारी देंगे। पर सबसे पहले आइए हम बात करते हैं गोवा राज्य के स्थापना दिवस पर। गोवा राज्य की आज स्थापना दिवस मनाई जा रही है। हर वर्ष 30 मई को गोवा राज्य स्थापना दिवस मनाता है। इस दिन वर्ष 1987 में गोवा को भारत का 25वां राज्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। गोवा केवल अपने सुंदर समुद्र तटों के और चर्च तथा प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि ये भारतीय संस्कृति, इतिहास और विविधता का भी अद्भुत उदाहरण है। यहाँ की कोंकणी भाषा, लोक संगीत, नृत्य और पारंपरिक उत्सव इसके सांस्कृतिक पहचान को और भी समृद्ध बनाते हैं। गोवा का इतिहास संघर्ष और स्वाभिमान की कहानी भी कहता है। लंबे समय तक पुर्तगाली शासन के अधीन रहने के बाद 19 दिसंबर 1961 को गोवा भारत का हिस्सा बना। इसके बाद विकास की नई

सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाता है। स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सौहार्द के लिए भी गोवा की विशेष पहचान है। गोवा राज्य स्थापना दिवस हमें ये संदेश देता है कि हम अपनी संस्कृति और परंपराओं को

कार्यक्रम के अगले चरण में आइए हम आप लोगों को एक फिल्मी गीत सुनवाते हैं, जिसे हमने आपके लिए फिल्म वक्त से लिया है। गायक कलाकार हैं मन्ना डे, गीत साहिर के हैं और संगीत

बाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शौकिया ये बाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां, मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां। ऐ मेरी जोह गजबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तो

सनम ओ सनम मैं तेरा आशिक जावदा ओ सनम मैं तेरा आशिक जावदा ए मेरी जोहरा जबीं तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हसी और मैं जवान तुझे कुर्बान मेरी जान ए मेरी जोहरा जबीं तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हसी और मैं जवान तुझे कुर्बान।

इस मधुर गीत के बाद एक बार फिर से हम बात करते हैं कारखानों में सुरक्षा उपकरणों के महत्व के विषय पर। श्रमिक भाइयों, औद्योगिक विकास किसी भी देश की प्रगति का आधार होता है। कारखानों में काम करने वाले श्रमिक अपनी मेहनत और लगन से उत्पादन को नई ऊंचाइयों तक

छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। ऐसे में सुरक्षा उपकरण यानी सेफ्टी इक्विपमेंट्स श्रमिकों के लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं। मित्रों, सुरक्षा उपकरण केवल नियमों का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये जीवन की रक्षा करने

जैसे उपकरण हमारे कामगारों को दुर्घटना से बचाने में सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर निर्माण कार्य या भारी मशीनों वाले क्षेत्रों में हेलमेट सर को चोट से बचाता है, सेफ्टी सूज पैरों में भारी वस्तुओं या बिजली के खतरे से सुरक्षित रखता है, वहीं रसायनों के संपर्क में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए मास्क और ग्लव्स बेहद जरूरी होते हैं। तेज आवाज में वातावरण में ईयर प्लग सुनने की क्षमता को सुरक्षित रखता है। साथियों, अक्सर देखा जाता है कि कुछ कर्मचारी जल्दीबाजी या लापरवाही में सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नहीं करते, लेकिन याद रखिए, सुरक्षा में ही समझदारी है। एक छोटा सा सुरक्षा उपाय किसी भी बड़े नुकसान को टाल सकता है। कारखानों में सुरक्षा उपकरणों के

के साथ साथ सुरक्षा प्रशिक्षण भी बहुत जरूरी है। कर्मचारियों को समय समय पर ये बताया जाना चाहिए कि उपकरणों का सही उपयोग कैसे करें और आपातकालीन स्थिति में कैसे क्या कदम उठाया जाए। हर उद्योग और हर संस्था की जिम्मेदारी है कि वह अपने कर्मचारियों को सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराए। श्रमिक मित्रों, सुरक्षित कर्मचारी ही किसी उद्योग की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। जब श्रमिक सुरक्षित महसूस करते हैं तब उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और कार्यक्षमता पर भी इसका बेहतर प्रभाव होता है। इससे उत्पादन में वृद्धि होती है और उद्योग की प्रगति सुनिश्चित होती है। आइए हम सभी ये संकल्प लें कि चाहे कारखाना हो या कोई कार्यस्थल, सुरक्षा नियमों का पालन अवश्य करेंगे और सुरक्षा उपकरणों का नियमित उपयोग भी करेंगे, क्योंकि सुरक्षा अपनाइए और जीवन बचाइए, ये एक मूल मंत्र है। श्रोता मित्रों, इन बातों के बाद हम कार्यक्रम को जारी रखते हुए श्री रविन्द्रनाथ चौबे की एक वार्ता सुनवाते हैं, जिसका विषय है वैश्विक शांति एवं प्रगति का महामंत्र,

वैश्विक प्रगति का महामंत्र, मानव एकजुटता का सरल मार्ग। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दुनिया में हो रहे विकास, खासकर औद्योगिक विकास के कारण बढ़ रहे संपदा के साथ साथ विषमता, प्रदूषण और विभिन्न प्रकार के गरीबी के दुष्प्रभावों को अमानवीय स्वरूप को देखकर सन 2020 सन में मुख्य रूप से 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल यानी सहस्राब्दी विकास लक्ष्य निर्धारित किया। वो इस प्रकार से है, अत्यधिक यानी मारक गरीबी और भूख को निर्मूल करना, सभी के लिए विश्व स्तर पर प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, तीसरा समाज में लैंगिक समानता लाना तथा महिलाओं को सक्षम और शक्तिशाली बनाना, चौथा शिशु मृत्यु दर को घटाना, पांचवा मातृ स्वास्थ्य को सुधारना, छठवां मलेरिया, एड्स आदि खतरनाक बीमारियों को खत्म करने के लिए उपाय करना, सातवां पर्यावरण सस्टेनेबिलिटी को सुनिश्चित करना, आठवां विकास के लिए विश्व स्तरीय पार्टनरशिप विकसित करना, जिसमें मुख्य रूप से अत्यधिक मारक गरीबी और भूख की समाप्ति, लैंगिक विषमता तथा बढ़ रहे प्रदूषण के दुष्प्रभावों से उत्पन्न महासंकट को चिन्हित किया गया। बाद में 2005 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने अपने प्रस्ताव 60/209 के द्वारा 22 दिसंबर 2005 को मानव एकजुटता को एक बुनियादी वैश्विक मूल के रूप में मान्यता प्रदान किया और प्रस्ताव 67/265 के द्वारा सॉलिडिटी फंड की स्थापना किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के विचारशील नीति निर्माताओं ने दुनिया में हो रहे अब तक के विकास और विकास पद्धति का अवलोकन करने के बाद यह पाया कि दुनिया में टेक्नोलॉजी के प्रयोग तथा प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से जो विकास हो रहा है और जो संपदा का निर्माण हो रहा है उसका लाभ सबको नहीं मिल रहा है, इसीलिए विषमता की खाई बढ़ती जा रही है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने विकास की धारा को न्यायपूर्ण बनाने के उद्देश्य से सभी देशों के समक्ष एक यथार्थ लेकिन सकारात्मक लक्ष्य निर्धारित किया, जिसे सहस्राब्दी विकास लक्ष्य के रूप में घोषित किया गया है। अनुभवों के आलोक में यह महसूस किया गया कि इन लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए मानव एकजुटता या मानवीय एकात्मकता को एक बड़े औजार के रूप में प्रयोग कर उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। हमारे मनीषियों, कवियों और समाज सुधारकों ने मानव एकजुटता को हमेशा महत्व दिया, इसलिए भारत के विचारकों ने अनुभवों के आधार पर कहा है कि संघे शक्ति कलयुगे, यानी कलयुग में संघ की शक्ति होती है। मानव जाति के इतिहास में चाहे कृषि क्रांति हो या औद्योगिक क्रांति हो, सभी में मानवीय एकजुटता को सफल बनाया है। यह एक प्रश्न उठना स्वभाव

0: कि जब हम आप मानते हैं कि कलयुग यानी टेक्नोलॉजी का युग है तो फिर संघ की क्या जरूरत है। भारतीय मनीषा यह समझती और मानती है कि मानवीय प्रयास परिश्रम तकनीक जो सामान्य मनुष्य के सहज नियंत्रण में रहता है वो हानिकारक नहीं होता है, लेकिन जो सहज नियंत्रण के बाहर हो जाता है उसे शोषण और विषमता बढ़ने लगती है। मनुष्य जब मशीनों और टेक्नोलॉजी का गुलाम बन जाता है तब शोषण और अन्याय और अमानवीयता स्थापित होने लगती है। तकनीक पर भारी उद्योग व्यवस्थाएं अपनी विशालता के कारण तथा आर्थिक शक्ति कारण बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं और तंत्र विकसित कर लेते हैं और सामान्य मनुष्य का शोषण करने लगते हैं। इस प्रकार सामान्य मनुष्य के नियंत्रण के बाहर हो जाते हैं। इसीलिए उन्हें मानवीय बनाते रहने का प्रयास मानवीय एकजुटता का लिए बहुत जरूर प्रयास है। मानवीय एकजुटता रूपी सच्चे प्रयास से हम व्यवस्था रूपी पथरीले चट्टान को पिघलाकर राह बना देते हैं। जैसा कि राष्ट्रकवि दिनकर जी कहते हैं, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। दुनिया के सभी प्राचीन सभ्यताओं में हम मानव एकजुटता के प्रयास और पुरुषार्थ को देखते हैं, चाहे भारत हो या चीन हो या ग्रीक हो। चीन में भी मानव एकजुटता का उदाहरण देखने को मिलता है जब लाखों मनुष्य एकजुट होकर चीन की दीवार बना देते हैं और आधुनिक चीन को विकसित करने की तकनीक के साथ सबसे बड़ा मंत्र मानव एकजुटता ही है। कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मानव एकजुटता मनुष्य की बुद्धि और उसके साथ साथ व्यवस्था का तंत्र बनाया जाना आवश्यक होता है। हमारा अस्तित्व एक प्रकार से संतुलन के अनुसार चलायमान रहता है, इसलिए जब तंत्र और व्यवस्था का जोर चलता है तो विशिष्ट वर्ग सृजित करने लगती है। इसलिए विषमता आधारित अमानवीय तंत्र स्थापित होते रहता है। इसलिए अस्तित्व के विभिन्न घटकों द्वारा मानव एकजुटता की धारा प्रभावकारी बनाकर कठोर प्रयास के द्वारा विषमता आधारित तंत्र और सोच को तोड़कर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की क्रांति किया जाने लगता है। इसलिए मनुष्य जाति के इतिहास के साथ साथ भविष्य में भी मानव एकजुटता एक महामंत्र के रूप में कल्याणकारी रहेगा। अब हम आते हैं शीर्षक पर, वैश्विक प्रगति का महामंत्र मानव एकजुटता का सरल मार्ग। यहाँ वैश्विक प्रगति को समझना जरूरी है। वैश्विक प्रगति तभी होती है जब विश्व का गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में प्रगति हो। यह प्रगति तभी मानी जाएगी जब मनुष्य सुखी हो। एक तो व्यक्तिगत मेहनत और पुरुषार्थ से हम सुखी होते हैं, जबकि दूसरा उपाय है सामूहिक और व्यवस्थागत प्रयास। सामूहिक प्रयास ऐसा महामंत्र है कि वर्षों का काम एक दिन में संपन्न हो जाता है। कवि डॉक्टर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता बहुत प्रासंगिक है कि दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम दुख को तोड़ दो, केवल अपने सपने औरों के सपनों से जोड़ दो। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से मानव एकजुटता का सबसे बड़ा संदेश देता है। दुख मनुष्य को कई तरह से तोड़ता है, शारीरिक मानसिक पारिवारिक तौर पर। फिर एक दूसरे कवि राम नरेश त्रिपाठी कहते हैं कि कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुजस है, मुझको समर्थ कर बस कष्ट के सहन में। जहाँ एक तरफ कठिनाइयों दुखों के दौर में परिवार की जिम्मेवारी निभाने में एक आत्मीय शक्ति का आविर्भाव होता है जिसके इर्द गिर्द मानी एकजुटता स्वतः घटित होने लगती है। आज के आधुनिक दौर में जहाँ मशीन तकनीक वैज्ञानिक उपकरणों से सुख साधनों की व्यवस्था हो जाती है, वहीं एक मानव एकजुटता से पूंजी निर्माण होने के साथ साथ मशीन और तकनीक का विकल्प भी निर्मित हो जाता है। इस दुनिया का सत्य गति है, सब कुछ गतिशील है, एक निरंतर गति है और प्रगति है, किसी लक्ष्य को पाने की विशेष गति। मनुष्य मात्र का लक्ष्य है सत्यम शिवम सुंदरम सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। मनुष्य को और समाज को अपने गुणों और शक्तियों और आदर्शों के अनुरूप प्रगति के मार्ग पर ले चलना। जैसे परमात्मा अनंत है उसी प्रकार प्रगति भी अनंत है, इसलिए वैश्विक प्रगति का मार्ग मनुष्य और उसकी एकजुटता ही है। एकजुटता सरल है क्योंकि इसमें पूंजी टेक्नोलॉजी और साधनों की जरूरत नहीं पड़ती है। मनुष्य का मनुष्य लौहा स्वाभाविक है, सहज है, क्योंकि सामाजिक प्राणी होने के कारण एकजुटता की संभावना स्वाभाविक रूप में बनी रहती है। पिछले कई दशकों से मानव एकजुटता एक बहुत सकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। जैसे सामाजिक आर्थिक विकास के क्षेत्र में सामाजिक न्याय स्थापित हो रहा है, यह देशों के बीच और देशों के बाहर भी स्थापित हो रहा है। दूसरी ओर गरीबी दूर करने काफी प्रगति हुई है। चुनौतियों का सामना, इस लक्ष्य की काफी प्रगति हुई है और हो रही है। जलवायु परिवर्तन सभी देश के सरकारों के लिए सकारात्मक प्रभाव लाया है। कार्बन कम करने में बहुत प्रगति हो रही है। नेट जीरो की ओर बढ़ रहा है विश्व। स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए मलेरिया का संकट दूर हो रहा है। शांति और सद्भाव का माहौल बना है। भारत के प्रयासों को बल मिल रहा है। मानवाधिकार के क्षेत्र में विश्व स्तर पर प्रगति हुई है। सामूहिक कार्रवाई के तहत साझा आंदोलन विकसित हो रहा है। नवाचार के प्रति दृष्टिकोण बहुत व्यापक हो रहा है। समानता और समावेशन बढ़ रहा है। समावेशन और सर्वसमावेशी संस्कृति एक अम्ब्रेला बनकर विश्व को गाइड कर रहा है। मनुष्य में जो चैतन्य शक्ति है ऊर्ध्वगामी है, जो कि मानव एकजुटता क्षैतिज शक्ति का पुंज है। इस प्रकार से क्षैतिज शक्ति और ऊर्ध्वगामी शक्ति के संयोग से संपूर्ण विकास सुनिश्चित किया जाना ही लोकतंत्र के लिए जरूरी है। लेकिन हर हाल में, यानी कितना भी बौद्धिक यांत्रिक और तकनीकी विकास हो, हर हाल में मानव एकजुटता का क्षैतिज विकास ही आवश्यक है, अपरिहार्य है, और इसीलिए सर्वदा महत्वपूर्ण है और रहेगा।
1: वैश्विक शांति एवं प्रगति का महामंत्र, मानव एकजुटता का सरल मार्ग, इस विषय पर अभी आप श्रोता श्री रविन्द्रनाथ चौबे से वार्ता सुन रहे थे। और अब हम बात करेंगे देश की एक ऐसी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना की जिसने करोड़ों लोगों के जीवन में उम्मीद की नई किरण जगाई है। जी हाँ, यह है आयुष्मान भारत योजना। साथियों, कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, लेकिन जब कोई गंभीर बीमारी परिवार में आती है तो इलाज का खर्च कई बार लोगों की जो पूरी जमा पूंजी होती है उसे खत्म कर देता है। ऐसे समय में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए आयुष्मान भारत योजना एक मजबूत सहारा बनकर सामने आई है। भारत सरकार वर्ष 2018 में इसकी शुरुआत की थी। दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं में से ये एक मानी जाती है। इसका उद्देश्य है हर जरूरतमंद व्यक्ति तक बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। श्रोताओ, आयुष्मान भारत योजना मुख्य रूप से दो भागों में काम करती है। पहला, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है, और दूसरा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJAY, जिसके अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें परिवार के सदस्यों की संख्या या उम्र की कोई सीमा नहीं है, यानी परिवार का कोई भी सदस्य इस योजना का लाभ ले सकता है। इलाज सरकारी ही नहीं बल्कि योजना से जुड़े निजी अस्पतालों में भी कराया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि इस योजना का लाभ किन लोगों को मिलेगा? तो दोस्तों, इसके लिए सरकार ने सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना यानी SECC के आधार पर पात्र परिवारों की सूची तैयार की है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीब तथा कमजोर वर्गों को

कई राज्यों में बुजुर्ग और विशेष वर्गों को भी अतिरिक्त लाभ दिया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति पात्र है तो उसे आयुष्मान कार्ड बनवाना होता है। इस कार्ड के माध्यम से वह देश के किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में इलाज करा सकता है। योजना पूरी तरह से कैशलेस और पेपरलेस होती है, यानी मरीज को इलाज के दौरान पैसे जमा करने की चिंता नहीं करनी पड़ती है। प्रिय श्रोताओं, इस योजना के अंतर्गत कई प्रकार के गंभीर बीमारियों का इलाज किया जाता है, जैसे हृदय रोग, कैंसर, किडनी की बीमारी, ऑपरेशन, दुर्घटना उपचार और अन्य कई प्रकार की जटिल बीमारियां। इलाज के साथ साथ दवाइयां, जांच, भर्ती होने से पहले से लेकर उसके बाद तक का खर्च भी इस योजना में शामिल किया गया है। देश भर में आज हजारों अस्पताल में इस योजना से जुड़कर करोड़ों लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। हाल के अध्ययनों से ये सामने आया है कि इस योजना ने गरीब परिवारों को इलाज का आर्थिक बोझ काफी हद तक कम कर दिया है। हालांकि हमें ये समझना होगा कि किसी भी योजना की सफलता तभी संभव है जब लोग जागरूक हों। आज भी कई ऐसे पात्र परिवार हैं जिन्हें पता नहीं है कि वे आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने आसपास के लोगों को इस योजना की जानकारी जरूर दें। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका नाम योजना में है या नहीं, तो नजदीकी CSC केंद्र या फिर सरकारी अस्पताल या आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट है pmjay.gov.in। और अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूं कि स्वस्थ नागरिक ही मजबूत राष्ट्र की पहचान होते हैं। आयुष्मान भारत योजना केवल एक स्वास्थ्य योजना नहीं, बल्कि करोड़ों परिवार के लिए सुरक्षा और विश्वास का माध्यम है। आइए हम सभी इस योजना की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और एक स्वस्थ भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएं। इन बातों के बाद अब आइए हम एक फिल्मी गीत के माध्यम से आपके मनोरंजन का ख्याल रखते हुए इस कार्यक्रम का समापन करना चाहेंगे। फिल्म का नाम है पापा कहते हैं। जावेद अख्तर के इस गीत को संगीत से सवारा है राजेश रोशन ने और स्वर दिया है उदित नारायण ने।

कार्यक्रम कल कारखाने अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 6 बजने ही वाले हैं। अगली प्रस्तुति होगी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे ठीक शाम 6 बजे हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी है। अब आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग को न्यूनतम करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। 30 जून तक चलने वाले अभियान के लिए 1600 से अधिक दल गठित किए गए हैं। इसके अलावा उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करने वाले जिलों के लिए 500 दल बनाए गए हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल निपोन स्टील इंडिया नामक एक निजी कंपनी के निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये उपलब्धि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योग प्रबंधित परिणाम उन्मुख संस्थानों में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
1: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहाँ से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है कि इनका निर्माण भारत में होना चाहिए और इनकी तकनीक का विकास स्वदेशी स्तर पर होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान अब भी जारी है। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ नाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले म्यांमार के राष्ट्रपति बिहार में गया गए, जहां महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राजस्व आसूचना निदेशालय ने केरलम में मादक पदार्थों के खिलाफ समन्वित अभियान के अंतर्गत 24 किलो से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए हैं। चक्रव्यूह अभियान के अंतर्गत कोच्चि, मलप्पुरम और तिरुवनंतपुरम में मेथक्वालोन, मेथमफेटामाइन और हशीश का तेल सहित कई मादक पदार्थ जब्त किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल पर किया जाएगा। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ से उंग जाए और किम बॉन हो को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:10 हो चुके हैं और अब आइए सुनते हैं झारखंड के लोकगीत।
1: झारखंड के लोकगीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को अपने रेडियो दोस्त सुरेंद्र टूडू का प्यार भरा जोहार। श्रोता मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उरांव लोकगीत और कलाकार हैं जॉन पीटर एक का। तो आइए सुनते हैं।

0: बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोता मित्रों, अभी आप सुन रहे थे जॉन पीटर एक्का व साथियों की आवाज में उरांव लोकगीत। इसी के साथ ही हमारा ये झारखंड के लोकगीतों का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। मुझे आज्ञा दीजिए, जोहार।
3: झारखंड के लोकगीत अभी ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM बैंड के 102.4 MHz पर। शाम के 6:20 होने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: स्नातकाः व्यावसायिकनेतृत्वस्य राष्ट्रसेवायाः च सर्वोच्चमानकान् यथावत् प्रवर्तितुम् अकारिताः।
1: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्वः प्रातः 11 वादने आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे जनैः साकं स्वविचारान् प्रकटयिष्यति। कार्यक्रमोऽयं मासिक रेडियो कार्यक्रमस्य 34th प्रभागः वर्तते। अयं कार्यक्रमः आकाशवाणी दूरदर्शनयोः अन्तर्जालीय पटले प्रसारयिष्यते। एतदतिरिच्य कार्यक्रमोऽयं आकाशवाण्याः अन्तर्जालीय वेबफलकं समेत्य न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप इति तन्त्रांशे अपि उपलब्धः भविष्यति। प्रमुखः रक्षाध्यक्षः जनरल अनिल चौहानः अद्य नवदिल्लीस्थे राष्ट्रिय समर स्मारके सैन्यत्रयेण प्रदत्तेन गार्ड ऑफ ऑनर इति सम्मानेन सह सैन्यसेवाभ्यः निवृत्तिं स्व्यकरोत्। अयं समारोहः देशस्य सर्वोच्च सैन्याधिकारी रूपेण तदीय विशिष्ट कार्यकालस्य समापनस्य प्रतीकः अवर्तत। समर स्मारके पुष्पाञ्जलिं समर्प्य जनरल चौहानेन उक्तं यत् सैन्यत्रयस्य गार्ड ऑफ ऑनर इति सम्मानेन सह सेवानिवृत्तिः तस्मै अत्यन्तं सम्मानप्रदं वर्तते। जनरल अनिल चौहानः गतशताब्दस्य 81वें वर्षे भारतीय सेनायां सेवाम् अवाप्य 40 वर्षेषु देशसेवायां महत्वपूर्णपदेषु कार्यम् अकरोत्। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यः जनरल अनिल चौहानस्य स्थानं स्वीकरिष्यति। अमेरिकायाः रक्षामंत्री पीट हेग्सेथ इत्यसौ अवोचत् यत् यदि संधेः प्रयासाः विफलाः भविष्यन्ति चेत् अमेरिकायाः सेना ईरानं विरुध्य सैन्यकार्याचरणं विधातुं पूर्णरूपेण सन्नद्धा वर्तते। अल्पसंख्यक कार्यमंत्री किरेन रिजिजू अद्य सूचितवान् यत् प्रथमवारं भारतीय हज मिशन संस्थया हज समन्वयस्य संचारस्य च उत्कृष्टतायै सऊदी हज उमराह मंत्रालययोः प्रतिष्ठितौ लाबाट्यूम पुरस्कारौ प्राप्तौ। सामाजिक संचार माध्यमेन श्री रिजिजू अकथयत् यत् 26,000 वर्षस्य हज यात्रायाः मुख्य चरणस्य सफलता अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालयस्य भारतीय हज समित्याः सऊदी अरब देशे भारतीय राजदूतस्य नेतृत्वे भारतीय हज मिशन इत्यस्य जेद्दाह नगरस्य महाव्यवस्थापकस्य च मध्ये अविच्छिन्न समन्वयं प्रतिबिम्बयति। बैडमिंटन क्रीडायां सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट इति स्पर्धायां भारतस्य सात्विक साई राज रिंकी रेड्डी चिराग सेट्टी इत्यनयोः युगलं निर्णायक चक्रे प्रविष्टम्। उपांत्य चक्रे भारतीय दलेन दक्षिण कोरिया दलं पराजितम्। महिलानां अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट क्रीडायां अद्य भारत इंग्लैंड दलयोः द्वितीया 20-20 स्पर्धा भविष्यति। इयं स्पर्धा ब्रिस्टल नगरे भविष्यति। भारतीय समयानुसारेण सायं 7 वादने स्पर्धा आरप्स्यते।

संस्कृत में समाचार का प्रसारण अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 6:30 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान भाइयों को अपने रेडियो दोस्त सुरेंद्र टूडू का प्यार भरा जोहार। श्रोता मित्रों, आज के कार्यक्रम में है बहुत कुछ, जिसमें सबसे पहले हम चर्चा में बातें करेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। इसके बाद फिर एक चर्चा में आपको हम जानकारी देने वाले हैं हरा चारा की खेती के बारे में। फिर होगी भेंटवार्ता, जिसमें हमारे आज के मेहमान होंगे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के HOD डॉक्टर संयत मिश्रा जी, जिनसे हम जानेंगे आम और लीची की देखभाल कैसे की जाए। तो श्रोता मित्रों, कार्यक्रम में इतना कुछ, लेकिन कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनिए जरूरी संदेश।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
0: किसान भाइयों, आपका फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम कृषि जगत में। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की चर्चा से, और चर्चा का विषय है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एक केंद्रीय उपयोजना है। इसका मुख्य उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र का औपचारिक रूप देना, सूक्ष्म उद्यमों को संस्थागत वित्त यानी कि ऋण तक पहुंच प्रदान करना, और साथ ही जलीय कृषि बीमा को बढ़ावा देना है। इस योजना की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करें तो सबसे पहला तो बीमा प्रीमियम पर प्रोत्साहन। इसके अंतर्गत मछली पालन फार्म में जलीय कृषि बीमा खरीदने पर प्रीमियम का 40% तक प्रोत्साहन दिया जाता है। ये राशि अधिकतम 25,000 प्रति हेक्टेयर जल क्षेत्र तक सीमित है। इसके बाद आता है ऋण पर सहायता। इसके अंतर्गत संस्थागत ऋण लेने वाले पात्र आवेदकों और सूक्ष्म उद्यमियों को कार्य निष्पादन अनुदान प्रदान किया जाता है। फिर आता है पोर्टल पंजीकरण। इसके तहत योजना का लाभ उठाने के लिए नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि NFDP पर पंजीकरण करना अनिवार्य है। अगला है कुल बजट, जिसमें इस योजना को 6000 करोड़ से अधिक के निवेश के साथ वित्त वर्ष 2023-24 से 2026-27 तक की अवधि के लिए लागू किया गया है। अब आइए जानते हैं इसमें आवेदन कैसे करें। पात्र लाभार्थी जो मत्स्य पालन से जुड़े हैं, वे अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए इंडियन बैंक PMMKSSY डिटेल्स का भी अवलोकन कर सकते हैं।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: किसान भाइयों, आपका फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम कृषि जगत में। चलिए अगले चर्चा में हम बातें करते हैं हरे चारे की खेती के बारे में। किसान भाइयों, पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य और दूध उत्पादन के लिए हरा चारा सबसे पौष्टिक और सस्ता आहार है। इसे साल भर उगाने के लिए मौसम के अनुसार ज्वार, बाजरा, मक्का और नेपियर, जिसे हाथी घास भी कहते हैं, 15 जैसी फसलें लगाई जाती है। एक वयस्क पशु को रोजाना लगभग 20 किलो हरा चारा खिलाना चाहिए। आइए जानें हरे चारे की खेती से जुड़े मुख्य जानकारी। पहला तो है मौसम के अनुसार प्रमुख चारा फसलें, जिसके तहत गर्मियों के लिए ज्वार, मक्का और लोबिया, इसके बाद बारिश में खरीफ के लिए बाजरा, नेपियर, हाइब्रिड और सूडन घास, इसके अलावा सर्दियों जिसमें रबी के लिए बरसीम और जाई। अगला आता है खेत की तैयारी और बुआई कैसे की जाए। सबसे पहले तो है खेत की बात करें तो उसमें अच्छे जल निकास वाली बालुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। इसके बाद आती है जुताई। इसमें खेत की 2 से 3 बार जुताई करके पाटा लगाएं और मिट्टी को भुरभुरा बना लें। इसके बाद आता है बीज की मात्रा। इसके तहत सामान्य फसलों के लिए 10 से 15 किलो बीज प्रति एकड़ पर्याप्त होता है। इसे कतारों में सीड ड्रिल बोना सबसे अच्छा रहता है। इसके बाद बात करते हैं सिंचाई और खाद। सिंचाई में बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। इसके बाद गर्मी में 15 से 20 दिन के अंतराल पर और सर्दियों के आवश्यकता अनुसार पानी देना चाहिए। इसके बाद खादों में बात करें तो बुआई के समय सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ नत्रजन यानी कि यूरिया और फास्फोरस का इस्तेमाल करें। अगला है कटाई का सही समय। चारे में पोषक तत्व यानी कि प्रोटीन बनाए रखने के लिए फसल में फूल आने से पहले या 50 से 55 दिन की अवस्था में कटाई कर ले। इसके तहत मल्टीकट बार बार काटने वाली किस्मों से साल भर में 4 से 6 कटाइयां तक प्राप्त की जा सकती है। हरा चारा उगाने के तरीके, उन्नत किस्मों और उनसे होने वाले मुनाफे के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप कृषि विभाग उत्तर भारत सरकार की हरा चारा दिशा निर्देश वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। तो श्रोता मित्रों, अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आज आपको हम भेंटवार्ता में आम और लीची से की देखभाल कैसे की जाए इस पर जानकारी देते हैं। हमारे जो मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर संयत मिश्रा। तो आइए जानते हैं आम और लीची की देखभाल कैसे की जाए इस बारे में महत्वपूर्ण भेंटवार्ता।
2: नमस्कार श्रोता मित्रों, आज हमारे भेंटवार्ता कार्यक्रम में हमारे जो मेहमान हैं वो हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के HOD डॉक्टर संयत मिश्रा जी, और इनसे जानेंगे आम और लीची की देखभाल के बारे में। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कृषि जगत कार्यक्रम में स्वागत है।
3: धन्यवाद
2: जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि अभी जैसे आम और लीची का सीजन चल रहा है, मार्केट में सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, तो इसका उपज कैसे किया जाए?
3: उपज से पहले मैं थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि मार्केट में आपको अभी हर तरह का आम मिल रहा है, जो कि बाद में आना चाहिए, चाहे लंगड़ा हो, दशहरी हो, वो भी अभी मिल रहा है, तो वो कार्बाइड से पकाया होता है जनरली।
2: अच्छा,
3: अभी हम लोगों का लंगड़ा जो है, हम लोग जून में, अच्छा अगर टेस्ट चाहिए तो कम से कम 10 जून के बाद तोड़ते, नहीं तो 15 जून के बाद।
2: जी जी,
3: मालदा। और दशहरी भी उसी टाइम पे तोड़ा जाता है, थोड़ा और लेट हो जाए, उसके बाद फिर आम्रपाली मल्लिका और लेट तोड़ते हैं, लेकिन अभी आपको हर तरह का आम मार्केट में मिल जाता है।
2: जी,
3: जो लेट वैरायटीज है वो मार्केट में मिल रहा है, तो उसको खाना थोड़ा हार्मफुल हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि कार्बाइड से पकाया होता है।
2: अच्छा अच्छा।
3: अभी जो आम आपको हमारे यहाँ पे मिलता है, अभी जर्दालू, बम्बैया, गुलाब खास, ये सब पकना हल्का हल्का शुरू हुआ है, तो ये मिलना शुरू हो गया है। हमारे बागान में भी जर्दालू, गुलाब खास, बम्बैया, ये सब थोड़ा सा बिकना शुरू हुआ है। लीची तो अभी खत्म होने पे है हम लोगों के यहाँ। बिहार से अभी आएगा, लेकिन लीची हम लोग यहाँ खत्म होने पे है। अब बारिश आ गई है, जिसका लीची अगर थोड़ा देर और रुक गया तो उसमें कीड़ा आ जाएगा। तो जिसका भी लीची है वो तुरंत उसको तोड़ ले, अभी भी कीड़ा आ चुका होगा
2: जी,
3: कीड़ा आ गया होगा काफी में, फिर भी अगर लीची है तो उसको तुरंत तोड़ के उसको वो
2: लेकिन
3: बाजार में
2: देखा
3: बेच
2: जाए तो
3: सकते
2: सर
3: हैं।
2: अभी ही सबसे ज्यादा मार्केट में लीची बिक रहा है।
3: जी हाँ, लीची आपका बाहर से बहुत आता है, मुजफ्फरपुर साइड से, इधर
2: अच्छा,
3: से, बहार से, वो सबसे थोड़ा लेट भी
2: तो
3: आता है।
2: ये खाने में किसी तरह का हानिकारक तो नहीं है ना सर, जिस
3: नहीं
2: तरह आप
3: नहीं नहीं
2: बता रहे थे कार्बाइड से आम को
3: आम
2: थोड़ा।
3: आम
2: अच्छा
3: आम आम में गड़बड़ है। लीची लीची में देख लीजिए कलर किया हुआ था वो पता चल जाता है आपको,
2: जी
3: अगर बहुत लाल दिख रहा है
2: हाँ
3: तो उसको आप पानी में डालेंगे तो पानी लाल हो जाएगा, तो वैसा आप देखेंगे तो उसमें

0: ध्यान रखना। बाकी लीची में कोई वैसी दिक्कत नहीं है, पकाने वाली दिक्कत नहीं है।
1: जी। अगर सर कोई किसान भाई इसका व्यवसाय कर रहे हैं, इसकी खेती भी कर रहे हैं, तो उनकी देखभाल के लिए वो क्या-क्या सावधानियां बरत सकते हैं?
0: कि पहले आम को लेते हैं। आम में होता है कि एक अभी जैसे आम, अब तो हार्वेस्टिंग पे मैं शुरू से बोलता हूँ, एक अगस्त में आपको एक बार उसमें 15 अगस्त के 5-7 दिन आगे पीछे एक बार इंसेक्टिसाइड, किसी भी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना पड़ता है। फिर उसके 15 दिन के अंतराल पे फिर से वो स्प्रे करना पड़ता है, ताकि उससे शूट गॉल एक हमारे यहाँ बाद में आता है तो वो कंट्रोल रहता है। अगर एक बार शूट गॉल आना शुरू हो गया तो उसके बाद स्प्रे करेंगे तो वो गॉल्स बना लेता है उसके अंदर, फिर वो जाता नहीं है दवा, तो
1: अच्छा
0: तब स्प्रे करना चाहिए। फिर एक बार आपका जब मंजर निकलने लगता है, या मंजर से जस्ट पहले आप सल्फर का और एक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कीजिए, फिर जब मंजर निकल आता है तब भी एक इंसेक्टिसाइड मारिए, और फिर जब फूल खिल जाता है तब सल्फर का स्प्रे कीजिए। इंसेक्टिसाइड थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि फूल खिलने के बाद, मंजर खिलने के बाद जो इसमें पॉलिनेशन होता है, जो फ्रूट सेट होता है, वो हमारा जो वो घर की मक्खी होती है ना, हाउस फ्लाई,
1: जी
0: उनसे उनसे होता है। तो अगर हम उस वक्त इंसेक्टिसाइड डालते हैं तो वो मक्खियां मर जाएंगी या भाग जाएंगी, तो आपका फ्रूट सेटिंग में प्रॉब्लम आएगा। फिर एक दवा का स्प्रे जब आपका आम में फल बन जाता है और मटर के दाने से भी थोड़ा छोटा रहे, तो उस वक्त एक स्प्रे करना चाहिए, तो उससे वो आपका जो मधुआ रोग कहते हैं वो सब नहीं आता है।
1: अच्छा
0: हाँ,
1: अच्छा सर, ये देखा जाता है कि लीची जो बाजार में आते हैं वो पत्तों के साथ आते हैं, ये
0: जी हाँ,
1: पत्ते के साथ आने का क्या कारण है?
0: पत्ते के साथ आता है। एक तो लेने वाले को अच्छा लगता है कि मैं एकदम ताजा लीची ले रहा हूँ, मार्केटिंग का टेक्निक है। और आप सिंगल लीची जब बेचेंगे तो उसको लीची, आप अगर एक एक लीची निकालिएगा ना,
1: जी
0: तो उसका स्किन जो पील है उसका, वो उखड़ने का होता तो जल्दी वो
1: खराब हो जाता।
0: आपका खराब हो जाएगा,
1: अच्छा
0: तो थोड़ा सा इसका शेल्फ लाइफ भी इससे बढ़ता है, तो उसके साथ
1: सर,
0: इसको
1: पत्तों के
0: बेचा
1: साथ
0: जाता
1: तोड़ा जाता है तो उसके पौधों पे या पेड़ पे कोई फर्क तो नहीं पड़ता,
0: है।
1: उसको
0: नहीं,
1: कोई नुकसान?
0: पत्तों के साथ ही तोड़ना है आपको, उसकी टहनियां भी थोड़ी थोड़ी तोड़नी है। इनकेस
1: अच्छा
0: लीची आपके पेड़ पे उस साल नहीं आती है,
1: जी
0: तब भी आपको टहनियां अपने आप तोड़नी होंगी। लीची फल तोड़ते हो, टहनियां तोड़ रही, क्योंकि अगर लीची नहीं आती तब भी वो टहनियां तोड़नी है, ताकि नया पत्ता आए, नई टहनियां आए, तो उसी में आपका लीची आएगा। और जब भी नया पत्ता आता है ना
1: जी
0: लीची में, तो उसमें एक ओमाइट करके आता है, माइट्स के लिए। आप कोई भी ओमाइट अच्छा उसमें करता है, नहीं तो कोई भी इंसेक्टिसाइड जो कि माइट्स के लिए दिया है उसका स्प्रे बहुत जरूरी होता है लीची में, नहीं तो वो लाल लाल देखेंगे पत्ता सिकुड़ जाएगा, पूरा लाल हो जाता है, सूखा सूखा जैसा हो जाएगा, तो पूरा माइट के कारण होता है।
1: अच्छा
0: तो लीची में ये ध्यान रखना पड़ता है उसकी, आपका हार्वेस्टिंग के टाइम
1: जी
0: टहनियां जरूर तोड़नी है, लीची नहीं भी आए तब भी टहनियां तोड़नी है।
1: अच्छा ठीक।
0: जी
1: सर, ये अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि
0: जी हाँ,
1: बाजार में जिस तरह से आपने कहा कि कई तरह के आम आ रहे हैं, तो आम जो जनता है वो कैसे जान पाए कि ये आम उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है या फिर हानिकारक है, वो उसकी देख
0: देखिए
1: मतलब
0: आम,
1: कैसे?
0: हाँ मतलब अजंता का थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा कि भाई अब अगर हमको आम आ रहा है, आपको शुरू से ही मैं देख रहा हूँ पिछले 1 महीने से लंगड़ा मिल रहा है,
1: जी
0: तो लंगड़ा अब इतने पहले से नहीं आया था, वो भी पका हुआ,
1: जी
0: आप खाएंगे तो आपको वो टेस्ट पे नहीं आएगा,
1: जी
0: तो मतलब वो पकाया गया है, उसको साइज पे तोड़ लिया गया है, उसको पकाया है।
1: अच्छा
0: पकाने का तरीका ऐसा नहीं कि वो लोग जानबूझ के कार्बाइड डालते हैं, उनको पता नहीं, वो लोग खुद भी वही आम खाते हैं,
1: अच्छा
0: लेकिन कार्बाइड हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है।
1: जी।
0: तो जो सीजन जिस टाइम पे जो आम मिलता है ना, आप उस टाइम पे लीजिए। अब लंगड़ा आप 10-15 जून के बाद लीजिएगा तो उसको कोई कार्बाइड से नहीं पकाएगा,
1: अच्छा
0: मार्केट में
1: जी।
0: उस वक्त लंगड़ा खरीदिएगा तो आप आराम से खा सकते हैं, क्योंकि उसको पकाने की जरूरत नहीं है, और टेस्ट भी बेटर रहता है। आम्रपाली मलका हम लोग यहाँ पे अपना 25 जून के बाद तोड़ते हैं,
1: अच्छा
0: उसके आसपास तोड़ते हैं,
1: जी
0: तो वही
1: जी
0: टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखें कि कौन सा। अब अर्ली में आपको अभी अब जरदालू, बम्बई या गुलाब का सब आएगा,
1: जी जी
0: आना
1: सर।
0: शुरू हो, हमारे आना शुरू हो चुका है, तो मार्केट में भी होगा, तो
1: अच्छा
0: वैसा लिया जा सकता है। तो थोड़ा सा टाइम का देखेंगे तो
1: जी
0: थोड़ा सा
1: जी
0: अवेयरनेस चाहिए।
1: तो डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी, साथ ही हमारे जो आमजन हैं और जो इस आम की खेती या फिर ये लीची का बाजार खेती करना चाहते हैं, उनके लिए भी इतनी अच्छी बातें बताई आपने, हमारे लिए इतना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका, और

श्रोता मित्रों, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संयत मिश्रा जी को, जो कि हमें आम और लीची की देखभाल कैसे की जाए इस पर महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे। तो किसान भाइयों, आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और मनोरंजन की दुनिया में आपको लेकर चलते हैं और आपको सुनाते हैं संथाली लोकगीत। कलाकार हैं रीना हंसदा व साथी। इस गीत में किसान के कार्य को दर्शाया गया है, जैसे खेती में प्रयोग होने वाले औजारों में हल, कुदाल, टोकरी, गैंता आदि का उपयोग किया जाता है। कड़ी धूप में हल जोतकर मिट्टी को एक नया रूप दिया जाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है और खेती का काम समाप्त होने के बाद खुशी से मन झूम उठता है तथा फसलों की अच्छी पैदावार से मन नाचने गाने लगता है।

श्रोता मित्रों, अभी आप सुन रहे थे रीना हंसदा व साथियों की आवाज में संताली लोकगीत। आइए अब जानते हैं बाजार भाव। कृषि उत्पादन बाजार समिति जमशेदपुर द्वारा बाजार भाव इस प्रकार है। चावल में उसना उत्तम किस्म का भाव रहा 4,550 से 5,550 रुपए प्रति क्विंटल, मध्यम का 3,410 से 3,760 रुपए प्रति क्विंटल, अन्य का 2,860 से 3,370 रुपए प्रति क्विंटल। आवरा उत्तम किस्म का भाव रहा 5,670 से 6,250 रुपये, मध्यम का 3,410 से 4,020 और अन्य का 3,210 से 3,420 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं दालों में अरहर का भाव रहा 11,010 से 13,010, वहीं मोटा दाल का भाव रहा 7,330 रुपये से 9,000 रुपये प्रति क्विंटल। गेहूं में लाल रंग वाली गेहूं का भाव रहा 3,500 से 3,900, वहीं सफ़ेद रंग वाली गेहूं का भाव रहा 3,400 से 3,700 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं आटे का भाव रहा 3,200 रुपये प्रति क्विंटल। मैदे की बात करें तो मैदा का भाव रहा 3,700 से 3,900 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं सूजी का भाव रहा 3,700 से 4,000 रुपये प्रति क्विंटल। गुड़ का भाव रहा 4,000 से 4,600 रुपये प्रति क्विंटल। चीनी का भाव रहा 4,300 से 4,500 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं खीरा का भाव रहा 3,000 से 3,300 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं नींबू प्रति पीस का भाव रहा 8 रुपये। मौसमी का भाव रहा 1,800 से 2,000 20 किलोग्राम। संतरा का भाव रहा 90 रुपये प्रति क्विंटल। अनानास का भाव रहा, श्रोता मित्रों आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और चलते चलते हम आपको जानकारी देते हैं बदलते मौसम में किसानों को अपनी सेहत का किस तरह ध्यान रखना चाहिए। श्रोताओं, बदलते मौसम में किसानों को अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कड़ी धूप, बारिश या ठंड से बचने के लिए उचित कपड़े पहने, शरीर में पानी की कमी ना होने दें और मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए पौष्टिक आहार का भी सेवन करें। श्रोताओं, बदलते मौसम में किसान भाइयों को किन किन बातों का ख्याल रखना है, आइए बातें करते हैं। सबसे पहला तो है वे हाइड्रेट रहें। खेतों में काम करते समय पसीना अधिक निकलता है, इसलिए हर थोड़ी देर में पानी पीते रहें। शरीर में पानी की बिल्कुल भी कमी ना होने दें। इसके बाद आता है खान पान में बदलाव। अपनी डाइट में ताजे फल, हरी सब्जियां, मौसमी अनाज जैसे बाजरा, मक्का, चने आदि शामिल करें। बासी भोजन और बाहर के स्ट्रीट फूड से परहेज करें। इसके बाद आता है उचित परिधान पहने। मौसम के अनुसार कपड़े पहने। तेज धूप में काम करते समय सिर पर सूती कपड़े या गमछे से ढक कर रखें। अगला है धूल मिट्टी से बचाव। खेत में जुताई या कटाई के दौरान उड़ने वाली धूल से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें। काम पूरा होने के बाद हाथ मुंह अच्छी तरह से साफ करें। इसके बाद है इम्यूनिटी बढ़ाएं। रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखने के लिए अदरक, शहद, नींबू, तुलसी और गिलोय का काढ़ा या गुनगुने पानी का सेवन जरूर करें। इसके बाद आता है पर्याप्त नींद। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें ताकि शरीर को नई ऊर्जा मिल सके। झारखंड या अपने स्थानीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी लक्षण जैसे वायरल बुखार, खांसी या शरीर दर्द दिखने पर तुरंत नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC या स्थानीय चिकित्सक से परामर्श लें। तो श्रोता मित्रों, इसी के साथ ही हमारा आज का ये कृषि जगत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। अपने रेडियो दोस्त सुरेंद्र टूडू को आज्ञा दीजिए। अंत में सभी को मेरा प्यार

0: कार्यक्रम कृषि जगत अभी आप सुन रहे थे
1: हम
0: केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:55 हो चुके हैं। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी रांची से, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार ठीक शाम 7 बजे। कृपया प्रतीक्षा करें।
2: कर्नाटका के एक दंपति सुपारी के रेशे से बनी कई यूनिक प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचा रहे हैं। कर्नाटका में शिवमोगा में ये दंपति हैं, श्रीमान सुरेश और उनकी पत्नी श्रीमती मैथिली। ये लोग सुपारी के रेशे से ट्रे, प्लेट और हैंडबैग से लेकर कई डेकोरेटिव चीजें बना रहे हैं। इसी रेशे से बनी चप्पलें भी आज खूब पसंद की जा रही है।

उनके प्रोडक्ट्स आज लंदन और यूरोप के दूसरे बाजारों तक में बिक रहे हैं। यही तो हमारे प्राकृतिक संसाधनों और पारंपरिक हुनर की खूबी है जो सबको पसंद आ रही है। भारत के इस पारंपरिक ज्ञान में दुनिया सस्टेनेबल फ्यूचर के रास्ते देख रही है। हमें खुद भी इस दिशा में ज्यादा से ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। हम खुद भी ऐसे स्वदेशी और लोकल प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और दूसरों को भी ये उपहार में दें। इससे हमारी पहचान भी मजबूत होगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और बड़ी संख्या में लोगों का भविष्य भी उज्जवल होगा।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा, देश में संविधान और पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही कराए जाते हैं चुनाव। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भोजपुरी, मैथिली और अंगिका जैसी भाषाओं के सम्मान पर दिया जोर। कहा, जिन जिलों में जनजातीय भाषा बोलने वाले नहीं, वहां उसे अनिवार्य करना गलत। उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए विद्यार्थी 1 जून से कर सकेंगे आवेदन। CBSE का रिजल्ट्स के बाद प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए नया पोर्टल 1 जून से होगा शुरू। मौसम विभाग ने रांची, बोकारो और धनबाद सहित राज्य के 11 जिलों में कल बारिश

0: वज्रपात और तेज हवाओं की जताई आशंका, लोगों से सतर्क रहने की अपील। और झारखंड प्रीमियर लीग के लिए जमशेदपुर में खिलाड़ियों की नीलामी प्रक्रिया पूरी। आईपीएल की तर्ज पर 10 जून से रांची में खेले जाएंगे 28 मुकाबले। और अब समाचार विस्तार से। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा है कि राज्य के कई जिलों में भोजपुरी, मैथिली और अंगिका जैसी भाषाएं व्यापक रूप से बोली जाती हैं, जिनका सम्मान किया जाना चाहिए। आज धनबाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में जनजातीय भाषा बोलने वाले नहीं है, वहाँ उसे अनिवार्य करना तर्कसंगत नहीं है।
1: हम लोग हर भाषा का सम्मान करते हैं, तो जनजातीय भाषा है वो सब कुछ स्वीकार है, लेकिन जिस जिले में मगही और भोजपुरी बोली जाती है वहाँ जनजातीय भाषा को अनिवार्य करना ये तर्कपूर्ण बात नहीं है। तो ये नियमावली में हम इतना ही सुधार चाहते हैं कि ये जो आपने अनिवार्यता लागू कर दी है, जिस जिले में उस भाषा की पढ़ाई नहीं होती है, टीचर नहीं है, तो वहाँ इसे लागू किया जाना, तो वहाँ के बच्चों का तो भविष्य खराब हो जाएगा। तो हम लोगों की मांग यही थी कि इस भाषा को शामिल किया जाए।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि उसके साझेदार TCS की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की शुरुआत देरी से हुई। NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो, परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की गयी। धनबाद में आज श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से एक दिवसीय दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। सहायक नियोजन पदाधिकारी पद्मा कुमारी ने बताया कि रोजगार मेले का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
2: सभी सेक्टर की कंपनी है, जिसमें L&T है, होंडा है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है, रिलायबल इंडस्ट्रीज है, इस तरह की कंपनीज है। और इसमें मुख्य रूप से ITI ग्रेजुएट इंजीनियर्स के लिए है, झारखंड के और खासकर धनबाद की भी कंपनियां हैं और साथ साथ बाहर की भी कंपनियां हैं। तो युवाओं से मेरा अनुरोध है कि अपने आप को रजिस्टर करें नियोजनालय में और समय समय पे होने वाले इन एक्टिविटीज का पार्ट बने।
0: केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,46,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने आज नगड़ी स्थित ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था, रखरखाव और तकनीकी प्रबंधन की स्थिति का जायजा लिया।

0: पलामू जिले से पुलिस ने बच्चे के गले से सोने का लॉकेट काटने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस उपाधीक्षक राजेश यादव ने आज एक प्रेस वार्ता में बताया कि इन अपराधियों ने पिछले दिनों एक मोटरसाइकिल पर बैठी बच्ची के गले से सोने का लॉकेट काट लिया था।
1: छोटे बच्चे जो मामा के जो पीछे बैठे हुए थे, लॉकेट काटने के दौरान जो है इंजर्ड हो गए थे, पीठ के साइड में थोड़ा सा इंजरी हुआ था। इलाज के दौरान पता चला कि 10-12 काटे लगे थे। इस चोरी का जो है उद्भेदन करते हुए असार थाना पुलिस के द्वारा सीसीटीवी खंगाला गया, पहचान किया गया था सानू आलम की तरह फिरोज आलम। शहर में आसपास छोटी मोटी चोरी घटना जो होगी विगत दिनों में, ये लोग उसमें शामिल किए।
0: और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने रांची, बोकारो, लोहरदगा, गुमला और धनबाद समेत 11 जिलों में कल गर्जन के साथ बारिश, वज्रपात और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। इसे देखते हुए विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। विभाग के वरीय वैज्ञानिक ने बताया कि इस दौरान 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।
2: जो लगातार 2-3 दिनों से थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चल रही है, उसके असर अधिकतम तापमान में गिरावट जो है वो देखी जा रही है। तो हमारा अनुमान ये है कि आज भी जो है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यू रह सकती है, जिसको देखते हुए कई मेट्रोलॉजिकल सब रीजन के लिए जो है अलर्ट भी जारी किए गए हैं। हवा की गति जो है वो भी काफी तेज रह सकती है, 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर के 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा रह सकती है, चेतावनी भी जारी की गई है।
0: रांची विश्वविद्यालय के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में 5 मई से आयोजित 21 दिवसीय योग शिविर का आज समापन हो गया। इस अवसर पर छात्र कल्याण संकाय के अध्यक्ष डॉ. सुदेश साहू ने योग को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास का सशक्त साधन बताया। आईपीएल की तर्ज पर झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन ने झारखंड प्रीमियर लीग की शुरुआत कर दी है। जमशेदपुर में आयोजित खिलाड़ियों की नीलामी में करीब 126 खिलाड़ी शामिल हुए। एसोसिएशन के उपाध्यक्ष संजय पांडे ने बताया कि लीग की शुरुआत 10 जून से शुरू होगी। इस दौरान 28 मैच खेले जाएंगे।
3: हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहते कि हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा आए और खेले और नेशनल लेवल पर अपने टैलेंट को दिखाएं। बड़े बड़े फ्रेंचाइजी देखेंगे तो आने वाले समय में हमारे बच्चों को राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर खेलने का मौका मिलेगा। उन बाहर के खिलाड़ी को, किसी भी राज्य का खिलाड़ी को हम लोग अलाउ नहीं करें, ये हमारे लोकल बच्चे के लिए है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा, देश में संविधान और पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही कराए जाते हैं चुनाव। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने भोजपुरी, मैथिली और अंगिका जैसी भाषाओं के सम्मान पर दिया जोर। कहा, जिन जिलों में जनजातीय भाषा बोलने वाले नहीं, वहां उसे अनिवार्य करना गलत। उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए विद्यार्थी 1 जून से कर सकेंगे आवेदन। सीबीएसई का रिजल्ट्स के बाद प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए नया पोर्टल 1 जून से होगा शुरू। मौसम विभाग ने रांची, बोकारो और धनबाद सहित राज्य के 11 जिलों में कल बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं की जताई आशंका। लोगों से सतर्क रहने की अपील। और झारखंड प्रीमियर लीग के लिए जमशेदपुर में खिलाड़ियों की नीलामी प्रक्रिया पूरी। आईपीएल की तर्ज पर 10 जून से रांची में खेले जाएंगे 28 मुकाबले। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: अंक में आप सुनेंगे साहिबगंज जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे साहिबगंज संवाददाता।
1: मौसम विभाग के पूर्वानुमान के आधार पर अल नीनो इफेक्ट को ध्यान में रखकर संयुक्त कृषि विभाग तैयारियों में जुट गया है। साहिबगंज भूमि संरक्षण विभाग वित्तीय वर्ष 2025-26 में 52 तालाबों का जीर्णोद्धार, 99 परकुलेशन टैंक तथा 13 बोरिंग का निर्माण किया है, जिससे लगभग 2500 एकड़ भूमि सिंचित होगी। विगत 3 वर्षों में इस प्रकार कुल 300 तालाबों का जीर्णोद्धार, 500 परकुलेशन टैंक और 200 बोरिंग से लगभग 12000 एकड़ भूमि सिंचित होगी। विभाग ने अल नीनो प्रभाव को देखते हुए किसानों को जल संचय के लिए खेतों में वाटर रिचार्ज पिट बनाकर जल संचय करने की अपील किया है।
2: अल नीनो इफेक्ट के चलते

0: आने वाले समय में खाड़ की स्थिति बन रही है, इसको लेकर विभाग के स्तर से और हम लोग भी अपने स्तर से तैयारियां कर लिया है। तालाब जीर्णोद्धार हो, सर्कुलेशन टैंक हो या फिर डीप बोरिंग के माध्यम से कैसे हम लोग जल संरक्षण या जल का उपयोग कर सकते हैं। तालाब में हम लोग को लगभग 1200 एकड़ हम लोग सिंचित एरिया इस बार नया जनरेट करने वाले हैं। सर्कुलेशन टैंक में लगभग 1100 एकड़ हम लोग और बोरिंग से हम लोग लगभग 80 एकड़, तो कुल मिला के हम लोग 2500 एकड़ नया सिंचित एरिया हम लोग इस बार तैयार करेंगे। लगभग 3000 के आसपास किसान इससे लाभान्वित होने वाला है।
1: ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान इस वित्तीय वर्ष में कुल 35 विषयों पर 1050 लोगों का कौशल विकास कर स्वरोजगार से जोड़ने पर कार्य कर रही है। वर्तमान में साहिबगंज आरसेटी में उद्यानिकी और ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा संचालित इस संस्थान के प्रशिक्षण का लाभ आदिम जनजाति के लोगों को भी मिल रहा है। इस हुनर को सीख कर अपने अपने क्षेत्रों में यह स्वरोजगार से भी जुड़ रहे हैं।
2: ग्रामीण परिवेश के प्रशिक्षणार्थी होते हैं के लिए संस्था चुकी है, ये संस्था है। तो इस वित्तीय वर्ष में हमारे यहाँ भी अभी दो ऑनगोइंग प्रोग्राम कार्यक्रम चल रहा है और दो पायलट कार्यक्रम हो चुके हैं। ब्यूटी पार्लर वाला जो अभी कोर्स मेरा चल रहा है उसमें आपको 35 है और हॉर्टिकल्चर वाला मेरे 30 है। और इस साल हम लोगों का जो अभी तक का प्रोग्राम जो दिया गया है भारत सरकार के द्वारा से अभी तक टोटल हमको 35 प्रोग्राम कराने हैं।
1: वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग साहिबगंज ने भी वन्य जीव संरक्षण और जल संचयन की दिशा में विभिन्न चेक डैम के माध्यम से पहाड़ी इलाकों में बारिश के पानी को संचय करने पर कार्य किया है, जिसका लाभ वन्य जीवों पर्यावरण के साथ साथ स्थानीय कृषि को भी हो रहा है। वन विभाग साहिबगंज के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में इन पहाड़ों पर होने वाले वर्षा जल को संचित करने के लिए कुल 26 चेक डैम का निर्माण हुआ है। वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रबल गर्ग ने बताया,
3: साहिबगंज के जो राजमहल पहाड़ियां हैं उनमें बारिश का पानी रुकता नहीं है और वो बहुत तेजी से गंगा नदी की तरफ बह जाता है, जिससे वन्य जीव जो रह रहे राजमहल के पहाड़ियों में उनको भी पानी की असुविधा होती है, साथ में जो ग्रामीण है। तो दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने वन भूमि के किनारे ऐसे जल स्रोतों का निर्माण किया है या पुनरुद्धार किया है जिनसे वनों में रह रहे जीवों को भी पानी मिले, जो भूगर्भ जल है ग्राउंड वाटर रिचार्ज वो भी हो और तीसरा वहां आसपास रह रहे ग्रामीणों को भी इससे पीने का पानी मिल रहा है।
1: देश में पहली बार आज ही के दिन हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन हुआ था, जिसके उपलक्ष में राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज।
4: अभी आप सुन साहिबगंज जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

आकाशवाणी रांची से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जिले में आजकल। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:15 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है बांग्ला कार्यक्रम।

श्रोताओं, बांग्ला कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:45 हो चुके हैं और अब आइए सुनते हैं

अंग्रेजी कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:56 हो चुके हैं। कार्यक्रम फिल्म संगीत के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरी यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मन भावन कार्यक्रम से।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 8 बजने ही वाले हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के तमाम श्रोताओं को आपके रेडियो दोस्त विभा का प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत।

अमानत फिल्म के इस गीत में अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ को। शब्द रचना साहिर लुधियानवी की थी और संगीत दिया था रवि ने।

स्वीकार किया मैंने। इस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। शब्द रचना विट्ठल भाई पटेल की थी और इसे संगीत से सजाया था उषा खन्ना ने।

लता मंगेशकर की आवाज़ में ज़ख्मी फिल्म का ये नगमा अभी आप सुन रहे थे। गौहर कानपुरी का लिखा गीत था और संगीत था बाप्पी लाहिड़ी का।

हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति को अभी आप सुन रहे थे। क्या कहना फिल्म के इस गाने में। गाने के बोल लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने और इसकी धुन बनाई थी राजेश रोशन ने।

0: गीत लिखा था श्यामराज ने और इसे संगीत से सजाया था आदेश श्रीवास्तव ने। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: अंतराल के बाद हम हाजिर हैं एक बार फिर कार्यक्रम फिल्म संगीत के शेष भाग के साथ, आकाशवाणी के प्राइमरी चैनल FM बैंड के 102.4 MHz पर।

संघर्ष फिल्म से ये गाना अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम की आवाज में। शब्द रचना समीर की थी और संगीत निर्देशन जतिन ललित का।

कार्यक्रम का ये था आखिरी गीत और इसे हमने लिया था सुरेश वाडेकर की आवाज़ में फिल्म प्रेम रोग से। शब्द रचना थी संतोष आनंद की और इसे संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, प्रेम रोग फिल्म के इस गाने के साथ ही दीजिए आज की प्रस्तुति से मुझे यानी विभा को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे, तब तक रखिए अपना पूरा पूरा ख्याल। नमस्कार। कार्यक्रम फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। कर्नाटक में डी के शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डी के शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरामैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि CLP नेता का चयन का कार्य AICC को सौंप देना चाहिए। इसके बाद AICC जनरल सेक्रेटरी KC मेरोगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरामैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की। तब तक CLP मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि डी के शिवकुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और डी के शिवकुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब डी के शिवकुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य जून 3 तारीख को 4:05

0: मिनट पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के सचेतक एग्री एस एस कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ टीवी के द्वारा कथित तौर पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चारों विधायक ऑल इंडिया अन्ना डीएमके से इस्तीफा देने के तुरंत बाद टीवीके में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए टीवीके सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
3: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रति वर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
4: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहाँ से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीनें जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीनें जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमार के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि ये निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
2: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में स्वच्छता में सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपोन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। आंध्र प्रदेश

योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जाए और किम बॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स्ड डबल्स सेमीफाइनल में हार गए। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पांचवें ओवर में एक विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहु मिस्क समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लब्बैतुम पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष लगभग 1,75,000 भारतीय हज के लिए गए थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका आकाशवाणी की अखिल भारतीय युवा पत्रिका युवा भारती में। पत्रिका जो हर बार लेकर आती है नए विषय, नए स्वर, नई सोच और नई उड़ान। आज का अंक खास है कई मायनों में, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन लोगों की, उन विचारों की और उन रास्तों की जो युवा भारत को आकार दे रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे जोश के साथ। दोस्तों, कभी सोचा है कि जब न टीवी था, न इंटरनेट, न स्मार्टफोन, तो लोग सच कैसे जानते थे, अपनी बात कैसे कहते थे और अन्याय के खिलाफ आवाज कैसे उठाते थे? जवाब है एक अखबार से, एक छापाखाना, थोड़ी सी स्याही और बहुत सारा साहस। उदंत मारतंड। 30 मई 1826 को तत्कालीन कलकत्ता से शुरू हुए इस अखबार के संपादक और प्रकाशक थे कानपुर के निवासी पंडित जुगल किशोर शुक्ल, जो कलकत्ते में वकालत करते थे। यही था हिंदी पत्रकारिता का पहला कदम। और हम इसी ऐतिहासिक दिन के उपलक्ष्य में हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। ये सफर आसान नहीं था। अंग्रेजी हुकूमत थी, पाबंदियां थी, हर रोज खतरे से आंख मिलाना था। भारी आर्थिक तंगी और उच्च डाक दरों के कारण ये अखबार बहुत दिनों तक नहीं चल सका और 4 दिसंबर 1827 को इसका आखिरी अंक प्रकाशित हुआ। लेकिन जो बीज उदंत मारतंड ने बोया, वो पेड़ बनकर खड़ा हो गया। हिंदी पत्रकारिता को जैसे एक नई भाषा मिलती गई, एक नई धार मिलती गई और आजादी के बाद हिंदी पत्रकारिता और पकी और फैली। और फिर आया डिजिटल युग, जहां हर हाथ में स्क्रीन है और हर इंसान एक संभावित पत्रकार है। लेकिन आज सवाल ये है कि जब पत्रकारिता डिजिटल हो रही है, जब खबर रील बन रही है, तो इन 200 सालों की विरासत को आखिर आगे कौन ले जाएगा? युवा पत्रकार कैसे दें इस समय के सवालों का जवाब? इसी विषय पर आज हमारा संपादकीय लिखा है और स्वर दिया है वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हरेंद्र प्रताप सिंह ने। शीर्षक है समय के प्रश्न और युवा पत्रकारिता के उत्तर। तो सुनिए और सोचिए।
1: अगस्त 1947 के पहले जो हिंदी पत्रकारिता हुई, उसका मुख्य मकसद था देश को आजाद कराना और उस समय जो कुछ अंधविश्वास थे समाज में, उसको दूर करना और कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विकास पत्रकारिता को भी सहयोग करना। तो ये तीन मुख्य मकसद थे पराधीन भारत में। और जब देश आजाद हुआ तो जाहिर है कि एक नई शुरुआत थी, लोकतंत्र नया नया स्थापित हुआ, फिर हमारा संविधान सामने आया। तो हिंदी पत्रकारिता ने और भाषाई पत्रकारिता ने मुख्य रूप से देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। और मैं खास करके हिंदी पत्रकारिता में आजाद भारत में रेडियो का, आकाशवाणी का योगदान बहुत ज्यादा मानता हूँ, क्योंकि खासकर जो हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई, उसमें आकाशवाणी की बहुत बड़ी भूमिका रही। भारत की जो आजादी है उसमें पत्रकारिता का और पत्रकारों का तो बहुत बड़ा योगदान रहा ही, लेकिन उसमें भी विशेषकर जो युवा पत्रकार थे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। बल्कि आप शुरू से ही देखें, उदंत मारतंड हो या फिर दैनिक समाचार सुधावर्षन, या फिर बाद में एक उर्दू का अखबार आया आपको प्यामे आजादी, और कई भाषाई अखबार जैसे मराठी में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा शुरू किया, फिर बाद में महात्मा गांधी ने खुद अंग्रेजी में और गुजराती में, फिर बाद में हिंदी में पत्रकारिता की। तो उस पूरे दौर को यदि आप देखिए, यहाँ तक कि भगत सिंह तक ने भी जो है वो पत्रकारिता की, यशपाल ने पत्रकारिता की। पूरी आजादी की यदि यात्रा आप देखिए पत्रकारों की, तो उसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। बाल गंगाधर तिलक खुद 25-26 साल के थे जब उन्होंने अपना अखबार निकाला। गणेश शंकर विद्यार्थी का जो प्रताप निकला तो उस समय वो मात्र 24 साल के थे, और भगत सिंह 23 साल की उम्र में 2-3 अखबारों के लिए लिखते थे और प्रताप के लिए तो वो नाम बदल के लिखते थे। तो इस तरह से जितने भी पत्रकार थे उसमें ज्यादातर यंग लोग ही रहे। और महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे और उन्होंने यंग इंडिया की शुरुआत की, नवजीवन की शुरुआत की, तो उन्होंने 30 से 35 साल के युवाओं को ही अपनी संपादकीय टीम में रखा। मेरा ये मानना है कि समय चाहे जैसे भी बदला हो और आगे भी बदलता रहेगा, पत्रकारिता के जो मूल्य हैं वो वही रहते हैं। मूल्य है सत्य को सामने लाना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, चाहे आप कलम से लिखिए, मोबाइल से लिखिए। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि बीच में स्वतंत्र भारत में एक आंदोलन भी हुआ, वो कहलाता है छात्र आंदोलन, जिसको हम लोग जेपी मूवमेंट भी कहते हैं, 1974-75 का जो आंदोलन है। तो आप यदि देखिएगा तो उसमें भी युवा पत्रकारों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। और स्वाधीन भारत में दो और खास किस्म की पत्रकारिता शुरू हुई। एक खोजी पत्रकारिता, जिसने कहीं न कहीं उन व्यवस्था पे भी जो है एक अंकुश लगाया, जहां कुछ उसने देखा कि गलत हो रहा है। और दूसरी जो एक पत्रकारिता जो एक चरम रूप पे आई, वह है विकास पत्रकारिता। विकास से जो व्यक्ति छूट गया उसको सामने लाना, और मानवाधिकार की बात करना, पर्यावरण की बात करना, पर्यावरण के हितों की बात करना, ये 20वीं सदी की पत्रकारिता की सबसे एक विकसित सोच थी। खबर को एक खबर के रूप के साथ साथ विचार के रूप में भी प्रस्तुत करना, जनसंचार का क्षेत्र, ये शुरू से युवाओं को आकर्षित करता रहा है, क्योंकि इसमें एक उनको कहीं ना कहीं ग्लैमर भी नजर आता है। मेरा यह मानना है कि पत्रकारिता आज की तारीख में भी एक लोक सेवा है। मुख्य मकसद वही है कि आप कलम से या शब्दों से या अपने विचारों से आपको समाज की, देश की और मानवता की सेवा करनी है। पत्रकारिता चाहे 18वीं सदी की हो, 19वीं सदी की हो, 20वीं सदी की हो, 21वीं सदी की हो, पत्रकारिता आज भी एक बड़ा ही पवित्र प्रोफेशन है। मैं कहूंगा युवाओं को, आज भी युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में इस क्षेत्र में आना चाहिए।
0: हरेंद्र प्रताप सिंह के विचारों ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि माध्यम बदलते हैं मगर जिम्मेदारी नहीं बदलती। और जब माध्यम की बात हो तो एक नाम जहन में हमेशा रहना चाहिए, आकाशवाणी। वो आवाज जो दशकों से घर घर तक पहुंचती रही, वो आवाज जो दूर दराज के गांवों में भी उम्मीद की किरण बनती रही। आकाशवाणी के 90 साल के ऐतिहासिक पड़ाव पर इस अंक में हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, युवा साहित्य और संस्कृति कर्मी विशाल पांडे, जिन्होंने रेडियो को सिर्फ एक माध्यम के रूप में नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक संस्था के रूप में देखा, समझा है और इसमें उनकी एक हिस्सेदारी भी रही है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि आकाशवाणी के 90 साल विरासत आज के युवाओं के लिए क्या मायने रखती है।
2: मेरे लिए आकाशवाणी केवल एक प्रसारण संस्था नहीं है बल्कि वह मेरे बचपन की ध्वनि है, मेरे संस्कारों की लय है और मेरी चेतना का एक स्थायी संगीत। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, संचार के माध्यम बदल रहे हैं, आवाजें बदल रही हैं, तब भी मेरे भीतर कहीं एक रेडियो धीरे धीरे बजता रहता है। वही परिचित उद्घोष, वही शब्दों की गरिमा, वही ध्वनि का अनुशासन और वही आत्मीयता। शायद इसलिए मैं आज भी रेडियो सुनता हूँ। टेलीविजन कब देखा था ये मुझे सचमुच याद नहीं। मेरा बचपन गोरखपुर में बीता, शुरुआती शिक्षा भी वहीं हुई। मेरी माँ शिक्षिका है, लेकिन मेरे लिए वे केवल शिक्षिका नहीं बल्कि साहित्य, भाषा और संस्कृति से भी मेरा पहला परिचय कराने वाली हैं। उनका आकाशवाणी गोरखपुर से गहरा संबंध है। वे वहाँ निशा निमंत्रण जैसे साहित्यिक कार्यक्रमों से जुड़ी हैं। मैं अक्सर उनके साथ आकाशवाणी केंद्र भी जाया करता था। आज भी मुझे वह परिसर याद है, वहाँ का शांत वातावरण, स्टूडियो के बाहर लगी हुई लाल बत्ती, धीमी आवाज में होती बातचीत, स्क्रिप्ट के पन्नों की सरसराहट और प्रसारण शुरू होने से पहले का वह अद्भुत मौन। एक छोटे बच्चे के लिए वह संसार किसी जादुई लोक से कम नहीं था। आकाशवाणी गोरखपुर एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा है। वहाँ अनेक बड़े साहित्यकारों, कलाकारों और संगीतज्ञों का आना जाना था। मुझे याद है जब कोई वरिष्ठ कवि या कलाकार स्टूडियो में आते तो वहाँ का वातावरण एकदम बदल जाता। शब्दों के प्रति आदर और कला के प्रति समर्पण मैंने वहीं देखा। शायद वही संस्कार बाद में मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन गए। बाल सभा के कई कार्यक्रमों में मुझे अवसर भी मिला। रेडियो पर अपनी आवाज सुनना उस समय बहुत रोमांचक था। रिकॉर्डिंग के दौरान माइक के सामने बैठना, सही उच्चारण का ध्यान रखना, शब्दों को स्पष्ट बोलना ये सब मेरे लिए गतिविधियां ही नहीं थी बल्कि भाषा के प्रति एक अनुशासन का प्रशिक्षण भी था। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि आकाशवाणी ने मुझे बोलना ही नहीं सिखाया बल्कि सुनना भी सिखाया, और सुनना वास्तव में सबसे बड़ी कला है। रेडियो की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह श्रोता की कल्पना को जीवित रखता है, आपको अपने भीतर दृश्य रचने की स्वतंत्रता देता है। रेडियो सुनते हुए हम केवल श्रोता नहीं रहते, हम सह रचनाकार बन जाते हैं। धीरे धीरे समय बदला, मैं उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय आया। एक नया शहर, नया वातावरण, नए संघर्ष, लेकिन इस परिवर्तन के बीच भी एक चीज स्थिर रही, आकाशवाणी से मेरा संबंध। दिल्ली आने के बाद मुझे युववाणी का हिस्सा बनने का अवसर मिला। ये मेरे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभव था। युववाणी केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि युवाओं की अभिव्यक्ति का मंच था। वहाँ विचार थे, ऊर्जा थी, भाषा का उत्साह था और समाज को देखने की एक नई दृष्टि। बाद में मुझे हिंदी वार्ता और संस्कृत वार्ता से भी जुड़ने का अवसर मिला। ये मेरे लिए प्रसारण ही नहीं बल्कि भाषा और विचार की साधना भी रही। आज सोशल मीडिया के समय में सूचनाएं बहुत हैं लेकिन विश्वसनीयता कम होती जा रही है। ऐसे समय में आकाशवाणी का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वहाँ शब्दों के पीछे उत्तरदायित्व है। कई बार मुझे लगता है कि रेडियो सुनना दरअसल अपने भीतर लौटना है, क्योंकि रेडियो हमें थोड़ी देर के लिए दुनिया के शोर से बचाकर शब्दों और ध्वनियों की एक शांत दुनिया में ले जाता है। और शायद यही कारण है कि आकाशवाणी 90 वर्षों बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस परंपरा से जुड़ने का अवसर मिला। मैं अपनी माँ के प्रति भी कृतज्ञ हूँ, जिनके माध्यम से मेरा परिचय इस संसार से हुआ। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा को मेरा विनम्र प्रणाम है।
0: तो जैसा अभी विशाल पांडे ने कहा, आकाशवाणी ने हमेशा ही नई पीढ़ी को अभिव्यक्ति का मंच दिया है, और आज की युवा पीढ़ी अभिव्यक्ति के नए नए रास्ते खोज रही है। कोई कैमरा उठाता है, कोई माइक थामता है, और कोई निकल पड़ता है अनजाने रास्तों पर, बस एक बैग, एक कैमरा और एक जज्बे के साथ। सफर को कंटेंट बनाना और कंटेंट को करियर बनाना, ये कमाल कर रहे हैं आज के ट्रेवल ब्लॉगर्स। जब घर की चार दीवारी को छोड़कर पहाड़, समंदर और अनजान शहर ही दफ्तर बन जाएं, तो जिंदगी कुछ और ही रंग ले लेती है। आज हम मिलने वाले हैं दो ऐसे ही युवाओं से, श्वेता राठौर और सौरभ परमार, जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं। इनके लिए रास्ता ही मंजिल है और हर मोड़ पर एक नई कहानी है। आइए सुनते हैं उनसे उनके रिस्क, उनकी रील्स और उनके रास्तों की बात, जो इन्होंने खुद चुने हैं। रास्ते, रिस्क और रील्स। श्वेता राठौर और सौरभ परमार से बातचीत की मैंने, यानी नवोदिता और प्रांजल ने।
3: आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जब हम एक AI और एक डिजिटल एरा में रह रहे हैं, यूथ के साथ कनेक्शन बहुत जरूरी है। आपका जो एक ऑनलाइन प्रेजेंस है वो बहुत क्वर्की स्पॉन्टेनियस कंटेंट से भरा हुआ है। आपके सोलो ट्रैवलिंग जर्नी में प्लानिंग से लेके उसका एग्जीक्यूशन कितना इम्पोर्टेंट है और आपका उसमें क्या प्रोसेस है?
4: जब हम ट्रैवलिंग शुरू करते हैं तो बिल्कुल अनप्लान करते हैं, हमारी कोई आइटिनरी नहीं होती, क्योंकि हमारे हिसाब से ट्रैवलिंग वैसे ही होती है। जब आप एक्सप्लोर करने जाते हो किसी जगह को और आप मन में बिठा के रखे हो, हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो खत्म है वहाँ पे एक्सप्लोरेशन, क्योंकि आप टारगेटेड ट्रैवल कर रहे हो। तो हम जब भी प्लान करते हैं तो हम बस जगह को देखते हैं, ये हमें पसंद आ रही है जगह, चलो चलते हैं। कैसे जाना है वो उसी दिन डिसाइड होता है, आपको बस से जाना है, आपको फ्लाइट से जाना है, आपको ई रिक्शा लेके जाना है, इट्स अप टू यू। और आइटिनरी की बात तभी आई जब हम फॉरेन ट्रैवल करना शुरू किए, क्योंकि वहां पे नेसेसिटी बन जाती है, आपको दिखाना है वीजा ऑफिसर को कि आइटिनरी एक सर्टेन वे में होनी चाहिए। वहां पे भी हम कोशिश करते हैं कि जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो सके हमारे प्लान में हम उतना रखें। और ट्रैवलिंग करते समय आपको बहुत ही स्मार्टली चलना होता है, बेवजह रिस्क नहीं ले सकते हैं। जैसे यूथ जो है या सोलो ट्रैवलिंग वाली जब बात आती है तो मोस्टली ऐसी आती है कि इज इट सेफ, कैसे हम जाएं, कैसे बजट हैंडल करें। मान लीजिए आपका बजट 10,000 है, आप प्लान कीजिए आसपास की जगहों का, हो सकता है कि आपकी जो ट्रैवलिंग हो वो 1,000-2,000 में ही हो जाए। तो अगर आपको ट्रैवलिंग शुरू करनी है तो सबसे पहले तो आसपास की जगहों को घूमना शुरू कीजिए, देखिए कि आपको कितना मजा आ रहा है और क्या एक्सप्लोर करने में मजा आ रहा है, तो उससे आप ना लॉन्जेविटी ला सकते हैं। अगर आप आगे जाएंगे ना बड़े स्टेट्स में किसी भी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है और आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि आपको हैंडल करने का तरीका आता होगा।
0: सौरभ आपसे ये जानना चाहेंगे, जितनी आसानी से श्वेता ने ये कहा कि हम एकदम उसी दिन प्लान करते हैं, लेकिन फिर भी आपका पर्पस तो ये है कि उस चीज को आपको कवर करना है और आप उसको किसी भी तरीके से आपको देखने सुनने वालों के सामने रखना है, क्या वाकई ये इतना स्पॉन्टेनियस होता है या फिर?
5: मुझे लगता है श्वेता ने झूठ बोला है, इससे भी ज्यादा स्पॉन्टेनियस है।
0: अच्छा
5: हाँ, क्योंकि हम लोग जो पूरा का पूरा कॉन्टेंट है स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व करता है। हम लोगों ने जब इनिशियली ट्रेवल स्टार्ट किया था तो हम सिर्फ ये नहीं करना चाहते थे कि मैं यहाँ पे जा रही हूँ, ये करना चाह रही हूँ। हम लोग सच में एक बहुत ही ऐसी जगह पे फिक्स थे दोनों के दोनों अपने लाइफ में कि हम वहां से निकल नहीं पा रहे थे। शी वॉज वर्किंग इन कॉर्पोरेट ऑफिस और मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा था। जब इसने जॉब छोड़ी श्वेता ने, तो हमने सोचा कि हम इसको ना एक आइडिया बेस लेके चलते हैं, कंटिन्यूटी रखते हैं इसमें। तो इनिशियली ऐसा हुआ कि जब हमने स्टार्ट किया तो हमने एक स्टोरी जनरेट की। स्टोरी मतलब वो रियल लाइफ से ही जनरेटेड थी कि श्वेता ने अपनी जॉब छोड़ी है और जॉब छोड़ के उसने ट्रैवलिंग करना शुरू किया है। बट ट्रैवलिंग के लिए आपको पैसे चाहिए और स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ ऐसे 10-12 हजार रुपए थे दोनों के पास मिला के, ये हमारी सेविंग्स थी। तो हम लोगों ने एक हफ्ता ट्रैवल किया। एक हफ्ता जब हमने ट्रैवल किया तो हम लोगों ने सोचा कि मैं पूरा कंटेंट संभालूंगा और तुम पूरा फाइनेंस संभालो। तो ये हमारी स्टोरी चली। तो क्या हुआ कि विद इन 3 मंथ्स हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे और सिर्फ 10,000 से हमने शुरू किया था उस टाइम।
0: आपके जवाब में एक्चुअली 2-3 ऐसे पॉइंट आए जहाँ पर मेरे अंदर कुछ क्यूरियोसिटी है। एक तो ये कि जब आपने बोला कि श्वेता ने अपनी नौकरी छोड़ी, आई वुड होप कि आपके अंदर भी वो एक सेंस ऑफ नर्वसनेस, वो इनसिक्योरिटीज होंगी कि छोड़ तो दी आगे कैसे होगा। और जो आपने एक जिक्र किया कि आपके पास 10,000 फॉलोअर्स थे, वो 10,000 भी कैसे आए? और दूसरा ये कि आपने ये कहा कि जो चीजें आप कह रहे हैं आप स्टोरी सोचते हैं, हम लोग तुरंत उसको करना चाहते हैं, कभी कोई आपके आसपास कोई सोशल ऐसी चीज है जो आपको ज्यादा इम्पैक्ट करी है, पॉलिटिकल है या जानबूझ के आप ऐसे कंटेंट से दूर रहना चाहते हैं जहां पे किसी भी तरह के डिस्प्यूट की कोई गुंजाइश हो?
5: हम लोग का जो मेन कॉन्सेप्ट है और जो कंटेंट का मेन कोर है वो ये है कि हम लोगों को ना दुखी नहीं करना चाहते। देयर इज अ लॉट ऑफ सैडनेस गोइंग ऑन और चीजें होती रहती हैं आसपास। अगर हम किसी भी चीज को टच करें तो आप कभी भी सही या गलत नहीं हो सकते पूरी तरह से। देखिए हम थोड़ा सा ना हैप्पीनेस स्प्रेड करना चाहते हैं अपने

0: अपने आसपास, तो इसलिए हम उन टॉपिक से थोड़ा सा दूर रहते हैं। हमारा चैनल ऐसा नहीं था कि हाँ सुपर पॉपुलर है और लोग वीडियोस देख रहे हैं, वो ये एक दो वीडियो पे व्यूज आ गए थे, इस वजह से हमारे फॉलोअर्स हो गए थे। हमने बेसिकली ये सोचा कि हम ऐसे वन ऑफ करके नहीं चल सकते हैं, हमें थोड़ा सा कमिट करना पड़ेगा क्योंकि हमें करना था ये।
1: श्वेता, एक सवाल और बनता है आपसे बीच में कि आप एक जॉब में थी, तो उस जॉब को छोड़ते वक्त कुछ तो आपने पैटर्न देखा होगा कि कुछ तो बेहतर कर सकते हैं।
2: सबसे बढ़िया बात मेरे अंदर मुझे यही लगती है कि मैं बहुत इम्पल्सिव हूँ। जैसे कि आप बंजिंग जंपिंग करने जा रहे हो तो आप साथ में ये भी रखो कि आप बैकआउट भी बैकआउट नहीं करना मुझे, ये मेरे दिमाग में लेकिन बात कौनती रहती थी कि तू सर्वाइव कैसे करेगी, घर से पैसे नहीं लेने, सबको इंडिपेंडेंट तो हो गए अब। तब मैंने शुरू की फ्रीलांसिंग, पहले शुरू किया अपने आसपास के लोगों से, फ्रीलांसिंग के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी और कोई आसपास कर भी नहीं रहा होता। तो फिर मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट भी है मैडम, जैसे मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई। फ्रीलांसर्स की ना अलग दुनिया है।
1: कुछ जो अभी यूथ अभी हमारे इस प्रोग्राम से सुन रहे हैं तो उनके लिए आप क्या बता सकती हैं, जो कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे उस हिसाब से मैं अपनी प्रोफाइल को चेंज करना पड़ा, कैन यू गिव सम एग्जांपल्स?
2: हाँ, जैसे एक वेबसाइट है फ्रीलांसर, अपवर्क है, एक फाइबर है, तो ये ना पॉपुलर वेबसाइट्स है।
3: तो जब हम इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कंटेंट देखते हैं तो हर एक कंटेंट का एक यूएसपी होता है। जब हम आपका कंटेंट देखते हैं तो उसका एक यूएसपी है कि यूनिक वॉइस ओवर्स होते हैं, संस्कृत का यूज करते हैं, कभी शुद्ध हिंदी का यूज करते हैं, कुछ वर्ड्स हैं जैसे आप रेलवे को बहुत अलग प्रोनाउंस करते हैं,
2: लोपरगामिनी।
3: और उसके पीछे का इंस्पिरेशन क्या?
2: इंस्पिरेशन एक तो देखो हिंदी ना बहुत सुंदर है, मतलब हिंदी बहुत ही प्यारी लगती है, हमने स्कूल में वैसे सीखा नहीं है जिस तरह से हमें सीखना चाहिए था, तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने माध्यम से हम खुद भी सीखें। हम हर बार जब स्टोरी लिख रहे हैं, जैसे ये स्टोरी लिखने बैठा है, जैसे अभी मैं बोलूंगी ना तो कंप्लीट हिंदी नहीं बोल पाऊंगी, मुझे कुछ कुछ वर्ड्स जैसे इंग्लिश वर्ड्स जो कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश होती है तो उसमें जैसे अभी बोला मैंने तो नहीं आती, तो हम ना कोशिश करते हैं कि इसकी हिंदी लेके आते हैं क्योंकि लगता है हमें बेहतरीन हिंदी और हमें ऐसा लगता है कि लोगों को ना बहुत मजा आता है हिंदी सुनने में, जैसे हमें मजा आता है। बाकी आधा हिस्सा इसका भी है इसमें।
0: मैं मुझे लिखने का बहुत पहले से शौक था, हमने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, भारत माता टेम्पल है, जब हम वहाँ पे गए तो मैंने सोचा कि यार अगर यहाँ पे इतने सारे गॉड्स हैं, गॉडेसेस हैं, हमारा पहला टेम्पल विजिट था वो मेजर, तो हम उनको ऐसे साधारण भाषा में बोल नहीं सकते हैं, हमें थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल करना पड़ेगा। तो जब हमने किया तो हमें खुद अच्छा लगा और दूसरा हम एक तरह से हिंदी को थोड़ा सा ना प्रमोट भी करना चाहते थे कि हम ना मुहावरों का बहुत इस्तेमाल करते हैं।
3: आपने एक इंडिया सीरीज शुरू की थी जिसमें आपने 500 डेज का चैलेंज लिया था, आपने पूरा इंडिया घूमा था, तो अगर उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, और लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक हर राज्य में अलग कल्चर है, अलग भाषा है, अलग खाना है, तो कुछ एक्सपीरियंस और कुछ ऐसी चीज जो जिससे आप एनकाउंटर हुई हो।
2: एक तो भारत कितना भी घूम लो खत्म नहीं होने का है, बहुत जगह कवर की, बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे स्टेट्स में गए, लेकिन अभी तक स्टिल ऐसे लगता है हमें जब कोई वीडियो आती है कि यार यहाँ तो गए ही नहीं, ये तो एक्सप्लोर ही नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि बहुत कुछ जानने को मिला, और बताए ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स थे जहाँ पे हमें लगा कि जब आप घूमना शुरू करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि ये हमारा जो भारत है ना सही में बहुत डाइवर्स है,
1: मतलब जो डाइवर्सिटी हम किताबों में पढ़ते हैं उसका जब वास्तविक रूप हमें देखने को मिलता है तो फिर वो डेफिनेटली वो हमें
2: बहुत ही मजेदार होता है। हाँ,
1: एक क्रिएटर के तौर पर जो छोटी मोटी टेक्निकलिटीज होती है लाइक ट्राइपॉड है या छोटे मोटे और जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, तो अगर डिफिकल्ट टेरेन में गए मान लीजिए आप, तो वो हैंडल करना कितना मुश्किल है, चैलेंजिंग होता है आपके लिए या इजी है?
0: इसमें जो टेक्निकल आप एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो नए क्रिएटर्स के साथ आती है वो ना ओवर थिंक करते हैं चीजों को। हमने जब ये चैनल स्टार्ट किया था हमारे पास एक फोन था उसमें 4K वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं होती थी, और हमारे चैनल 3 महीने में जो हमारा 1 मिलियन हुआ वो सिर्फ उस फोन से हुआ। उसके आप वीडियो क्वालिटी देख लीजिए, एकदम बेकार वीडियो क्वालिटी। मेन मकसद ये होता है कि जो स्टोरी है ना एक पूरा पैकेज आप कैसा दे रहे हैं, आप जो बताना चाह रहे हो पहुंच पा रहा है लोगों तक। आपको सुंदर नहीं दिखाना है, हर चीज सुंदर नहीं हो सकती है या फिर हर चीज आसान नहीं हो सकती है, तो जो हमारे पास है सबसे पहले में उससे ही स्टार्ट करना चाहिए, वो ही इस्तेमाल करना चाहिए। पहले हमारे पास कैमरा था, फिर हमने GoPro भी लिया, फिर हमने अलग अलग कैमराज खरीदे, लेकिन फिर हमें बाद में पता चला कि ये सब ना बस हिंड्रेंस है, ये सब हमारी उसमें काम में बाधा डाल रहा है। अगर मान लीजिए हम ट्रैक कर रहे हैं और कोई लाइक 5 घंटे का ट्रैक है और मैं बैग पैक करके बैग में सामान लेके चल रहा हूँ तो मेरे लिए आसान नहीं है। तो हमने ये रियलाइज किया कि एक अच्छा फोन लीजिए आप और उसी फोन से आप जितना हो सके उतना कीजिए,
1: और छोटे मोटे जो आपको उसकी एक्सेसरीज मतलब जैसे ट्राइपॉड या
0: यस यस जितना छोटा हो सके, मतलब
2: कॉम्पैक्ट रखो।
0: जो गोल है, गोल ये नहीं है कि दूसरों के लिए आसान बनाना है, गोल ये है कि मुझे अपने लिए काम आसान बनाना है।
1: लास्ट सवाल एक्चुअली मेरा आपसे यही होने वाला था कि क्या लगता है फॉलोअर्स और सक्सेस
2: सक्सेस

0: मेरे दिमाग में ये रहता है कि क्या मैं जो बना रही हूँ उससे मैं खुश हूँ, इरेस्पेक्टिव ऑफ फॉलोअर्स। हमें ऐसा लगता है जो हमने इतने 4 सालों में एनालाइज किया है कि हमारी रीच बहुत ज्यादा है, हम जब लोगों से बात करते हैं बहुत मजेदार लगता है, ये है सक्सेस हमारे लिए कि हमारी बात जो है वो इस तरह तक पहुंची कि लोग मजे ले रहे हैं उसके और लोग उसको बहुत दिन तक याद रख रहे हैं। आपने जो वो वाली वीडियो बनाई थी ना, उसमें जो आइसक्रीम खाई थी बहुत मजा आया था, वो जो बच्चे, तो वो है सक्सेस हमारे लिए। फॉलोअर्स हमारे लगभग 700K है इंस्टाग्राम पे, जैसे 5 मिलियन उस पर यूट्यूब पे है, तो वो हमारे लिए नंबर है। बस जब तक हमें ऐसा नहीं लगता कि जो हम दे रहे हैं वो 100% हमारा है, हमको मजा आता है, हम उसमें कंटेंट बनाते हैं।
1: आपके पास जो है जैसा है वहाँ से स्टार्ट करो, पुट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, डोंट एक्सपेक्ट एंड इट विल वर्क आउट अगर आपने इनफ मेहनत करी है तो।
2: श्वेता और सौरभ की बातें सुनकर एक बात साफ हो जाती है कि आज के युवा के लिए करियर का मतलब बदल चुका है। वो अपने लिए नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति के लिए और उससे अपने रोजगार के लिए। लेकिन हर युवा का सपना और हर युवा की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। कोई घर से दूर पहाड़ों पर कंटेंट बना सकता है, तो कोई घर की जिम्मेदारियों के बीच अपनी पढ़ाई पूरी करने का सपना देख रहा होता है, और पढ़ाई भी ऐसी जिससे भविष्य में रोजगार की कुछ उम्मीद हो। और ऐसे में एक नाम जहन में आता है भरोसे का, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू, जहां शिक्षा की कोई सीमा नहीं, ना उम्र की, ना दूरी की, ना परिस्थिति की। आज हमारे साथ हैं इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह, जिनसे हम जानेंगे कि रोजगार परक शिक्षा के क्षेत्र में इग्नू किस तरह नए आयाम छू रहा है और क्या युवाओं के लिए वाकई यहाँ आकाश जितनी संभावनाएं हैं। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
3: जी धन्यवाद।
2: सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो हमारी नई शिक्षा नीति, हालांकि अब उस नीति को आए हुए भी समय हो गया है, और जो ओपन लर्निंग या दूरस्थ शिक्षा है, वर्तमान से इसके भविष्य की संभावनाओं को आप कैसे देखते हैं?
3: देखिए, अगर हम बात करें दूरस्थ शिक्षा की, तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये एक ऐसी शिक्षा पद्धति है कि इसमें विद्यार्थी को केंद्र में रख के सारी मेथोडोलॉजी डिजाइन की जाती है। मतलब इसमें हम लोग ये प्रयास करते हैं कि विद्यार्थी को कुछ हम ऐसी सहूलियतें दें कि वो अन्य काम अगर कर रहा है पढ़ाई के साथ साथ, मान लीजिए स्वरोजगार रोजगार कर रहा है या किसी रोजगार में है, कोई गृहिणी है या कोई किसान है, तो उनको सहूलियतें मिलें कि वो अपने पेस के अनुरूप अपनी पढ़ाई कर सकें। मुझे लगता है कि ये समय की मांग है और यही प्रयास सरकार का भी है।
2: तो आपको क्या लगता है कि अभी जो जन सामान्य में जो जागरूकता है इस तरह की पढ़ाई को लेकर, इस तरह के कोर्सेज को लेकर, पाठ्यक्रम को लेकर, वो किस स्तर पर है और उसको बेहतर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
3: जागरूकता का स्तर तो काफी अच्छा है, खासतौर से कोविड के बाद जब लोगों ने देखा कि सारे वेज एंड मींस बंद हो गए हैं लर्निंग के, तो वहां पर दूरस्थ शिक्षा एक बहुत इम्पोर्टेंट विकल्प के रूप में उभर के आया और अब ये युवाओं की एक तरह से चॉइस बन चुका है। खासतौर से ऐसे युवा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको एक उच्च कोटि की अध्ययन सामग्री मिलती है जिसको अगर वो पढ़ते हैं तो उनके कंपटीशन में सेलेक्ट होने के संभावनाएं बहुत अच्छी हो जाती हैं। प्लस वो अध्ययन अपने हिसाब से कर रहे हैं, जैसे उन्हें अगर मान लीजिए कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए कहीं पर कोई काउंसलिंग लेनी है या कॉलेजेस में जाना है या संस्थानों में जाना है, तो वो उसको भी कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने समय का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। प्लस जो दूरस्थ शिक्षा के कोर्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद से जो डिजाइन किए जा रहे हैं, उसपे ट्रेडिशनल कोर्सेज में भी स्किलिंग का कॉम्पोनेंट है।
2: जी,
3: तो अगर आप सामान्य बीए, बीकॉम, बीएससी भी कर रहे हैं, तो उसमें स्किलिंग के ऐसे कंपोनेंट हैं कि अगर आप जो सरकारी सेवा है उसकी ओर जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाना चाहते हैं तब भी इन कोर्सेज को अगर आप करते हैं तो रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएं बहुत अच्छी रहती है। ऐसे ही जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, वो भी अगर स्किलिंग करना चाहते हैं तो उनके पास भी अवसर है। तो यहाँ पर सरकार ये प्रयास कर रही है कि हमारा जो युवा हो वो स्किल्ड हो और एजुकेटेड हो।
2: जिनकी पढ़ाई में कुछ ब्रेक लग गया किसी भी कारण से, वापस अगर एक ब्रेक के बाद उन्हें पढ़ाई शुरू करनी है तो किस तरह इस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं अगर इग्नू की बात करें?
3: देखिए, ब्रेक के बाद अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो इग्नू तो इसीलिए बना हुआ है, कोई माइग्रेशन कोई टीसी की आवश्यकता नहीं है। आपके मन में इच्छा जागी कि हमारी पढ़ाई छूट चुकी है या हमें अपने नॉलेज को इन्हांस करना है, आप विश्वविद्यालय के किसी पर्टिकुलर पाठ्यक्रम में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं, मिनिमम एज लिमिट है 10+2 आपने किया हो, ज्यादातर कोर्सेज में एलिजिबिलिटी है। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इग्नू सपोर्ट करता है। एडमिशन की जो मेथोडोलॉजी है वो ऑनलाइन है, सिंपल इग्नू की वेबसाइट पे जाएंगे, एडमिशन का जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करेंगे, फीस पे करेंगे और अगर वो सारी चीजें सही हैं तो उनको एडमिशन ग्रांट कर दिया जाएगा। देखिए, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि वी डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट्स बट वी गेट अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप आवर टैलेंट, यानी हम सभी के टैलेंट बराबर नहीं होते मगर हमें अवसर मिलता है अपने टैलेंट को बढ़ाने का, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने का, अपने नॉलेज को अपडेट करने का। तो ये सारे ऑप्शंस इग्नू जनमानस के द्वार पर उनको उपलब्ध कराता है। अब लोगों को करना क्या है कि एक कदम आगे बढ़ाना है, इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रहण करना है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, आज की इस पत्रिका में हमने की बेहद खास बातें। हरिंद्र प्रताप सिंह से हमने जाना कि पत्रकारिता की जिम्मेदारी कभी पुरानी नहीं पड़ती और युवाओं को तो इसमें एक खास भूमिका निभानी है। विशाल पांडे ने बताया कि आकाशवाणी की आवाज और 9 दशकों के इतिहास में युवाओं की भी एक बेहद महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। हमने सुना श्वेता और सौरभ से कि हिम्मत हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। और फिर डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह से हमने जाना कि शिक्षा के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, आपको तय करना है कि किस शिक्षा के जरिए आपको कौन सा रोजगार चुनना है। तो फिर मिलेंगे युवा भारती के अगले अंक में। पत्रिका में हमारे सहयोगी रहे नेत्रा और प्रांजल के साथ नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं विदुषी स्मिता मोकाशी का शास्त्रीय गायन।
1: नमस्कार। इन टुडेज ऑल इंडिया प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय विदुषी स्मिता मोकाशी।
0: सुरों की साधना और शास्त्रीय गायन की समृद्ध परंपरा को आत्मसात करने वाली आकाशवाणी और दूरदर्शन की टॉप ग्रेड कलाकार विदुषी स्मिता मोकाशी पंडित अजय पोहनकर जैसे दिग्गज गुरुओं के सानिध्य में तराशा गया स्वर है।
1: अ टॉप ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन विदुषी स्मिता मोकाशी हैज डेडिकेटेड हरसेल्फ टू द परस्यूट ऑफ नोट्स एंड थरोली एब्जॉर्ब द रिच ट्रेडिशन ऑफ क्लासिकल सिंगिंग। हर वॉइस हैज बीन ब्यूटिफुली नर्चर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ लेजेंडरी गुरुज इंक्लूडिंग पंडित अजय पोहनकर।
0: तानसेन और अमीर खान जैसे प्रतिष्ठित समारोह की आप शोभा बढ़ा चुकी हैं। प्रयाग महाकुंभ से लेकर लंदन की नेहरू सेंटर तक आपने अपनी गायकी की छाप छोड़ी है।
1: शी हैज ग्रेस्ड प्रेस्टिजियस म्यूजिक फेस्टिवल्स लाइक द तानसेन समारोह एंड उस्ताद आमिर खान समारोह, लीविंग एन इंडेलिबल मार्क विद हर सिंगिंग फ्रॉम द प्रयाग महाकुंभ टू द नेहरू सेंटर इन लंदन।
0: आपको कलाश्री और मोहम्मद रफी जैसे कई सम्मानों से नवाजा गया है। आपकी प्रस्तुतियां न केवल तकनीकी रूप से सुदृढ़ है बल्कि उनमें भारतीय संगीत की गहरी रूहानियत भी झलकती है।
1: ऑनर्ड विद सेवरल एकोलेट्स इंक्लूडिंग द कलाश्री एंड मोहम्मद रफी अवार्ड्स, हर परफॉर्मेंसेस आर नॉट ओनली टेक्निकली फ्लॉलेस बट ऑल्सो डीपली रिफ्लेक्ट द सोल ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक।
0: आज आप सर्वप्रथम प्रस्तुत कर रही है राग मारू बिहाग। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है जिसकी बोल है मान तज देहो प्यारे। मध्यलय तीन ताल में निबद्ध रचना

0: तबले पर संगत कर रहे हैं गांधार राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
1: टू बिगिन हर रिसाइटल टुडे शी प्रेजेंट्स राग मारू बिहाग। द फर्स्ट इज विलंबित कंपोजिशन सेट टू एक ताल विद द लिरिक्स मान तश देहो प्यारे। दिस इज फॉलोड बाय अ मध्य लय कंपोजिशन सेट टू तीन ताल विद द लिरिक्स मानो ना जियरा मोरा। शी कंक्लूड्स दिस राग विद अ द्रुत कंपोजिशन सेट टू एक ताल विद द लिरिक्स मानो ना ही तुमरी बात। अकंपनिंग हर ऑन द तबला इज गांधार राजहंस एंड ऑन द हारमोनियम इज प्रमोद।

0: ये था विदुषी स्मिता मोकाशी का गायन राग मारू बिहाग। स्मिता जी अब प्रस्तुत करने जा रही है राग रागेश्री। त्रिताल मध्यलय में निबद्ध रचना के बोल हैं साजन बिन सुनी एरी आली, और द्रुत एक ताल में निबद्ध बंदिश के बोल हैं राग संग रागिनी मिल मंगल गाई।
1: ट्रांजिशन एंड राग रागेश्री, दैट वॉज विदुषी स्मिता मोकाशी रेंडरिंग राग मारू बिहाग। स्मिता जी विल नाउ प्रेजेंट राग रागेश्री। द फर्स्ट इज मध्य लय कंपोजिशन सेक टू त्रिताल विद द लिरिक्स साजन बिन सुनी एरी आली। दिस विल बी फॉलोड बाय अ द्रुत बंदिश सेक टू एकताल विद द लिरिक्स राग संग रागिनी मिल मंगल गाई।

0: विदुषी स्मिता मुकाशी द्वारा प्रस्तुत ये था राग रागेश्री। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे गांधार राज हंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
1: यू आर लिसनिंग टू राग रागेश्री प्रेजेंटेड बाय विदुषी स्मिता मुकाशी। अकंपनिंग हर ऑन द तबला वॉज गांधार राज हंस एंड ऑन हारमोनियम वॉज प्रमोद बोरगांवकर।
0: ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ आकाशवाणी इंदौर। विद दिस टुडेज ऑल इंडिया नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक कम्स टू एन एंड।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धारमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डी के शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करने में सक्षम है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा।

हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सिलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।